मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की चौथी तिथि तदनुसार 25 मई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में इस समय 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ हो रही है।

0: ये आकाशवाणी प्रयागराज है, 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में

0: समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

भगवान शंकर आशुतोष कहे जाते हैं, केवल एक लोटा जल उन्हें चढ़ा दिया जाए, बिल्व पत्र जो आसानी से उपलब्ध हो जाता है उन्हें चढ़ा दिया जाए, धतूरा जो आमतौर पर कोई खा ही नहीं सकता उन्हें चढ़ा दिया जाए, वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भोले भाले, ऐसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले स्वामी को कौन नहीं चाहेगा, ऐसे परम आत्मा, ऐसे हमारे प्रभु को कौन नहीं चाहेगा, उनकी आराधना कौन नहीं करेगा।

हमारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वो हमारे ही बुरे कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। उनके शमन का एकमात्र उपाय है माँ की शरणागति लेना। जब हम माँ के शरण में सच्चे मन से चले जाते हैं, उन्हें अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, तो वो हमारी सब प्रकार से साथ संभार करती हैं।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

सुख जो कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों को करने से प्राप्त होता है उसे ही कहते हैं, हमें किसी और तरह से प्राप्त नहीं हो सकता। हमारा कर्म हमारे लक्ष्य से जुड़ा होना चाहिए, तभी हमें सफलता प्राप्त हो सकती है, शांति प्राप्त हो सकती है।

0: नहीं रोए, लेकिन लाखों को आज तक रुलाते रहे। जब वे जिंदा थे, वृंदावन की गोपिकाएं इतनी दुखी थीं कि आज तक गीत गाते जाए हैं। निसदिन बरसत नयन हमारे, कंचुक पट सूखत नहीं कबहूं, उर बिच बहत पनारे। उनके रुदन में कामना की ललक भी झलकती है, लेकिन साथ ही साथ इतना संपूर्ण आत्मसमर्पण है कि स्व का कोई अस्तित्व नहीं रह गया हो। कृष्ण एक महान प्रेमी थे जिन्हें अद्भुत आत्मसमर्पण मिलता रहा, और आज तक लाखों स्त्री पुरुष और स्त्री वेश में पुरुष जो अपने प्रेमी को रिझाने के लिए स्त्रियों जैसा व्यवहार करते हैं, उनके नाम पर आंसू बहाते हैं और उनमें लीन होते हैं। ये अनुभव कभी कभी राजनीति में आ जाता है और नपुंसकता के साथ साथ जाल फरेब शुरू हो जाता है। जन्म से मृत्यु तक कृष्ण असाधारण, असंभव और अपूर्व थे। उनका जन्म अपने मामा के कैद में हुआ, जहां उनके माता और पिता जो एक मुखिया थे बंद थे। उनसे पहले जन्मे भाई और बहन पैदा होते ही मार डाले गए थे। एक झोली में छिपाकर वे कैद से बाहर ले आए गए। उन्हें यमुना के पार ले जाकर सुरक्षित स्थान में रखना था। गहराई ने गहराई को खींचा, यमुना बढ़ी, और जैसे जैसे उनके पिता ने झोली ऊपर उठाई, यमुना बढ़ती गई, जब तक कि कृष्ण ने अपने चरण कमल से नदी को छू नहीं लिया। कई दशकों के बाद उन्होंने अपना काम पूरा किया। उनके सभी परिचित मित्र या तो मारे गए या बिखर गए। कुछ हिमालय और स्वर्ग की ओर महाप्रयाण कर चुके थे। उनके कुनबे की औरतें डाकुओं द्वारा भगाई जा रही थीं। कृष्ण द्वारिका का रास्ता अकेले तय कर रहे थे। विश्राम करने वो थोड़ी देर के लिए एक पेड़ की छांव में रुके। एक शिकारी ने उनके पैर को हिरण का शरीर समझकर बाण चलाया और कृष्ण का अंत हो गया। उन्होंने उस क्षण क्या किया? क्या उनकी अंतिम दृष्टि करुणा में मुस्कान के साथ जो समझ से आती है शिकारी पर पड़ी? क्या उन्होंने अपना हाथ बांसुरी की ओर बढ़ाया जो अवश्य ही पास में रही होगी, और क्या उन्होंने बांसुरी पर अंतिम दैवी आलाप छेड़ा, या मुस्कान के साथ हाथ में बांसुरी लेकर ही संतुष्ट रहे? उनके दिमाग में क्या क्या विचार आए? जीवन के खेल जो बड़े सुखमय यद्यपि केवल लीला मात्र थे, या स्वर्ग से देवताओं की पुकार जो अपने विष्णु के बिना अभाव महसूस कर रहे थे?
1: कृष्ण के संबंध में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचार। अभी आप विचार बिंदु में सुन रहे थे ये वार्ता। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब किसान भाई अपना कार्यक्रम सुने, कृषि जगत।

0: किसान भाइयों को आज हम सुनवा रहे हैं गर्मी के मौसम में खेती की तैयारी विषय पर अवनीश यादव से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत।
1: किसान भाई, खेती किसानी में हर समय खेत में कुछ न कुछ देखा बोआ जोता जात रहता है। मुला गर्मी के मौसम ऐसा होता है, जब भाई गेहूं की कटाई होता तो कम से कम 2 से 3 महीना तक खेत खाली रहता है। कहूँ कहूँ तो भाई देखा जायद की खेती में भी खेत बोआई होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गर्मी के महत्वपूर्ण समय बाटे, हम अपन खेत के जो है तैयारी कैसे की जाए कि जो आवे वाली फसल बाटे वो बेहतर हो। तो आज के बिना जानकारी दे के खातिर डॉक्टर अवनीश यादव जी भी यहाँ हैं। आप सुवार्स में काम कर रहे ना और विषय के विशेषज्ञ हैं, तो ये बताऊँ कि जो गर्मी के मौसम बा, किसान भाई अपन खेत की तैयारी हम कैसे करें।
2: किसान भाइयों, देखो ऐसी बात है कि अप्रैल और मई का महीना का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इन महीनों में कुछ आवश्यक कदम उठाकर किसान भाई साल भर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। असल में इस समय खेती की गहरी जुताई करके बहुत ही फायदेमंद

0: होती है। इसको जमीन के अंदर छिपे रहने वाले फसलों में शस्त्र कीट सूर्य की गर्मी से नष्ट हो जाते हैं और फसल पर कीट और रोगों का प्रकोप कम हो जाता है। साथ ही खेत की वर्षा जल को धारण करने की क्षमता भी बहुत बढ़ जाती है। इससे आने वाले सीजन में फसलों की पैदावार में इजाफा मिलता है किसान भाइयों को।
1: अच्छा अच्छा देखा ही तो भाई बात हो गई कि अगर जो गर्मी के सीजन में अगर खेत के जुताई की जाए तो उसे का देखा लाभ हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी जो अपने मृदा बाटे एहमा कौन कौन से ऐसे तो हैं जो उनको योगी कहाँ जो एक जुताई से फायदामंद होते हैं।
0: जो तत्व हैं, जो सर आपने तत्वों की बात कही है, जिसमें क्या है कि ये जब हम गेहूं काटने के बाद खेत को खाली छोड़ देते हैं, इस समय क्या है कि खेतों से हम 5 से 10 जगह से, जैसे कि पानी की जहाँ नाली ना हो, खेतों के कोने पे नहीं ले सकते हैं, 15 जगह से हम मिट्टी लेंगे किसान भाई, और उसको जब तक उसको मिला के 4 भागों में डिवाइड करते रहेंगे किसान भाई, जब तक हमारी 500 ग्राम सोयल रह जाएगी तो मैं उसको क्या करेंगे, किसी स्वास्थ्य कार्ड जैसे कि है एक एग्रीकल्चर में उसमें ले जा सकते हैं, उसमें भी जाके जांच करा सकते हैं वो, तो उसमें जो तत्वों की कमी होगी उसको हम पूरा करेंगे और जो फसल उत्पादन हमारा किसान भाइयों का बेहतर हो जाएगा।
1: अच्छा अच्छा ये बताओ भी जो मृदा शहरीकरण मतलब एक तरीके से जो उनका तत्व है कुल मिलाकर अलग अलग होते एकर का अर्थ है एक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा।
0: जैसे कि किसान भाई जुताई नहीं कर सकते हैं तो क्या है कि इसमें वो अपनी जो प्लास्टिक की पन्नी है उसको भी चादर से बिछा देंगे किसान भाई, तो उसका तापमान बढ़ जाएगा, जो अभी हमने उसकी बात की थी, जो जीवों की बात की, जो कीटों की और जो हमारे अंडे होते हैं वो सब नष्ट हो जाएं, क्योंकि जब हमने आपने देखा होगा कोई चादर बड़ी बिछी रहती है तो उसमें हवा का संसालेशन कम होगा तो सूर्य का प्रकाश भी अधिक रहेगा।
1: अच्छा मतलब कहे मतलब ये बात कि जो छोटा रकबा वाला अपन खेत बाटे जहाँ पे भाई अगर नहीं जुताई हुई पाँच बार ट्रैक्टर कोनो कृषि यंत्र नहीं पहुँचे दबा तो ओका कोनो न कोनो संसाधन से खेत पूरा ढक ही दें तो उससे खेत की गर्मी बढ़ जाए और जो उनकर क्षमता बाटे वो बढ़ सका था जो है। अच्छा एक अलावा और का बात बाटे खास करके जो है जब गर्मी के मौसम में जो है पानी और जो जल बा ओके बचत के खाते।
0: देखिए किसान भाइयों जल बचत के लिए जब हम जुताई करके खेत खाली पड़ा रहेगा तो हम उसका लेवलिंग करेंगे, जिससे क्या है कि लेवलिंग करेंगे, कहीं पानी अधिक भरता किसान भाइयों का, कहीं कम भरता है, तो कहीं फसल सूख जाती है और कहीं फसल हमारी नष्ट हो जाए। जैसे समतलीकरण कर देंगे तो एक सैंपल पानी लगेगा जिससे कि हमारा उत्पादन और ज़्यादा बढ़ जाएगा।
1: मतलब कुल मिला के पानी का जो सोखे के जो क्षमता व खेत के वो बढ़ जाएगी,
0: वो बढ़ जाएगी और जो उत्पादन जो हमारा एक प्लेन पानी लगेगा किसान भाइयों को, तो क्या है कि किसान भाइयों को एक साथ पानी की कम पानी में अच्छी उत्पादन हो जाएगा। किसान भाई कभी कभी पानी में उखट जाता है खेत का, जो पौधे होते हैं और कहीं पौधों से पानी पहुँचता ही नहीं है,
1: बिल्कुल,
0: तो उत्पादन हमारा कम और अधिक हो जाता है,
1: अच्छा,
0: कहीं तो अच्छा मिलता है कहीं हमारा कम हो जाता है।
1: हम कहीं देखा जब खेत के जुताई किसान भाई अपन कई दे हैं तो महत्वपूर्ण बात बाटे कि ओकर मृदा जो परीक्षण तो ओ का तरीका बा ओ का हमारे किसान भाई के बारे में बताओ।
0: देखो वो ये चीज़ है कि हमने पहले आपको बताया था किसान भाइयों के लिए कि वो अपने खेतों से जैसे कि उर्वरक हो गई या कंपोस्ट खाद पड़ी हुई है तो वहाँ से वो न लें, खेत से 15 ठौर से वो अपनी सॉइल को सैंपलिंग लेंगे, वो भी 15 सेंटीमीटर और खुरपी के सहायता से, और वो तब तक उसको मिट्टी को मिलाएं और भागों में बांटते रहें जब तक 500 ग्राम मिट्टी रह जाए, और वो जाके जैसे एग्रीकल्चर में
1: जहाँ पे भी मृदा
0: टेस्टिंग हो वहाँ वो कराएं, उस पोषक तत्वों के बारे में जानें कि कौन सा कम है कौन सा अधिक है, जिससे क्या फास्फोरस की कमी है और हम फास्फोरस बढ़ाते जाएंगे तो क्या है कि वो फसल उत्पादन हमारा अच्छा नहीं होगा।
1: बिल्कुल उनका मतलब यह है कि अगर ओकर परीक्षण हो जाएगा जो मृदा बाटे तो हमें पता लग जाएगा कि कौने मिट्टी में कौने तत्व के कमी बाटे तो किसान भाई उस तत्व के पूर्ति करके जो अपन उत्पादन बाटे जो आगे वाली फसल बा तो ओका बेहतर कर सकते हैं। अब सवाल ये बाटे कि जब खेत के जुताई हो गए बाटे फिर ओके बाद जब बारिश होए तो किसान भाई कौन ऐसा तरीका बाटे जब अगली फसल बोई तो उस समय का तैयारी बा।
0: देखिए जैसे कि आपने कहा कि आपने ये कहा है कि कौन सी फसल, जैसे कि किसान भाइयों ने खेत जोत दिया है और वो तैयार हो गया है और जब हमारी बारिश की सीजन आएगी तो जो पानी होगा वो हमारी खेत की सूखने की क्षमता बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो फिर क्या है जैसे कि आप कोई धान लगाएगा या कोई करेगा तो उसमें उत्पादन अच्छा मिलेगा हमको, क्योंकि जो कीट भी थे और जो अंडे भी थे वो सूर्य के गर्मी से नष्ट हो गए, कुछ बचे होंगे केमिकल से नष्ट हो जाएंगे, उत्पादन हमारा बढ़ जाता है।
1: अच्छा

0: कहा जाता है हमारे जो किसान भाई यहाँ भी है, जब जोताई के समय आवत है तो बहुत से किसान भाई यहाँ की गर्मी के सीजन बाटे भाई हल्का फुल्का पानी का पाटा मार के हल्की जोताई कह दे न कम गहरी की जोताई कह दे। अब बहुत से भाई यहाँ जो प्रगतशील भाई यहाँ जो जानकार हैं तो बहुत गहरी जोताई करते, तो ऐसा जो किसान भाई यहाँ हैं उनके लिए का संदेश दे चाहता है
1: देखिए,
0: कि
1: मैं
0: जो गहरी जोताई बा ओकर का फायदा बा और हल्की जोताई से का नुकसान।
1: फायदा है सर, जो गहरी जुताई जैसे कि जो हमारे जो जमीन के जो अंडे होते हैं, जो जीव वो जो जंतु होते हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो ऊपर आ जाते हैं, सूर्य की गर्मी से वो नष्ट हो जाते हैं। और जो हल्की जुताई होती है तो वो अंदर तक तापमान उतना नहीं पहुंचता है कि वो नष्ट हो सकें।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जब गहरी जुताई हो तो निश्चय रूप से जो मिट्टी बाटे वो पलट के नीचे
1: ऊपर
0: वाले
1: से, ऊपर से आ जाएगी,
0: ऊपर
1: ऊपर
0: आ
1: से
0: जाएगी, और जो नीचे ऊपर वाला बा वो
1: वो
0: नीचे जाए,
1: नीचे चला
0: तो
1: जाएगा।
0: तनि एक फायदे के बारे में बताऊं।
1: तो इससे सर ये हमारे कीट खत्म हो जाएंगे तो फसल का प्रोडक्शन, हमारा जो उत्पादन है वो भी बढ़ जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: क्योंकि जब रोगग्रस्त रहेगी तो उत्पादन हमारा किसान भाइयों का नहीं बढ़ता है। किसान भाई हमारे जैसे यूरिया, डीएपी और फास्फोरस डालते हैं, उनको तत्वों की पता ही नहीं रहती कि सॉइल में कौन सा तत्व कम हो रहा है या कौन सा बढ़ रहा है।
0: तो भाई जब गर्मी की जुताई किसान भाई से कह लेते हैं तो कितना मतलब खाद पानी का आवश्यकता समझी जाता है भाई अगली फसल के लिए।
1: अगली फसल के लिए जैसे कि आपने बहुत अच्छा बात की है, जैसे कि हम किसी फसल के लिए बोलते हैं तो पहले तो हम सॉइल टेस्टिंग के लिए आपने जो बात की थी बहुत अच्छी किसान भाइयों के लिए है कि वो जब तक नहीं करेंगे तब तक किसान भाइयों को उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। जब किसान भाई उसके बारे में पता चला लेंगे कंपोस्ट खाद क्या, जैसे कि यूरिया डीएपी कितनी परसेंट हम डालें, तो उससे टेस्टिंग से हमको पता चल जाएगा किसान भाइयों को किस चीज़ तत्व की कमी है, किसकी हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है।
0: बिल्कुल। हम कहें भैया अवनीश यादव जी आप आएन और गर्मी के मौसम में जो उन खेत के जोताई बाटे
1: जी
0: वो काहे आवश्यक बाटे और किसान के लिए कितना ही लाभदायक हो सकता है, अगर जांच कैसे करी जाए, और साथे साथे भाई एकर पानी के जो सोखे के जो क्षमता बढ़ जाता है और अगले जो फसल बा उसमें भी सिंचाई के आवश्यकता कम महसूस की जाते हैं। तो आप इतनी बढ़िया जानकारी दें, निश्चय रूप से हमारे जो किसान भाई यहाँ हैं वो लाभान्वित हुई आपको जानकारी दिखाते, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गर्मी के मौसम में खेती की तैयारी विषय पर किसान भाई अभी सुन रहे थे अवनीश यादव से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: एहसास की धूप छाओं में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज़ और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।

0: लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज हम सुनवा रहे हैं युवाओं में नशे की लत से होने वाली आम समस्याएं, लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर विपुल मेहरोत्रा की वार्ता।
1: आधुनिक समाज में नशे की लत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यह न केवल उस व्यक्ति के लिए हानिकारक है जो उसका सेवन करता है, बल्कि उस परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी हानिकारक है जिसमें वह व्यक्ति रहता है। भारत में 2002 के सर्वे के मुताबिक प्रति हजार व्यक्ति में 200 व्यक्ति शराब और तंबाकू का सेवन करते हैं और 4 व्यक्ति स्मैक का शिकार हैं। वैसे तो मादक पदार्थों का उपयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है, जिसमें मुख्यतः प्राकृतिक रूप से उपलब्ध पदार्थ जैसे भांग, अफीम, तंबाकू, चाय, शराब आदि का प्रयोग किया जाता था।

0: पर आजकल इन पदार्थों का रासायनिक रूपांतरण करके इन्हें ज्यादा प्रभावशाली और तीव्र गति से असरदार बनाकर बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें स्मैक, LSD, इनहेलेंट आदि का प्रयोग हो रहा है। कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के नींद की गोलियों या कफ सिरप का भी सेवन करते हैं। आजकल इंटरनेट और मोबाइल की लत और भी विकराल रूप लेती जा रही है, जिसमें इंटरनेट गेम और सेल्फी एडिक्शन प्रमुख हैं। तनावयुक्त जीवन शैली, बेरोजगारी, शैक्षणिक असफलताएं, टूटते परिवार, अकेलापन, हीनता, निरस्ता, संगी साथियों के दबाव, व्यक्तित्व संबंधी दुर्बलताओं और सही मार्गदर्शन के अभाव में व्यक्ति ऐसे पदार्थों का सेवन करने लगता है जो मानव मस्तिष्क को सीधे सक्रिय बना देते हैं। इससे व्यक्ति को क्षणिक उत्तेजना, सुख, शांति, आनंद और स्फूर्ति का अनुभव होता है। ऐसे पदार्थों के लगातार सेवन करने से मानव मस्तिष्क इन पदार्थों के उपस्थिति में ही सक्रिय हो पाता है और उसकी अनुपस्थिति में निष्क्रिय हो जाता है। अतः धीरे धीरे नशे का सेवन एक प्रकार की बीमारी का रूप ले लेती है, जिसके तहत तमाम मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक नुकसान होने के बावजूद भी व्यक्ति नशा लेने के लिए बाध्य हो जाता है और नशे के बिना उसका जीवन नीरस सा लगता है। शुरुआत में नशा करने वाले व्यक्ति को यह पता नहीं चल पाता कि वह इस लत का शिकार हो गया है। अक्सर लोग यह कहते हुए पाए जाते हैं कि हम दिन भर में केवल 3-4 सिगरेट पीते हैं या रात को सोने से पहले बस थोड़ी सी ही शराब पीते हैं। अगर व्यक्ति को नशा करने की तीव्र इच्छा करने लगे या नशा ना उपलब्ध होने पर तमाम तरह की मानसिक या शारीरिक परेशानियां होने लगे या उसे छोड़ने में असमर्थ होने लगे या नशीला पदार्थ पाने के लिए उसका ज्यादातर दिमाग और समय लगने लगे, तो यह समझ लेना चाहिए कि वह नशे का आदी हो गया है। घर परिवार वाले अगर यह देखें कि अगर कोई परिवार का सदस्य कि नींद में बदलाव आ गया है, उसके सांसों या कपड़ों में अजीब तरह की गंध आ रही है, वह अपने शौचालय में अधिक समय लगा रहा है, अस्पष्ट बातचीत या अस्थिर हरकतें कर रहा है, उसके भूख और वजन में कमी आ रही है, उसके हाथों में जलने या शरीर में इंजेक्शन के निशान हैं, तो ऐसा संभव है कि वह व्यक्ति नशा कर रहा हो। इसके इलाज में नशा न लेने पर उत्पन्न कष्टदायक लक्षणों और उसकी पुनरावृत्ति रोकने के लिए औषधियों, व्यवहार चिकित्सा, सामूहिक उपचार चिकित्सा, क्रीड़ा पद्धति और मनोविश्लेषण का सहारा लिया जाता है। परिवार और समाज को ऐसे मरीजों के प्रति सहानुभूतिक रवैया रखना चाहिए और उनको नया जीवन दिलाने के लिए यथासंभव सहायता करनी चाहिए, जब तक कि वो व्यक्ति समाज की मुख्यधारा में फिर से ना आ जाए। नशा कोई भी हो, इलाज कराने के बाद 60-70% व्यक्ति कुछ महीनों के भीतर ही फिर से नशे का सेवन प्रारंभ कर देते हैं। ऐसी स्थिति में रोगी व उनके परिवार वालों को बिना निराश हुए अपने चिकित्सक से दोबारा मिलना चाहिए। नशे से छुटकारा दिलाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति कितने लंबे समय तक नशे से मुक्त रखा गया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को चाहिए कि समाज में नशाखोरी से बचने के लिए जागरूकता फैलाएं और प्रशासन को चाहिए कि नशे की बिक्री को रोके और कड़ाई से NDPS एक्ट का पालन करें।
1: युवाओं में नशे की लत से होने वाली आम समस्याएं, लक्षण और उपचार विषय पर अभी आप डॉक्टर विपुल मेहरोत्रा की ये वार्ता सुन रहे थे। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर, दिन में 12:15 पर और रात 10:30 सुनिएगा कमला बोस का ख्याल गायन। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर ज्योति आनंद के गाए गीत और भजन और शाम 7:45 पर सुनिएगा सुजाता सिंह के गाए गीत और भजन।

सुबह 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम का प्रसारण होगा। दिन में 11 बजे एक ही कलाकार, दिन में

सुबह 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम का प्रसारण होगा। दिन में 11 बजे एक ही कलाकार। दिन में 12:30 का समय होगा आपकी पसंद कार्यक्रम का। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर बहने डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव से की गई बातचीत सुनेंगी। नवजात शिशुओं की देखभाल और निखार में जानेंगी डैंड्रफ हटाने के घरेलू उपाय के बारे में।

राम कृपाल यादव और साथी, प्रीति मिश्रा और धीरज कुमार और साथियों के गाए लोक गीतों का आनंद लीजिएगा दिन में 2:30 पर। शाम 5 बजे नन्ही दुनिया कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने आओ जाने के अंतर्गत सुनेंगे गंगा दशहरा पर माँ गंगा के बारे में। शाम 7:31 पर हिंदी कार्यक्रम में डॉक्टर सुप्रिया पाठक की वार्ता होगी हिंदी सिनेमा में स्त्री विमर्श का स्वरूप। रात 8:30 कानून और हम कार्यक्रम में पंकज कुमार मिश्र से नेहा गुप्ता की बातचीत का विषय होगा वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना। और गजलों का कार्यक्रम कहकशां सुनिएगा रात 9:30। अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विवरण सुन रहे थे। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं, प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक दिव्यानंद झा। अथ वार्ता। नवदिल्ल्यां विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर अमेरिका देशीय विदेश मंत्री मार्को रूबियो च विभिन्नेषु विषयेषु सविस्तरं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ भारत अमेरिका रणनैतिक सहभागितां भूयः अपि दृढयितुं स्वस्व प्रतिबद्धतां पुनः उदीरितवन्तौ। ताभ्यां उक्तं यत् एषा सहभागिता व्यापारोर्जा गतिशीलता क्षेत्रीय सुरक्षादि क्षेत्रेषु विशेषतः अस्ति। डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् भारतस्य अमेरिका देशेन सह व्यापकः वैश्विकः रणनैतिक सहभागित्व सम्बन्धः वर्तते, यः खलु गहन सहयोगाधृतः वर्तते। सः उक्तवान् यत् उभयोः देशयोः सम्बन्धाः सम्पूर्ण विश्वे प्रभावं जनयन्ति, अपि च अनेकेषु क्षेत्रेषु तयोः हितानि समानानि सन्ति। विदेशमंत्री उक्तवान् यत् एषा वर्तमान चर्चा कठिन वैश्विक परिस्थितिषु अभवत्, परञ्च मुक्त मनसा सार्थका चर्चा अभवत् इति तस्य विश्वासः। सः उक्तवान् यत् उभयोः

अयोध्या में श्रीराम के राजतिलक की तैयारियों की धूम मची है। एक बार फिर नगर का रूप साज सिंगार से निखर आया है। सगे संबंधियों को निमंत्रण पत्रिकाएं भेजी जा रही हैं। लंका से साथ आए विशिष्ट अतिथियों की सेवा और सत्कार के लिए अलग सेवक नियुक्त किए गए हैं। गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार श्री रामचंद्र के लिए कुल के अनुरूप सूर्य के समान सुंदर और तेजस्वी सिंहासन मंगाया गया है।

अभी आप सुरेश वाडकर के स्वर में सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्मों से भजन। ये पहली रचना है फिल्म बसंत बहार से। रचना है शैलेंद्र की, संगीत शंकर जयकिशन का और आवाज़

सुर संगम फिल्म से अब हम आपको सुनवा रहे हैं बसंत देव की रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाजें हैं पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र की।

आप सुन रहे थे फिल्मों से भजन, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 7:20 होने वाले हैं, थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, प्रतीक्षा करें।

नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप, पूर्वी जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चौपालों में राष्ट्रवाद, घरेलू हिंसा, अवैध वसूली और स्थानीय स्तर की शिकायतों का मौके पर समाधान सुनिश्चित किया जाए। श्री योगी ने IGRS

0: और सीएम हेल्पलाइन से मिली शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण तथा संतुष्टिपरक निस्तारण पर बल देते हुए कहा कि शिकायतों में किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गंगा दशहरा और बकरीद को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत सहित ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन और डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती विद्युत मांग को देखते हुए उत्पादन इकाइयों की अधिकतम क्षमता का उपयोग किया जाए और सभी संयंत्रों में तकनीकी दक्षता तथा रखरखाव व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्रांसमिशन नेटवर्क को और अधिक मजबूत, आधुनिक एवं भरोसेमंद बनाने पर जोर देने के साथ ही फीडर वाइज मॉनिटरिंग करके जवाबदेही तय करने और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने आंधी तूफान के बावजूद विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पॉन्स सिस्टम सक्रिय रखने को भी कहा। दीपाली सिंह, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक आधारित बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस की लोकेशन, मूवमेंट और संचार गतिविधियों की गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं कल शाम को ही आयुष विभाग की एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस नीति 2026 को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों तथा तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। ये निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने कल वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान ये तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव लाने के निर्देश दिए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 28 मई को प्रस्तावित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2026 स्थगित कर दिया है। NTA के अनुसार बकरीद की छुट्टी की तारीख में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _ उपलब्ध है। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज आगरा में ताजमहल देखने जाएंगे। वो विशेष वायुयान से आगरा पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिकी विदेश मंत्री का काफिला खेरिया एयरपोर्ट से शिल्पग्राम पहुंचेगा। शिल्पग्राम से बैटरी चलित गोल्फ कार्ट में बैठकर वह ताजमहल के पूर्वी गेट पहुंचेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री के आगरा भ्रमण के मद्देनजर केंद्रीय एवं प्रांतीय खुफिया एजेंसी सतर्क हैं। ताजमहल के आसपास के होटलों में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री के ताजमहल भ्रमण के दौरान आम पर्यटकों के लिए ताजमहल खुला रहेगा। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: इस बीच भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर अमेरिका के विदेश मंत्री ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कल लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों, कोऑर्डिनेटर और जिला अध्यक्षों के साथ वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की।

0: दौरान बसपा प्रमुख ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि प्रदेश में बसपा की एक बार फिर से सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव जिस प्रकार की नई नई चुनौतियों के बीच हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी को तैयारियों के हर स्तर पर और भी चुस्त दुरुस्त तथा मुस्तैद बनाने की जरूरत है। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में आज से गंगा दशहरा पर्व का आयोजन हो रहा है। पुलिस प्रशासन ने कल डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल से ही रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। एक रिपोर्ट।
1: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर पीएसी फ्लड पीएसी फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेडिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, समाचार, हापुड़।
0: मौसम विभाग ने प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहने की चेतावनी दी है। लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है।
2: जैसा कि पिछले

0: होने की संभावना है।
1: मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिन के समय कुछ स्थानों पर कल तक के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट भी जारी किया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की। प्रत्येक विकास खंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल आयोजित करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली की मांग के बीच प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। कहा, हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर की चर्चा। ताजमहल देखने आज आगरा जाएंगे अमेरिकी विदेश मंत्री। और प्रदेश में अभी और बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप, पूर्वी जिलों के लिए भीषण लू का रेड अलर्ट जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं श्रीमती कमला बोस का राग नट भैरव में ख्याल गायन। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है। बोल हैं संदेशा ले आयो उधो। तबले पर आपके साथ संगत की श्री अनूप कुमार बनर्जी ने और हारमोनियम पर श्री शमशाद अहमद खान ने। तो आइए सुने श्रीमती कमला बोस का ख्याल गायन। राग है नट भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीमती कमला बोस का रागनट भैरव में ख्याल गायन। तबले पर आपके साथ संगत की श्री अनूप कुमार बनर्जी ने और हारमोनियम पर श्री शमशाद अहमद खान ने। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी।

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युववाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर। तू शायर है,
1: मैं तेरी शायरी। समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
2: तू आशिक है, मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग।
1: सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ।
0: सुनते रहिए आकाशवाणी प्रयागराज, धड़कन हर दिल की।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 14.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र।

0: ये आकाशवाणी प्रयागराज है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीईयूटी स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
4: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों

0: की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्मभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
1: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की

0: नीति पर दृढ़ रहना होगा।
1: इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स,
2: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
2: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल

0: मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, पालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hiked by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postponed CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jaishankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional exceptional achievements in various fields and disciplines, including

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबाइली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और IPL क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा अब तक की पहली सिविल अवार्ड से मुतालिक एक तकरीब में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड होते हैं जो 3 जुमरों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के तहत दिए जाते हैं। आज इस तकरीब में सदर जमहूरिया 66 पद्म अवार्ड अदा करेंगी जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अवार्ड हैं। बकिया पद्म अवार्ड इस तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे जो बाद में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: इस साल हुकूमत ने 131 पद्म अवार्ड का ऐलान किया है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड हैं। इनाम याफ्तगान में 19 खवातीन शामिल हैं जबकि 16 अफराद को बाद अज़ मर्ग इन अवार्ड से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड मुल्क के आला तरीन शहरी अवार्ड हैं

0: इन्हें 1954 में शुरू किया गया था और इनका ऐलान हर साल यौम जमहूरिया के मौके पर किया जाता है। ये अवार्ड्स लोगों के इम्तियाजी कामों के एतराफ में दिए जाते हैं, जिनमें आर्ट, लिटरेचर, तालीम, खेलकूद, दवाएं, सामाजिक काम, साइंस और इंजीनियरिंग, अवामी उमूर और तिजारत और सनत के मैदान शामिल हैं। प्रिया मोंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: पद्म अवार्ड्स अदा किए जाने के मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के तौर पर खुसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
2: We launched an environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
3: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा, जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोगरोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
4: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
1: अपनी इन नशरियात में हम अपने सामेईन को उन शख्सियतों के कामों और जिंदगियों के बारे में तफसील फराहम करा रहे हैं जिन्हें पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। आप इस बातचीत को आज 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसा सिविल कोड UCC के दायरे अमल से अलग करने की खसूसी सहूलतें रखी हैं, जिसके तहत इस बात को यकीनी बनाया गया है कि उनके हकूक पूरी तरह महफूज हैं। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि UCC से कोई कबायली हकूक खत्म नहीं होंगे।
5: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
1: वजीर दाखिला ने यह भी कहा कि कबायली बहबूद के बजट में नरेंद्र मोदी हुकूमत के तहत 1,50,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है, जबकि ये कांग्रेस सरकार के दौरान महज 28,000 करोड़ रुपए था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने BJP उम्मीदवार दिबांशु पांडा को फाल्टा असेंबली में दोबारा कराई गई पोलिंग में रिकॉर्ड वोट हासिल करने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि इस जीत से BJP के तई मगरबी बंगाल के अवाम के पुख्ता अजम का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि लोग मुख्तलिफ शोबों में मगरबी बंगाल सरकार का गैर मामूली काम देख रहे हैं, लिहाजा उन्होंने इस पार्टी को मजीद काम सौंपने का फैसला किया है। जनाब मोदी ने मगरबी बंगाल में BJP कारकुनों की उनके गैर मामूली काम पर सताइश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आने वाले वक्त में मगरबी बंगाल की तरक्की के लिए सभी लोग इसी तरह काम करते रहेंगे। पेट्रोल की कीमत में आज 2.61 रुपए फी लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया है। यह इजाफा 2 हफ्ते में चौथी बार है, लिहाजा अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपए और डीजल की कीमत 95.20 रुपए फी लीटर होगी। इम्तहानात मुनक्किद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने इस माह की 28 तारीख को होने वाले यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट्स के लिए दाखिले के मुश्तरका इम्तिहान 2026 को मुलतवी कर दिया है। NTA ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद उल अजहा के पेश नजर यह फैसला किया गया है। एजेंसी ने बताया कि अब इस इम्तिहान के लिए नई तारीखों का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। NTA ने उम्मीदवारों को ताजा जानकारी के लिए उसकी बाजाब्ता वेबसाइट देखने का मशवरा दिया है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के जवाबात के पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपीज हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसीख कर दी है, जो कल तक थी। CBSE ने कहा कि यह फैसला इस मकसद से किया गया है कि तलबा को अपनी दरखास्तें दाखिल करने के लिए पूरा वक्त मिल सके। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल को की खामियों को दूर करने के लिए CBSE की मदद की गरज से IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसर और तकनीकी माहिरीन की एक टीम तैनात करने की हिदायत दी है। यह फैसला CBSE के नतीज के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के बारे में तलबा और वालदेन की तरफ से जाहिर की गई तशवीश के पेश नजर किया गया है। تعلیم کی وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ آئی آئی ٹیز کے ماہرین کی یہ ٹیم نظام میں تکنیکی بہتری

त्रिल्ला ने नीज खास तौर पर इम्तिहान के पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारदगी को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए करेगी। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल माली और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन से बातचीत की। ये बातचीत CBSE के बाद के नतीज और जवाबात के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल के दौरान तलबा को दरपेश तकनीकी और अदायगी से मुतालिक मामलात के बारे में की गई है। वजारत तालीम ने बताया कि इस बातचीत के दौरान यह फैसला किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE को इसकी अदायगी के निजाम और इम्तिहानात के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल को लाजमी तौर पर मरबूत किए जाने में मदद देंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से शदीद तौर पर लड़ना चाहते हैं। कल नई दिल्ली में अमरीका की आज़ादी के 250 साल पूरे होने के मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका को दहशतगर्दी हरगिज बर्दाश्त न करने के बारे में हमेशा वाज़ेह रहना चाहिए और इसी वजह से दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए उनका तआवुन निहायत अहम है। उन्होंने कहा कि दोनों की मुश्तरका दिलचस्पी आलमी मईशत को दरपेश खतरात को ख़त्म करने और दुनिया को मजीद मौके फराहम करने में है। वजीर खारजा ने कहा कि बहुत से मौके ऐसे होते हैं जिनसे दोनों मुल्कों को बहुत से मैदानों में मौसर दिफाई शराकत दार बनने के मौके मिलते हैं। अमरीकी वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो के दौरे का जिक्र करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इस दौरे से मौजूदा दौर में भारत अमरीका ताल्लुकात की अहमियत का इजहार होता है। उन्होंने यह भी कहा कि एक साल पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों की पायदार शराकत दारी को मजीद फरोग देने का एक रास्ता कायम किया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमरीकी सफीर सर्गियो गोर को फोन किया। उन्होंने ये फोन कल नई दिल्ली में भारत मंडपम में अमरीका की आजादी के 250 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब के दौरान किया। अमरीकी सदर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक दोस्त करार दिया और कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात कभी इतने करीबी नहीं रहे। जनाब ट्रंप ने कहा कि वो भारत को पसंद करते हैं, यहां तक कि उन्होंने खुद को वजीर आजम मोदी का एक बिग फैन करार दिया। जनाब ट्रंप ने कहा कि भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। अमरीकी सफीर ने अपने फोन का रुख माइक्रोफोन की तरफ कर दिया ताकि सामईन ट्रंप की ये बातें सुन सकें। इस तकरीब में वजीर खारजा एस जयशंकर, अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो और अमरीका के सफीर सर्गियो गोर ने शिरकत की। अमरीकी सदर ने यह राजधानी अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो के भारत के 4 रोजा दौरे के दौरान की है। जनाब रूबियो ने वजीर आजम मोदी से हफ्ते को मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कल वजीर खारजा एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल से मुलाकात की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने नुमाइंदों से कहा है कि वो ईरान के साथ मुआहदा करने में जल्दबाजी न करें, क्योंकि उनकी इंतजामिया को इस 3 महीने की जंग में किसी फौरी पेशरफ की उम्मीदें कम हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इंतजामिया के तहत ईरान के साथ मुस्तकबिल में किसी भी मुआहदे में कोई माली रियायतें शामिल नहीं होंगी और ये मुआहदा बुनियादी तौर पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की मुद्दत कार के दौरान हुए मुआहदे से मुख्तलिफ होगा। उन्होंने ओबामा के दौरे हुकूमत में ईरान के साथ हुए न्यूक्लियाई माहदे की सख्त नुक्ताचीनी की। नीज ये दावा किया कि उनकी तरफ से मुजवजा माहदा तेहरान को न्यूक्लियाई हथियार हासिल करने से रोकेगा और ये माहदा साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा की तरफ से किए गए माहदे से मुख्तलिफ होगा। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के दौरान आज से सालाना 5 रोजा मनासिक हज का आगाज हो रहा है। भारत समेत दुनिया भर से 16 लाख से ज्यादा आजमीन हज सऊदी अरब में मक्का मौजमा से मीना के लिए रवाना हो रहे हैं। वो मीना में रात के क्याम के बाद कल सुबह वकूफ अरफा के लिए मैदान अरफात जाएंगे। इस साल भारत से 1,75,000 आजमीन फरीजा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब गए हुए हैं। बांग्लादेश में भारत के सुबुकदोश हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा ने कल बांग्लादेश के वजीर आजम तारिक रहमान से अलविदाई मुलाकात की। बांग्लादेश में भारतीय हाई कमीशन की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर जारी एक पोस्ट के मुताबिक वजीर आजम ने जनाब प्रणय वर्मा की भारत बांग्लादेश ताल्लुकात को मजबूत बनाने में उनकी खिदमात को सराहा। IPL क्रिकेट में कल रात कोलकाता के एडन गार्डन्स में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत के लिए 204 रन का निशाना दिया था। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स 18 ओवर 4 गेंद पर

0: महज 163 रन बना सकी। ओस्लो में पहले राउंड के मुकाबलों के साथ ही नॉर्वे शतरंज 2026 का आगाज हो गया है। अलबत्ता इस टूर्नामेंट का आगाज सरकारी तौर पर आज भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे होगा। ये नॉर्वे शतरंज का 14वां और नॉर्वे शतरंज खवातीन का 3रा टूर्नामेंट है। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर चलने के हवाले से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना के बाज इलाकों में भी दिन के दौरान शदीद गर्मी की सूरत हाल रहने का इम्कान है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नई दिल्ली में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब लिखता है कि भारत और अमरीका के ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। अखबार ने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि दुनिया की दो बड़ी जमहूरियतों के दरमियान ताल्लुकात सिफारतकारी से कहीं आगे बढ़ चुके हैं। इसी अखबार ने भारतीय हुकूमत की तरफ से अपने शहरियों को एबोला वायरस के तई मोहतात रहने के मशवरे से मुतालिक खबर को भी अपने पहले सफ़े पर शाये किया है।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड अदा करेंगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि हुकूमत ने सभी कबायली बिरादरियों को यकसां सिविल कोड के दायरे अमल से अलग रखा है। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपये फी लीटर जबकि डीजल की कीमत में 2.71 रुपये फी लीटर का इजाफा किया गया है। इम्तहानात मुनाकिद करने वाली कौमी एजेंसी ने इस माह की 28 तारीख को कराए जाने वाले CUET UG 2026 इम्तहानात मुलतवी कर दिए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर किस्म की दहशतगर्दी से लड़ने में शदीद दिलचस्पी के हामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत उन पर पूरी तरह एतबार कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वो वजीर आजम मोदी के बड़े परस्तार हैं। और IPL क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म होता है।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। नमस्कार श्रोताओं, आज 25 मई है। 25 मई को हम विश्व थायराइड दिवस मनाते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और आपको गाने भी सुनवाएंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि ये थायराइड क्या है। तो हम आपको बता दें कि ये हमारे गले में तितली के आकार की छोटी सी ग्रंथि होती है। होती तो ये छोटी सी है, पर इसका काम बड़ा है। इसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय को नियंत्रित करना। इसके असंतुलन के कारण हमारा शरीर कई रोगों से ग्रस्त हो सकता है। थायराइड ग्लैंड का काम होता है T3 और T4 हार्मोन बनाना। ये हार्मोन हमारे वजन, दिल की धड़कन, तापमान और मूड को नियंत्रित करते हैं। जब हार्मोन कम काम करता है तो हाइपरथायराइड, और अधिक सक्रिय हो तो हाइपरथायराइड कहा जाता है। ये दोनों स्थितियाँ बीमारी की होती हैं। इनसे बचने के उपायों के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

एक बार फिर लौटते हैं अपने विषय पर। हाइपरथायराइड और हाइपरथायराइड ये दो मुख्य प्रकार की बीमारियां हैं। इनसे बचने के उपायों के बारे में बात करने से पहले इसके लक्षणों की बात करें तो हाइपरथायराइड में जहां लगातार वज़न बढ़ता है, थकान और कमज़ोरी बनी रहती है, बाल झड़ते हैं, त्वचा रूखी हो जाती है, कब्ज़ रहती है, ठंड लगती है, डिप्रेशन, याददाश्त का कम होना और महिलाओं में पीरियड का अनियमित होना। वहीं हाइपरथायराइड में वज़न घटना, दिल की धड़कन तेज़ होना, पसीना ज़्यादा आना, गर्मी सहन ना होना, हाथ कांपना, चिड़चिड़ापन और नींद ना आना, ये सारे लक्षण होते हैं।

एक बार फिर लौटते हैं अपने विषय पर। हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड ये दो मुख्य प्रकार की बीमारियां हैं। इनसे बचने के उपायों के बारे में बात करने से पहले इसके लक्षणों की बात करें तो हाइपोथायराइड में जहां लगातार वज़न बढ़ता है, थकान और कमज़ोरी बनी रहती है, बाल झड़ते हैं, त्वचा रूखी हो जाती है, कब्ज़ रहती है, ठंड लगती है, डिप्रेशन, याददाश्त का कम होना और महिलाओं में पीरियड का अनियमित होना। वहीं हाइपरथायराइड में वज़न घटना, दिल की धड़कन तेज़ होना, पसीना ज़्यादा आना, गर्मी सहन ना होना, हाथ कांपना, चिड़चिड़ापन और नींद ना आना, ये सारे लक्षण होते हैं। कारण होता है आयोडीन की कमी या इसका ज़्यादा होना, ऑटो इम्यून बीमारियाँ, तनाव, प्रदूषण, आनुवंशिक कारण, गर्भावस्था के समय हार्मोन में बदलाव। इन लक्षणों के दिखने पर, अगर ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो TSH, T3, T4 और खून की जांच करवाना ये ज़रूरी हो जाता है। अगर ये बीमारी अभी शुरू हुई है तो जल्दी ही नियंत्रित हो सकती है। अब अगर उपायों की बात करें तो आयोडीन युक्त नमक का संतुलित मात्रा में सेवन, हरी सब्जी, अखरोट, अंडे, दही, समुद्री मछली खाएं तो इसमें काफ़ी राहत रहती है। और सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि नियमित 30 मिनट व्यायाम, खासकर योग जिसमें उज्जाई और सूर्य नमस्कार, टहलना आदि शामिल हैं, ज़रूर करें। धूम्रपान और ज़्यादा प्रोसेस्ड खानों से बचें। महिलाएं खासकर जो 30 साल से अधिक की हो चुकी हैं, वो खून की नियमित जांच करवाएं और उसमें थायराइड है या नहीं इसकी जांच ज़रूर करवाएं। ज़्यादातर ये बीमारी दवा से ठीक हो जाती है। कभी कभी हाइपरथायराइड में सर्जरी करनी पड़ती है। आइए संकल्प लें कि हम छोटी से छोटी बीमारी या उसके लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और सेहत के प्रति जागरूक रहेंगे। तो बिना किसी तनाव के मुस्कुराते रहिए और सुनिए ये गीत।

गीत तो हम आपको सुनवा ही रहे हैं। आपको एक बात और बता दें कि हर वर्ष ये दिवस किसी न किसी थीम पर आधारित होता है और इस वर्ष का थीम है थायराइड और पोषण, यानी ये बीमारी हमें ना हो इसके लिए हमें अपने पोषण पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।

बिल्कुल सही बात है, अपना हर पल ऐसे ही जीना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो कहनी ज़रूरी है वो ये कि तनाव हर बीमारी की जड़ है, तो इससे दूर रहने की जितनी हम कोशिश करेंगे उतना ही हम बीमारियों से दूर रहेंगे। आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे?
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से? वाह,
3: फसा। अनजान ऐप से बचें।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं लक बाय चांस फिल्म से। जावेद अख्तर ने इस गीत को लिखा है, संगीत है शंकर एहसान लॉय का और आवाजें हैं शंकर महादेवन और साथियों की।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं गोलमाल रिटर्न्स फिल्म का गाना। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत है प्रीतम का और आवाजें हैं नीरज श्रीधर, अन्वेषा आकृति और अर्ल और इंडी की।

0: ये था फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:15 होने को हैं। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कन्नौज और पीलीभीत जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कन्नौज जिले की हलचल, आलेख और स्वर है रवि कुमार द्विवेदी का।
2: कन्नौज जिले में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। तापमान 41 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। भीषण गर्मी से बचाव के लिए शासन ने बजट आवंटित किया है। इस धनराशि से प्रशासन ने जिले के तीनों रोडवेज बस स्टॉप पर दो दो कूलर लगवाए हैं। इसके साथ ही गुड़ और ORS की व्यवस्था भी की गई है। आम जनता की सुविधा के लिए कलेक्ट्रेट में भी प्याऊ की व्यवस्था की गई है। यहाँ भी लोगों को शीतल जल के साथ साथ गुड़, पेठा और गट्टा उपलब्ध कराया जा रहा है। जिलाधिकारी दोस्त मोहन अग्नोत्री ने बताया कि लोगों को गर्मी और लू से बचाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं।
3: जनपद कन्नौज में रोडवेज बस स्टैंड कन्नौज, गुरसाहेगंज और छिबरामऊ, तीन जगहों पर हम लोगों ने दो दो बड़े कूलर लगवाए हैं। साथ ही साथ इन जगहों पर गुड़, पानी और ORS के पैकेट भी रखे गए हैं। नगर निकाय की ओर से इसमें कर्मचारी भी लगाए गए हैं। 24 घंटे कर्मचारी उपस्थित रहेंगे। जो नागरिक आते हैं वो बुला करके और हम लोग देख करके उनको स्वच्छ पेयजल भी देंगे, साथ ही साथ उनको ORS के पैकेट भी रहेंगे। इस समय चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, नागरिक सुरक्षित रहें, वो जागरूक रहें और उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसलिए इस प्रकार की की जा रही है।
2: कन्नौज जिले में इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के अंतर्गत जनपद के 11 चयनित विद्यार्थियों में निहित वैज्ञानिक सोच और नवाचार की भावना को सराहा जा रहा है। विद्यार्थियों ने अपने विचारों को मॉडल और प्रोजेक्ट के रूप में साकार कर जनपद का गौरव बढ़ाया है। जिला प्रशासन विद्यार्थियों के अभिनव मॉडल और प्रोजेक्ट को पेटेंट कराने, छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने तथा उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रयास है। कन्नौज जिले में संसाधनों का सम्मान अभियान चल रहा है, जिसके माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी पर अंकुश लगेगा। अभियान के तहत लोगों से अपील की गई है कि वे सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी पाने पर सूचना कमांड सेंटर 1077 पर दें। दिन में जलती हुई स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक स्थानों पर बहता पानी, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक परिसरों में अनावश्यक रूप से जल रही लाइटें, जागरूक नागरिकों को सम्मानित भी किया जाएगा ताकि समाज में जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना मजबूत हो सके। राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि संसाधनों की बचत केवल प्रशासन की ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जन सहभागिता से ही जिले को बेहतर से बेहतरीन बनाया जा सकता है। कन्नौज जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत शिवरामऊ में 100 और उमरदा में 116 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं मुख्य सेविकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए गए हैं। अब तकनीक से सशक्त होकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां एवं सहायिकाएं मात्र शिशु पोषण टीका

0: करण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित सेवाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से जन जन तक पहुंचा सकेगी। यह पहल सहायिकाओं के उत्साह वर्धन के साथ आंगनबाड़ी सेवाओं के डिजिटलीकरण और सुदृढ़ क्रियान्वयन की दिशा में एक सार्थक सिद्ध होगी। कन्नौज जिले में वेटलैंड के संरक्षण के लिए प्रशासन ने पहल शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में इस्माइलपुर, रोंसा और निघो खास में एवं असेह में स्थित वेटलैंड को अधिसूचित किए जाने का काम शुरू हो चुका है। आर्द्रभूमि शक्तिशाली कार्बन सिक है, जो किसी भी अन्य पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं, जिससे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों को कम करने में मदद मिलती है। जनपद में 100 वेटलैंड चिन्हित किए गए हैं। इन वेटलैंड के संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की गई है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने वेटलैंड के संरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है। कन्नौज जिले की 499 ग्राम पंचायतों में 1 जुलाई से विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना लागू होगी। योजना को साकार करने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वर्तमान में करीब 1,00,000 श्रमिक पंजीकृत हैं, जिन्हें नई व्यवस्था के तहत रोजगार और आजीविका से जोड़ा जाएगा। नई योजना के तहत मनरेगा की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस बार स्थायी आजीविका और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर होगा। योजना के तहत श्रमिक परिवार की महिला सदस्य को जॉब कार्ड में शामिल कर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जनपद में 25,000 से अधिक महिलाओं को रोजगार देने की तैयारी है। मजदूरी का भुगतान सीधे महिलाओं के बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाएगा, जिससे आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। पुराने 100 दिनों के प्रावधान के बजाय अब हर ग्रामीण परिवार के सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी। पुराने मनरेगा जॉब कार्ड की जगह अब नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड बनेंगे। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए चेहरा पहचानने वाली तकनीकी विशेष सुविधा होगी। हर गांव में विकसित ग्राम पंचायत प्लान तैयार होगा। ग्राम सभा की मंजूरी के आधार पर विकसित कार्य होंगे। कन्नौज जिले में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 51 परिवारों को 1,97,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता को शासन ने स्वीकृति दे दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्राप्त बजट के सापेक्ष पात्र दावेदारों को जल्द आर्थिक सहायता मिलेगी।
1: कन्नौज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्रा का।
2: पीलीभीत जिले में इस समय भीषण गर्मी से हर कोई बेहाल है। इसके चलते स्कूल कॉलेजों में अवकाश कर दिया गया है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने गर्मी से बचाव हेतु पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
3: सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगवाए हैं और पानी की व्यवस्थाएं की हैं। जितने वाटर कूलर थे नगर पालिकाओं के टाउन एरिया के, वो हम लोगों ने सही कराए हैं और निर्देशित किया है सभी ईओ को कि वो एक बार चेक करा लें जो वाटर कूलर शहर में लगे हुए हैं, उनमें प्रॉपर पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और खासतौर से बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थानों पर पानी की व्यवस्थाएं कराएं। और ग्राम प्रधानों से भी हम लोगों ने अपील की है कि वो गाँव में भी देख लें कि कोई भी जानवर पैसा न रह जाए। इसलिए जो भी तालाब है हमारे और सार्वजनिक स्थान है जो ग्रामीण क्षेत्रों उनकी भी।
2: गर्मी का असर पीलीभीत टाइगर रिजर्व के पशु पक्षियों पर भी देखने को मिल रहा है। बाघ, हिरण आदि जीव जंगल से बाहर खेतों व सड़कों पर टहलते नजर आ रहे हैं। टाइगर रिजर्व प्रशासन ने वन्य जीवों की प्यास बुझाने हेतु सभी ताल पोखरों को नहर व नालों के जरिए भरवाने की व्यवस्था की है। प्रभागीय वन अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि जंगल के बीच कई तालाबों को सौर ऊर्जा चालित पंपों से भी भरा जा रहा है। पीलीभीत में एक जनपद एक नदी योजना के तहत गोमती व खन्नौर नदियों का पुनरोद्धार कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, विधायक बाबूराम पासवान व स्वामी प्रवक्तानंद, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर दलजीत कौर सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इसने कार्य में योगदान दे रहे हैं। बाघ और बांसुरी के साथ पीलीभीत की पहचान बासमती उत्पादन के लिए भी है। जिले के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के प्रयासों से अब बासमती की महक और बढ़ने जा रही है। जिले में बासमती बीज उत्पादन शोध व निर्यात केंद्र की स्थापना करोड़ों की लागत से कराई जा रही है। इस केंद्र को 7 एकड़ जमीन हस्तांतरित कराने के अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा,
4: ये जो बासमती जैविक प्रशिक्षण केंद्र और सह प्रदर्शन का फार्म जो बनेगा, ये इस क्षेत्र के लिए मेरे लिए कहने की मुझे गर्व महसूस होता है कि ये पीलीभीत जनपद बांसुरी के लिए जाना जाता है। ये पीलीभीत जनपद यहाँ के प्राकृतिक धरोहर जंगल है, यहाँ के शेर है, उसके लिए जाना जाता है। मगर आने वाले समय में ये बासमती चावल का जो कटोरा है उसके लिए जाना जाएगा।
2: पीलीभीत जिले में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को लेकर जिला पूर्ति अधिकारी विकास कुमार ने जिले की आपूर्ति व वितरण व्यवस्था को सामान्य व नियंत्रण में बताया है। उन्होंने लोगों से डीजल, पेट्रोल व कुकिंग गैस

0: की अनावश्यक खरीद व भंडारण से बचने को कहा है। पीलीभीत जिले में पुरुषोत्तम मास में कथा भागवत भजन कीर्तन यज्ञ व भंडारों जैसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तकिया दीनारपुर स्थित महाकाली मठ व पीताम्बरा पीठ पर महंत बाबा सूरजगिरी जी द्वारा सचंडी महायज्ञ कराया गया। ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल पर मंदिरों पर सुंदरकांड हनुमान चालीसा व भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं। पीलीभीत में इस समय साठा धान व गन्ने की फसल खेतों में हरियाली बिखेर रही है। गन्ने की उपज का सर्वे गन्ना विकास विभाग द्वारा शुरू करा दिया गया है। जिला गन्ना अधिकारी खुशी राम भार्गव ने बताया,
1: वर्तमान में गन्ना सर्वे का काम चल रहा है। पूरे जनपद में 144 टीमें बनी हुई हैं और ये 144 टीमें जनपद की चीनी मिलें और जो जनपद से बाहर की चीनी मिले हैं उनका गन्ना सर्वे कर रही हैं। गन्ना सर्वे का काम गन्ना पर्यवेक्षकों द्वारा किया जा रहा है और इसकी मॉनिटरिंग ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पूरनपुर, बीसलपुर, बरखेड़ा और मझोला के द्वारा की जा रही है। सभी जो किसानों का सर्वे होना है वो 30 जून तक सर्वे होना है। 1 मई से सर्वे की शुरुआत हुई थी और 30 जून तक गन्ना सर्वे का कार्य पूर्ण किया जाना है।
0: पीलीभीत जिले में जनगणना 2027 के तहत इस समय मकानों की गिनती का कार्य तेजी से चल रहा है। 7 से 21 मई के बीच ऑनलाइन माध्यम से सुगणना की गई और अब गणना कर्मी घर घर जाकर गणना कार्य कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने कई जगह इसका निरीक्षण भी किया है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर, ये आकाशवाणी प्रयागराज है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण होगा। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
1: तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे।

शकील ने लखनऊ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। आपको उर्दू, हिंदी और अरबी फारसी का अच्छा इल्म था। दिल्ली में शुरू में सरकारी नौकरी करने के बाद आप मुंबई चले गए, जहां आपकी मुलाकात मौसीकीकार नौशाद से हुई और यहीं से शकील का फिल्मी सफ़र शुरू हुआ। शकील ने दर्द, बैजू बावरा, मदर इंडिया, गंगा जमुना, मुगल आज़म और मेरे महबूब जैसी फिल्मों के लिए तराने लिखे। 20 अप्रैल 1980 को आप इस दुनिया फ़ानी से विदा हो गए।

शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास। दिल को कई कहानियां याद आकर रह गईं।

एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। ये अशार हैं उस फिराक गोरखपुरी के जिन्होंने अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी में तालीम हासिल की।

आप उर्दू में लिखते रहे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर भी रहे। सोचिए ऐसे शख्स की जहानत का आलम क्या होगा। आप आज़ादी की मुहिम से भी जुड़े रहे। फिराक गोरखपुरी की शायरी में गुले नगमा, मशाल, रूह कायनात, नगमाए साज, गजलिस्तान, शेरिस्तान, रूप, धरती की करवट, गुलबाग, रम्ज व कायनात, चिरागां, हजार दास्तान, जुगनू, आधी रात, परछाइयां और तराना इश्क जैसी खूबसूरत नज़में और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी रुबाइयों की तख्लीक फिराक साहब ने ही की है। उन्होंने कई कहानियां भी लिखी। 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में पैदा हुए रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी के नाम से मशहूर हुए। आपको ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला।

इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, इश्क पर जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब, कि लगाए न लगे और बुझाए न बुझे।

आपने अपनी अलग राह बनाई, अपने उर्दू अदब में फलसफे को जगा दी। बिलाशुबहा आपको गज़ल का शहंशाह तस्लीम किया जाता है। गालिब से पहले गज़ल जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी थी। गालिब ने गज़ल में फ़िक्र फ़लसफ़े की नई ज़िंदगी पैदा की। क़ैद हयात व बंद गम असल में दोनों एक हैं, मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। गालिब के ऊपर कितना कुछ लिखा गया, कितना कुछ लिखा जा रहा है और आगे भी रिसर्च होती रहेगी। न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता।

0: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से उर्दू प्रोग्राम नश्र किया जा रहा था।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति आनंद के गाए गीत और भजन। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति आनंद के स्वर में ये भजन।

कार्यक्रम की शुरुआत में थोड़े जो विघ्न आए हैं उसके लिए हमें खेद है। हम आपको सुनवा रहे हैं ज्योति आनंद के स्वर में मीराबाई की ये रचना।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे ज्योति आनंद के गाए गीत और भजन। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना

शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने वाले हैं, ठीक 10 बजे आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। यूसीसी से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की वृद्धि की गई। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। नवीनतम जानकारी के लिए विद्यार्थियों को एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से संपर्क रखने को कहा गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला लिया गया है। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली

0: कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 18 ओवर और 4 गेंद में 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामना की है कि प्रकृति की असीम कृपा, सूर्यदेव की ऊर्जा और वर्षा बूंदों के आशीर्वाद से हर एक का जीवन आनंद और सौभाग्य से भरपूर हो। संस्कृत की एक उक्ति साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि धरती सदा सर्वदा हरी भरी और समृद्ध बनी रहे। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में भी गर्मी और उमस रहेगी। वहीं मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। वहीं केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉयस ऑफ प्रयागराज। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जिम कल्चर बनाम पारंपरिक योग व्यायाम की। तो इस विषय को शुरू करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं म्यूजिकल वार्म अप या ये म्यूजिकल ब्रेक।

इस गाने को सुन के थोड़ी गर्मी तो ज़रूर आई होगी आपके शरीर में, हमें उम्मीद है आई होगी, क्योंकि किसी भी जिम में जाने से पहले, कोई भी व्यायाम करने से पहले या फिर योग करने से पहले हमें शरीर को थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है। और उम्मीद है ये गाना भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अब आते हैं विषय पर। तो श्रोताओं, आज के आधुनिक समय में अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखना सबसे बड़ी चुनौती है। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिम जाते हैं, योग व्यायाम करते हैं, लेकिन दोनों में हमारे लिए क्या अच्छा है और कितना अच्छा है ये जानते हैं। तो जिम जाने के लिए पहले तो ये समझना है कि क्या हमें अपने शरीर के वज़न को तेज़ी से घटाना है या बढ़ाना है, शरीर को सुडौल बनाना है या फिर पूर्ण स्वास्थ्य चाहिए। श्रोताओं, जिम में जाकर कृत्रिम तरीके से वज़न घटाकर, साइकिल चलाकर हम जल्दी परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जिम जाना सबके लिए संभव नहीं है। जिम में अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है, फिर घर से बाहर निकल कर जाना कुछ लोगों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। जिम में जाकर हमें हो सकता है परिणाम बहुत तेज़ी से मिलें, लेकिन स्थायी हों ये ज़रूरी नहीं।

श्रोताओं, हम जिम में जाते हैं ये सोचकर कि हम वहाँ जाएंगे और बहुत जल्दी ही हमारा शरीर जो है सुडौल हो जाएगा, और होता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी जो शारीरिक क्षमता होती है इस तरह की नहीं होती है कि हम बहुत तेज़ी से अपने शरीर की चर्बी को घटा दें या फिर उसे किसी तरह से शेप में ले आएँ, और कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ने पर हमारा शरीर गलत तरीके से व्यवहार करने लगता है या फिर उसमें कुछ और समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अगर हम अपनी क्षमता से ज़्यादा भारी वज़न उठाने का प्रयास करते हैं कि हमारे डंबल्स बन जाएं या हमारा शरीर बहुत अधिक सुडौल हो जाए, तो ऐसे में कई बार हमें चोट लगने की या अंदरूनी कोई समस्या पैदा हो सकती है। फ़ायदा ज़रूर है कि इसमें आपके शरीर से कैलोरी बहुत तेज़ी से बर्न होती है और शेप बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इसमें थोड़ा नुकसान ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम योग की बात करें तो घर में बैठे बैठे बिना किसी भारी भरकम फीस के, बिना किसी दिखावे के योग व्यायाम करके हम अपने को ऊर्जावान बना सकते हैं। योग केवल शारीरिक स्तर पर ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से हमें लाभ प्रदान करता है। ये हमारे तनाव को कम करता है, मन को शांत करता है, शरीर में लचीलापन ले आता है। योग व्यायाम हमारे शरीर पर धीरे धीरे लेकिन स्थायी प्रभाव देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिम में हमें बहुत तेज़ी से रिजल्ट मिलते हैं, और वहीं योग में ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, लेकिन जब हम उसे लगातार धैर्य के साथ करते हैं तो धीरे धीरे हमें अपने अंदर परिवर्तन दिखाई पड़ता है, और वो परिवर्तन अंदर और बाहर दोनों ओर से होता है और हमारे शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालता है। योग हमारे शरीर पर धीरे धीरे लेकिन स्थायी प्रभाव तो देता ही है, वो भी बिना किसी चोट चपेट के। आपको बता दें, योग हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों पर भी विशेष प्रभाव डालता है। यह हमारे तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी अंगों को स्वस्थ रखता है। योग केवल व्यायाम ना होकर जीवन शैली है। एक अध्ययन के अनुसार योग व्यायाम से हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तनाव, अवसाद कम होता है, शरीर लचीला होता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शरीर संतुलित होता है।

श्रोताओं, योग संक्रामक और गैर संक्रामक रोगों से लड़ने में भी सहायक है। यही नहीं, योग हमारे शरीर के साथ साथ मन और आत्मा पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। योग हमें दर्द और पीड़ा में आराम दिलाता है। योग हमारे हार्मोन्स को संतुलित करता है। जैसा कि हम आपको बता ही रहे थे कि हमारे अंदरूनी अंगों पर विशेष तौर पर ये प्रभाव डालता है, तो हम आपको बता दें कि अंदरूनी अंगों में ये इंस जो अंतःस्रावी अंग हैं उनसे जो उत्सर्जित होते हैं हमारे हार्मोन्स, जिनमें इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये सब अच्छी मात्रा में उत्पन्न होते हैं और शरीर को रोग मुक्त करते हैं। नियमित अभ्यास अगर हम करते हैं योग का, तो वो हमें तरोताजगी देता है। श्वास की जो तकनीक होती है प्राणायाम के द्वारा जो हम करते हैं, उसमें हमारा श्वसन तंत्र पूरी तरह से शुद्ध होता है और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे पाचन तंत्र को ठीक करता है। और पाचन तंत्र का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बीमारी की जड़ पेट ही होती है, पेट से ही शुरू होती है सारी समस्याएं, तो ये उस पर बहुत समुचित प्रभाव डालता है। संपूर्ण शरीर का कायाकल्प करता है योग। और सबसे बड़ी बात जो है कि योग सबके लिए है, सबके लिए सुलभ है। इसमें उम्र, इसमें लिंग, शारीरिक बनावट, वजन या हाइट वगैरह की कोई पाबंदी नहीं होती है। और सामाजिक रूप से भी देखा जाए तो ये कोई समस्या पैदा नहीं करता।

यानी इसे अमीर गरीब हर आदमी कहीं भी कैसे भी कर सकता है, किसी भी तरह से शुरू कर सकता है। योग जो है हमारे जीवन में एकाग्रता को बढ़ाता है। आजकल हम जो हमेशा तनाव में रहते हैं, बहुत अस्थिर दिमाग से हमारा वास्ता पड़ता है, अस्थिर लोगों से भी वास्ता पड़ता है और हम खुद तो होते ही हैं, तो ऐसी स्थिति में योग अगर हम अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो हमारे एकाग्रता को में ये सुधार लाता है, उसको बढ़ाता है। चोट लगने के खतरे तो इसमें कम होते ही हैं। तो अगर देखा जाए तो योग और जिम ये दोनों ही अपने आप में अच्छे हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। बस ये है कि हमें क्या चाहिए और हमें अपने लिए किसकी ज़्यादा ज़रूरत है, हमें उस पर ध्यान देना होगा। तो जिम और योग ये दोनों ही हमारे शरीर को फ़ायदे पहुंचा सकते हैं, बस हमें अपनी क्षमता के अनुसार इसे अपनाना है।

अगर हम आपसे कहें कि 25 मिनट सही तरीके से किया गया सूर्य नमस्कार जिम में ट्रेडमिल पर 30 मिनट दौड़ने के बराबर कैलोरी बर्न करता है तो आप मानेंगे? जी, ये बिल्कुल सही है। और एक बात, योग बच्चे बूढ़े युवा सभी आयु वर्गों के लिए फायदेमंद है। योग हमारी सांसों को साधता है जिससे हमारे अंदर एक असीम शांति का आभास होता है। कार्यक्रम के अंत में हम कह सकते हैं कि जिम अगर आपको केवल शरीर तक सीमित रहना है तो जा सकते हैं, और अगर आपको संपूर्ण लाभ चाहिए तो योग व्यायाम एक बेहतर विकल्प है। और हाँ, इन दोनों को भी हम चाहें तो साथ साथ अपना सकते हैं, जैसे कि अगर हम हफ्ते में कुछ दिन जिम चले जाएँ अगर हमारे लिए ये संभव है तो, और साथ में कुछ दिन हम योग भी कर लें। इन दोनों का मिश्रण हमारे शरीर को पूर्ण स्वास्थ्य लाभ देगा। लेकिन हाँ, बात फिर वहीं आ जाती है कि हमें अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखकर ही इन दोनों को अपनाना है।

आशा करते हैं कि हम अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे और अपने शरीर के लिए क्या अच्छा है उस पर ध्यान देंगे। आप सुन रहे थे कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी प्रयागराज है।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 7.3 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए NCERT की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शबदंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नज़रिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
3: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
3: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था,

0: अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
1: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
0: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
1: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
0: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।

0: अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
1: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
2: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
0: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: कालक्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको,
5: फेंको जनाब।
6: अरे अरे, ये क्या हुआ? अरे
5: बचो बचो बचो,
6: फट जाएगा,
5: सभी साथ पीछे हटो,
6: जमीन पर लेट जाओ, धुआं निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं निकल
2: रहा। साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
7: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
5: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
8: सही में
5: बहादुर सैनिक हो तुम।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।

0: May I come in, sir?
1: Yes, come in.
0: Sir.
1: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
0: सर।
1: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
0: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, कहो।
0: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
1: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
0: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
1: गो अहेड यंग मैन।
0: सर।
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
3: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
4: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
5: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
4: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
6: जी जनाब।
7: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
0: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
5: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
4: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
5: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
4: फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
4: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
4: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
5: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण

0: युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
1: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
0: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण

0: अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी। और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निगल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: एक ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। कार्यक्रम का आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं आपका रेडियो हम सफर प्रेमेंद्र। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की, एक ऐसे निर्माता की, एक ऐसे निर्देशक की जिन्होंने जिंदगी को जी भर के जिया। उन्होंने जिंदगी का फलसफा कुछ यूं रखा हम सबके सामने कि कोई भी मुसीबत को कैसे हंस के टाला जा सकता है, झेला जा सकता है और जिंदगी को खुशी खुशी जिया जा सकता है। बात है सन 1943 की। बरसात के दिन थे और मुंबई की बरसात तो फिर कहना ही क्या, जिधर देखिए उधर पानी ही पानी। इसी मौसम में प्रसिद्ध एडवोकेट का एक नौजवान ग्रेजुएट बेटा उतरता है मुंबई की धरती पर अपनी आंखों में सपनों की पूरी दुनिया बसाए। और मुंबई में कदम रखते ही उन्हें मुंबई यानी कि तब की बंबई से प्यार हो जाता है। कैसा प्यार, जिसे कहते हैं पहली नजर का प्यार। मुंबई ने इस युवा से अपने हिस्से का पूरा संघर्ष कराया, भूखे पेट सुलाया, गहरे पानी में सूरज को डूबते निकलते दिखाया, लोकल ट्रेनों में, बसों में अच्छा खासा सफर कराया, पैदल चलाया और फिर एक माँ की तरह अपना आंचल पसार कर ढेर सारा प्यार, दुलार, सम्मान और सफलता दिलाई। भारतीय सिनेमा के सबसे महान, करिश्माई और हर दिल अजीज निर्माता, निर्देशक और अभिनेताओं में से एक थे देव आनंद साहब। और उनका नाम लेते ही एक छवि आप सबकी आंखों में उतर आई होगी, वो हैट, वो हल्की सी हिलती हुई गर्दन, एक अनोखा अंदाज और भौहों पर हल्की सी चढ़न के साथ वो मनमोहक मुस्कान।

तड़पे तड़पे मेरी जवानी।

धुआं, अरे जल गया जल गया मेरे दिल का जहां, जाने फिर क्यों जाने फिर क्यों सताती है दुनिया मुझे प्यार।

ये गीत था फिल्म जिद्दी से। हालांकि ये गीत फिल्माया गया था महमूद साहब पर, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है जिस वजह से हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही ये गाना सुनाया। बॉम्बे टॉकीज की ये फिल्म थी और जैसा कि हमने आपको बताया है कि देवानंद साहब लोकल ट्रेन में सफ़र करते थे और उनको इसमें मज़ा भी आता था। मजबूरी थी कि मुंबई में सर्वाइव करना है, अभी आप स्थापित नहीं हैं, लेकिन वो जिंदगी को जीते थे, वो आम जीवन को जीते थे। और आज भी पूरी मायानगरी या दूसरे उनको मानने वाले लोग, वो एक अच्छे अभिनेता, निर्माता, निर्देशक थे, ये तो एक वजह हो ही गई। दूसरे वो इतने

इंसान थे कि उस इंसानियत की वजह से लोग उन्हें बहुत अच्छे मन से याद करते हैं। देवानंद साहब इस फिल्म में मुख्य भूमिका में थे और उनका शुरू से स्वभाव रहा है कि मेरा किरदार खूब अच्छे से निकल करके आए। कभी उन्होंने इस कोशिश में काम नहीं किया, वो दूसरे जो साथ के कलाकार होते थे उनको भी बराबर से मौका दिलाते थे, उनको भी फिल्म एक अच्छी तरीके से उनकी स्थापना हो इसलिए वो काम करते थे। हर्षद जयपुरी साहब से कहा गया कि कुछ एक ऐसा गीत लिखा जाए जिसमें बात तो दर्द की हो लेकिन होठों पे सुनकर मुस्कान आए, और इसी सोच की पैदाइश थी ये गाना जिसे एस डी बर्मन साहब ने कंपोज किया था और इसका सजेशन जो था वो देवानंद साहब का था। तो देवानंद साहब का इतना बड़ा दिल था कि वो अपने साथ के जो कलाकार थे उनको भी अच्छा खासा मौका दिलाने का प्रयास करते थे। और अगर इनकी शुरुआती जीवन की बात करें हम, तो देवानंद साहब का जो पूरा नाम था वो धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था और आपका जन्म 26 सितंबर 1923 को हुआ था, और ये वो दौर था जब हमारा पूरा देश एक था, मतलब भारत और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान पूरा एक ही देश था। और उस समय ये जो जगह थी वो शंकरगढ़ गुरदासपुर पंजाब भारत में थी, और वर्तमान का ये जो पंजाब का हिस्सा है ये पाकिस्तान में है। और जैसे कि हमने आपको बताया कि इन्होंने मुंबई की जो छलांग मारी थी वो लाहौर से की थी, क्योंकि आपके पिताजी उस समय लाहौर में रहते थे। देवानंद साहब ने अपने पूरे फिल्मी करियर में लगभग 100 से अधिक फिल्मों में काम किया, और उनका एक ख़ास स्वभाव यह था कि एक फिल्म बनने में भले 5 साल लग जाएँ, 4 साल लग जाएँ, जितना भी वक्त लग जाए, लेकिन जब तक उन्हें संतुष्टि नहीं होती थी उस फिल्म को पर्दे पर जाने नहीं देते थे। बहुत शुरुआत में ही आपने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू कर दिया था, और आपके जो मित्र थे गुरुदत्त साहब उनको आपने निर्देशन के लिए अपने साथ अपने बैनर के लिए चुना हुआ था। जो हमने अभी बात की बॉम्बे टाकीज की, उसके पीछे भी एक घटना है। देवानंद साहब लोकल ट्रेन में सफ़र के लिए थे, बस ट्रेन में चढ़ने वाले थे, तभी पीछे से एक आवाज़ आई, हमारे बैनर में काम करोगे? पलट के देखा तो उस फिल्म के जो उस बैनर के एक बड़े कार्यकर्ता उस

लीजिए सुनिए मदन पाल के बोल नदीम श्रवण के निर्देशन में, आवाज़ कुमार सानू की है और फिल्म का नाम आशिकी।

और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गाना जिसे हमने लिया है फिल्म मासूम से। आवाजें हैं भूपिंदर और सुरेश वाडकर की, गीत गुलजार का है, संगीत आरडी बर्मन साहब का।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में इब्राहिम अश्क के बोल। आवाज़ें हैं पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल की। फिल्म का नाम बहार आने तक।

0: थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे, क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका हर तरह के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की दृढ़ नीति पर कायम रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से फोन पर बातचीत की। श्री ट्रंप ने स्वयं को प्रधानमंत्री मोदी का प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा के स्कैन पुस्तकों को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से पराजित किया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: Pradesh, Jharkhand, Odisha and Telangana are also likely to witness severe heatwave conditions during the day. And with that, we end this news bulletin.
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:10:22 हो रहे हैं। अब सुनिए हमारे चैनल पर आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रीमती कमला बोस का ख्याल गायन सुनिएगा दिन में 12:15 और रात 10:30। अपनी फरमाइशों पर आधारित फिल्मी गानों का लुत्फ उठाइएगा दिन में 12:30। कार्यक्रम होगा आपकी पसंद। महिलाएं अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी सुनेंगी दिन में 1:15 पर। इसके अंतर्गत डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव से बातचीत सुनवाई जाएगी। विषय होगा नवजात शिशुओं की देखभाल।

लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। दिन में 2:30 बजे स्वर होंगे रामकृपाल यादव, प्रीति मिश्रा, धीरज कुमार और साथियों के। नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम नन्ही दुनिया सुनेंगे 5:00 बजे। युवा साथियों का कार्यक्रम युवा वाणी लेकर के आएंगे 5:15 बजे।

ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम पंचायत घर लेकर के आएंगे शाम 6:30 बजे। इसके अंतर्गत लोक भाषा कविता पाठ होगा, साथ ही धीरज कुमार और साथियों के स्वर में लोकगीत सुनवाए जाएंगे। हिंदी सिनेमा में स्त्री विमर्श का स्वरूप, डॉक्टर सुप्रिया पाठक की वार्ता सुनवाएंगे आज के हिंदी कार्यक्रम में शाम 7:31 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा शाम 7:45 पर। इसके अंतर्गत सुजाता सिंह के स्वर में गीत और भजन सुनवाए जाएंगे। कानून और हम, ये कार्यक्रम होगा रात 8:30। इसके अंतर्गत सुनिएगा पंकज कुमार मिश्र से नेहा गुप्ता की बातचीत। विषय होगा वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना। और कहकशां की महफिल सजेगी रात 9:30। ये थी रूपरेखा हमारे चैनल पर प्रसारित होने वाले आज के शेष प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना सुनिए। अमर सिंह पुत्र श्यामलाल कोरी निवासी गढ़ी बाजार थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी से सूचित करते हैं कि इनकी पत्नी विगत 4 अप्रैल सन 2026 दिन 12 बजे से लापता हैं। लापता का नाम गायत्री देवी है, आयु 33 वर्ष है, दोहरा बदन है, चेहरा गोल है, ऊंचाई 5 फीट 3 इंच है, रंग सांवला है, काली गोल आंखें हैं। लापता होने के समय इन्होंने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होने पर कृपया इस पते पर सूचित करें। अमर सिंह पुत्र श्यामलाल कोरी निवासी गढ़ी बाजार थाना पश्चिम सरीरा जनपद कौशाम्बी। अब खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्रीमती कमला बोस का राग भीमपलासी में ख्याल गायन। विलंबित रचना रूपक ताल में निबद्ध है। बोल हैं अरज मानिए मुरीसाई तुम्हरो नाम गरीब नवाज। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री अनूप कुमार बैनर्जी। हारमोनियम पर हैं श्री शमशाद अहमद खान।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीमती कमला बोस का राग भीमपलासी में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री अनूप कुमार बनर्जी और हारमोनियम पर थे श्री शमशाद अहमद खान। अब शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

0: AIR at 90.
1: लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम आपकी पसंद, प्रस्तुत कर रही हैं मधु कुमार।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, अब हम आपके साथ हैं अगले 30 मिनट तक कुछ अच्छी बातों के साथ और कुछ अच्छे गीतों के साथ। तो श्रोताओं, एक बात याद रखिएगा कि हर शख्स की बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। कि किसी ने कुछ भी कहा और आप रूठ गए, आपको दुख हो गया, उस गम में डूब गए, ऐसे क्यों कह दिया इन्होंने? क्योंकि कुछ लोगों के पास ब्लड ग्रुप के अलावा कुछ भी पॉजिटिव नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये जान लीजिए कि मौन रहना अक्सर इस बात का संकेत होता है कि आपके पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन आप जानते हैं कि सामने वाला समझेगा ही नहीं। तो हम समझ रहे हैं कि आपको इंतजार है अपने फरमाइशी गीतों का। तो शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम का पहला गीत। और पहला गीत आ रहा है फिर तेरी कहानी याद आई, इस फिल्म के गीत से। और इसकी फरमाइश हमें आई है मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और इनके परिवार के अन्य सदस्य, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना चांदनी, गणेशपुर से हिना कौसर, वकील राही, फिरोज आलम और नास परवीन, कडिया से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी और सुनीता कुमारी,

दोस्तों, इस दिखावटी दुनिया में हम लोग भी ये दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, पर सच ये होता है कि केवल हम अपने को व्यस्त रखे होते हैं। फिर एक दिन कोई ऐसा गीत, कोई ऐसी याद या कोई ऐसी तारीख आती है जो उस दर्द को फिर से जगा देती है, और जिन जज्बातों को आपने छुपा के रखा होता है और वो फिर आंसुओं का रूप लेकर आँखों से बह निकलते हैं। कुछ भाव भरते नहीं, बस जीना सिखा देते हैं, और कुछ पीड़ाएं भुलाई नहीं जाती, उन्हें अपने अस्तित्व का एक हिस्सा मान लेना पड़ता है। कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं, और ऐसा ही एक खूबसूरत सा गीत आ गया है हमारे इस कार्यक्रम में, और इस गीत की फरमाइश आई है डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय, छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन, टीकमगढ़ से ब्रिजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, बरकाकाना से अफजल, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम और इनके परिवार के अन्य सदस्य, पुलिस लाइन से मधु कनौजिया, गोविंद कनौजिया, गौरी कनौजिया, हनी कनौजिया और बाला कनौजिया, छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा, अंजनी, रेखा, पार्थ, उमेश और प्रमिला वर्मा। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का आखिर क्यों फिल्म का ये गीत।

अर्ज किया है, बदल दिया हमने नाराज होने का तरीका गालिब, बदल दिया हमने नाराज होने का तरीका गालिब, रूठने की बजाय अब हम जरा सा मुस्कुरा देते हैं। भाई क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा ये शेर है और ऐसा ही खूबसूरत गाना जिसकी फरमाइश की है हमारे इन श्रोताओं ने। नरसिंहगढ़ से गोविंद वैष्णव।

दिव्या, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी नेपानगर से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि और मंगला बेन शाह, जोधपुर से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत, मेरठ से दिग्दर्शन कविता कर्ण, शक्ति रिया, जया और दर्शन भाई। आपने जिस गीत की फरमाइश की है उस फिल्म का नाम है अखियों के झरोके से। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

0: अभी आप सुन रहे थे अपने फरमाइशी गानों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी मधु कुमार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। 1 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।

0: इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए रियासत के अमनो अमान और इंतज़ामी कामों का जायज़ा लिया। इस दौरान उन्होंने हर तरक्याती ब्लॉक की सतह पर हफ्ता वाराना चौपाल मनक़द करने की हिदायत दी। वज़ीर-आला ने कहा कि इन चौपालों में रेवेन्यू के तनाज़ात, घरेलू तशद्दुद, गैर कानूनी वसूली और मकामी सतह की शिकायात का मौके पर ही हल यकीनी बनाया जाए। IGRS और CM हेल्पलाइन के ज़रिए मौसूल होने वाली शिकायात के मेयारी और तसल्ली बख्श निपटाने पर ज़ोर देते हुए जनाब योगी ने कहा कि शिकायात में किसी भी सतह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-आला ने अफसरान को हिदायत दी कि गंगा दशहरा और बकरीद के सिलसिले में मज़ीद चौकस रहें। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने कल एक आला सतही जायज़ा मीटिंग में रियासत के पुलिस निज़ाम को मज़ीद महफूज, जदीद और तकनीकी बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को मजबूत करने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस के मकाम नकलो हरकत और मवासलाती सरगर्मियों की राजदारी अव्वलीन तरजीह है। इसके अलावा कल शाम महकमा आयुष की एक जायज़ा मीटिंग में वज़ीर-आला ने आयुष, सेहत और फलाह बहबूद की पॉलिसी 2026 को मुअस्सर तरीके से नाफिज करने की हिदायत दी। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने कल लखनऊ में वाक़ पार्टी सदर दफ्तर पर सभी सीनियर अहदेदारों, कोऑर्डिनेटर्स और ज़िला सदूर के साथ 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को लेकर मीटिंग की। इस दौरान BSP सरबराह ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि रियासत में एक बार फिर BSP की हुकूमत बनाने के लिए कारकुन अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क में नए नए चैलेंजेस के दरमियान जिस तरह इंतखाबात हो रहे हैं, उसको देखते हुए पार्टी को तैयारियों की हर सतह पर और भी चुस्त, दुरुस्त और मुस्तैद बनाने की ज़रूरत है। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में आज से गंगा दशहरा त्यौहार का इनेकाद हो रहा है। इसे देखते हुए पुलिस इंतजामिया ने कल डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला इलाके में सख्त चेकिंग की। वहीं अमरोहा में भी कौमी शाहराह पर कल से ही रूट डायवर्जन नाफिज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर PSC, फ्लड PSC, फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेडिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की CCTV कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
0: पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए का इजाफा किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में यह गुज़िश्ता 2 हफ्ते में चौथा इजाफा है। अब लखनऊ में पेट्रोल 101.89 रुपए और डीजल 95.36 रुपए फी लीटर मिलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 28 मई को मुजव्वज़ा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2026 मुलतवी कर दिया है। NTA के मुताबिक बकरीद की छुट्टी की तारीख में तब्दीली को देखते हुए यह फैसला किया गया है। 5 रोज़ा सालाना हज मगरबी एशिया में तनाव के दरमियान आज से शुरू हो रहा है। भारत समेत पूरी दुनिया से 10,60,000 से ज़्यादा आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा से हज का सफ़र शुरू करेंगे और मिना में क़याम करेंगे। मिना में रात गुजारने के बाद आज़मीन हज कल अलसुबह अराफात के लिए रवाना हो जाएंगे। इस साल हज में भारत से तकरीबन 1,75,000 हाजी शिरकत कर रहे हैं। महकमे मौसमियात ने रियासत में शदीद गर्मी और लू का असर जारी रहने का इंतबाह जारी किया है। लखनऊ के मौसम साइंस मरकज़ के सीनियर साइंसदान मोहम्मद दानिश ने बताया कि रियासत में गर्मी का कहर बढ़ने का इम्कान है।
2: जैसा कि पिछले दिन

0: अगले 4-5 दिनों के बाद तापमान में धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना है।
1: महकमा मौसमियात ने मशरकी उत्तर प्रदेश में दिन के वक्त कुछ मकामात पर कल तक के लिए ज़बरदस्त लू का रेड अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 MHz पर। थोड़ी ही देर में महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
1: पुलिस
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों, लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम गृहलक्ष्मी सखियों, मैं हूं आपकी सखी हेम श्रीवास्तव
1: और मैं मंदाकिनी। श्रोताओं, आज है 25 मई और आज का ये विशेष कार्यक्रम समर्पित है भारतीय संस्कृति, आस्था और पवित्रता के महान पर्व गंगा दशहरा को।
0: तो भाई, गंगा दशहरा पर कुछ धूमधाम हो जाना चाहिए।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को हार्दिक शुभकामनाएं आज के दिन की। और चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

0: गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए।
1: क्या बात है श्रोताओं, भारत की संस्कृति में नदियों को केवल जलधारा नहीं
0: बिल्कुल।
1: बल्कि जीवनदानी माँ का स्वरूप माना गया है। और जब बात माँ गंगा की हो तो श्रद्धा अपने मन में अपने आप उमड़ आती है।
0: बिल्कुल।
1: गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी ताकि मानव जीवन का कल्याण हो सके। गंगा केवल एक नदी नहीं
0: बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। माँ गंगा का जल पवित्रता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सखियों, लोग इस दिन गंगा स्नान, पूजा अर्चना और दान पुण्य करके अपने जीवन में सुख और शांति की कामना करते हैं।
1: बिल्कुल, लेकिन गंगा दशहरा केवल धार्मिक आस्था का पर्व नहीं, ये हमें अपने विचारों और जीवन को भी निर्मल बनाने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल मंदाकिनी, जैसे जिस प्रकार गंगा निरंतर बहती रहती है, वैसे ही हमें भी जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, प्रेम, सेवा और सद्भावना के साथ।
1: बिल्कुल, आज आवश्यकता इस बात की भी है कि हम केवल गंगा की पूजा ही ना करें बल्कि उनकी स्वच्छता और संरक्षण का भी संकल्प लें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: यदि हम अपनी नदियों को स्वच्छ रखें तभी आने वाली पीढ़ियां इस अमूल धरोहर का महत्व समझ पाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: और तो आइए इस पावन अवसर पर हम अपने मन से नकारात्मकता को दूर करें।
0: बिल्कुल।
1: और जीवन में पवित्रता, विनम्रता और सकारात्मक सोच को
0: अपनाएं। बिल्कुल, ये अपनाना बहुत जरूरी है, तभी हम अपने विचारों को साझा कर पाएंगे और हमें जो कठिनाइयां आती हैं जीवन में, क्योंकि जब जीवन मिला है तो इसमें सुख दुख दोनों हैं, और हम उसका आकलन अच्छी तरीके से करके, जैसे माँ गंगा निरंतर बहती रहती है, वैसे भी अपने मन के विचारों को हम सकारात्मकता की तरफ बहने दें, तो हमारा कार्य जो सफल होता है, हम उस कठिनाई से पार पा जाते हैं और जो हमारी समस्या होती है उससे उसका हमें जो है सोल्यूशन मिल जाता है।
1: बिल्कुल। और हीम जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण एक ऐसा मुद्दा बन चुका है आज के सामाजिक परिवेश में कि हम सब इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, तो अपनी नदियों को और अपनी पूरी प्रकृति को संरक्षण देना, उनको स्वच्छ रखना, ये हमारा कर्तव्य बनता है।
0: बिल्कुल। तो भाई देखो, मैं तो सोच रही हूँ कि जब प्रोग्राम इतना गंगा माँ पे हो रहा है और सारी चीजें हम इतनी जानकारियां दे रहे हैं, तो जो हमारी सखियां होती हैं मनोरंजन का भी ध्यान रखती हैं कि भाई समय समय पर हम उन्हें जो है मनोरंजन के लिए गीत भी सुनवाते रहे, तो एक प्यारा सा गीत और भी हो जाना चाहिए।
1: जरूर।
0: तो चलो सुनते हैं।

0: तो देखा भाई कि बहन जो सखियों को भी हम लोगों का प्यार
1: बिल्कुल
0: है ना, हम जो हम लोग उनसे प्यार दर्शाते हैं और यहाँ से बैठ के बहुत सारी बातें उनसे करते हैं, तो उन्हें महसूस होता होगा कि हम लोग कितना उनको प्रेम करते हैं, कितना प्यार करते हैं।
1: बिल्कुल
0: हाँ, और देखो प्रेम के पीछे बहुत सारी बातें भी छिपी होती हैं, जैसे धैर्य है, धैर्य भी ज़रूरी है। हर काम के लिए धैर्य का होना बहुत, पेशेंस अगर नहीं है तो आपका काम बिगड़ जाएगा,
1: बिल्कुल।
0: है
1: और
0: ना।
1: हेम जी, सबसे ज़रूरी
0: हाँ
1: बात होती है कि निस्वार्थ प्रेम।
0: बिल्कुल।
1: जो भी प्रेम करे, अगर हमारी अपेक्षाएं उससे जुड़ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्रेम मिलावटी हो जाता है।
0: बिल्कुल भाई, देखो जीवन में प्रेम, धैर्य और अच्छाई का प्रवाह बना रहना चाहिए, है ना। लेकिन जानते हो मंदाकिनी, आज के समय में एक और प्रवाह बहुत तेजी से बढ़ रहा है,
1: वो क्या?
0: वो है दूसरों से स्वीकृति पाने की चाह,
1: ये
0: है ना।
1: बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है।
0: तो भाई क्या हम पहने, क्या बोलें, कैसे दिखें, क्या निर्णय लें, इन सब बातों में कहीं ना कहीं हम ये सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये वाली जो बात दिमाग में आ जाती है
1: कि
0: कि
1: लोग
0: लोग
1: क्या
0: क्या
1: कहेंगे?
0: कहेंगे, तो भाई अब ये बात है कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, समाज में भाई क्या हमारा नाम रह जाएगा, ऐसी सोच सोच के अंदर जो कुंठाएं हम लोगों, कुंठा भर जाती है हम लोगों के दिमाग में, वो बहुत जब घर कर जाती है तो वो डिप्रेशन का कारण बन जाती
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: जरूर।
0: और बहुत सारी फिर बीमारियां होने लगती हैं। तो भाई ये चीज अपने दिमाग से निकालिए कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा काम ही ना करें कि आपके मन में ये बात आए।
1: बिल्कुल
0: सबसे बड़ी बात तो आपके मन में है ना, और लोग आपको रोटी नहीं देंगे, लोग आपके घर का खर्च नहीं चलाएंगे, है ना।
1: बिल्कुल
0: आप जब जैसे देखिए, इससे हम लोग बिल्कुल नहीं अछूते हैं कि हम लोग परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो जो परिवार हमारा है वैसे हमारे संस्कार हैं, संस्कार से ही जो हम लोग बनते हैं, और फिर जो हम ही लोगों से समाज बनता है,
1: बिल्कुल
0: तो हमारा जो कार्य है उसमें हम लोग अगर अच्छा कार्य कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, और आज तो देखिए कि आज तो कोई किसी को कहने वाला ही नहीं है कि ये काम नहीं करना है, ये काम करना है, क्योंकि जो पुरुष और महिला दोनों बराबर हैं।
1: बिल्कुल
0: जो काम पहले महिलाओं का बटा होता था, पुरुषों का बटा होता था, वो काम अब किसी का नहीं बटा है,
1: और हेम
0: सब
1: जी,
0: काम बराबर है।
1: देखिए तो कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर आज
0: हाँ
1: के दौर में जो जिम्मेदारी है वो दोहरी होती जा
0: दोहरी
1: रही है।
0: होती जा रही
1: और
0: है।
1: ये कुछ महिलाएं समझती हैं बहुत अच्छे से, कुछ महिलाएं
0: हाँ
1: अभी भी जो है इससे अनजान है। जो एक कार्य का विभाग हमारे स्त्री और पुरुष के बीच में बांटा गया था, उसकी कुछ मर्यादाएं जो निर्धारित की गई थी, वो
0: हाँ
1: इसीलिए थी
0: इसीलिए
1: कि
0: थी।
1: किसी एक वर्ग पे सारी जिम्मेदारियां ना आ जाएं। अब महिलाएं हैं वो तो घर गृहस्थी का काम भाई महिलाएं अच्छी बखूबी से
0: बिल्कुल करेंगी।
1: निभाती हैं,
0: हाँ
1: वो करती हैं, सदियों से करती आ रही हैं और आज भी कर रही
0: कर
1: हैं।
0: रही हैं।
1: लेकिन जब बाहर जाके जो कामकाजी महिलाएं हैं अपना काम करती हैं और फिर घर पे आके वही पूरा काम करना, तो कहीं ना कहीं एक जो है थकान और जिसे स्ट्रेस कहते
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: हाँ
1: वर्कलोड बढ़ जाने से कहीं ना कहीं आप देखिए मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां इतनी ज़्यादा होती जा रही हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: कि एक दौर जो महिलाओं का अब जो गुजर रहा है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में ज़्यादा जा रहा
0: बिल्कुल।
1: है।
0: ये अब ऐसा है मंदाकिनी, हम बहुत से देखो आसपास हम लोग देखते हैं, अपने घर में भी देखते हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, लेकिन हम लोग का काम जो है जब हम दोनों आते हैं, भाई अगर मैं बाहर हूँ है ना, मान
1: बिल्कुल
0: लीजिए कि हस्बैंड बाहर है, उनका ट्रांसफर बाहर हो गया, तो वो उस समय तो नहीं कोई काम करना हमें ही है, क्योंकि हमें घर बाहर दोनों को संभालना है। लेकिन अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ घर यहीं पर है, एक ही प्लेस पर जॉब कर रहे हैं, यहीं पर हैं, तो दोनों अगर आते हैं तो काम जो है विभाजित कर
1: ये
0: लीजिए, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: अपनी ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की
0: बिल्कुल
1: बात हो
0: होना और
1: जाती है।
0: होती भी
1: हाँ कि
0: है।
1: एक अगर घर
0: हाँ
1: पे है, दूसरा आ रहा है, वो कोई भी हो, स्त्री पुरुष कोई भी हो, अगर वो बाहर से आ रहा है तो अगर हमने एक गिलास पानी दे दिया, एक
0: बिल्कुल
1: कप चाय दे दी,
0: हाँ।
1: देखिए कितना अच्छा
0: तो
1: लगता है,
0: इसमें
1: अपनापन
0: जो
1: लगता
0: फिर
1: है।
0: इसमें ये होगा ही नहीं कि हम अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों की बातों पे ध्यान देने लगेंगे, दूसरी की बातों पे, दूसरों की राय पे हम डिपेंड हो जाएंगे, है ना।
1: बिल्कुल
0: ये भावना हर व्यक्ति में जो है मेरे ख्याल से ये आ जाती है कहीं ना कहीं, ये होता है दिमाग में, जब हमें कुछ कम मिलता है ना, हमारे मन का नहीं होता है, तब हमारे दिमाग में ये बात आती है, क्योंकि
1: और
0: मनुष्य का स्वभाव ही है ना,
1: बिल्कुल।
0: स्वाभाविक रूप
1: और
0: से होती
1: हेम
0: है।
1: जी, ये भी मैंने देखा है कि देखिए हम सब जानते हैं कि जो स्त्री तत्व है उसको प्रकृति ने ऐसा बनाया ही है कि कुछ चीज़ें वो स्त्री ही कर सकती है। जैसे
0: बिल्कुल
1: हमें संतान के लिए जो
0: हाँ
1: भी प्रयास करना है हमें करना
0: हमें
1: है
0: कर
1: और
0: जी
1: उसका पालन पोषण प्रकृति ने हमें ही ऐसा बनाया
0: हाँ
1: है कि
0: बिल्कुल
1: उसके प्रति जिम्मेदारी हमारी थोड़ी
0: हमारी
1: ज़्यादा हो
0: बिल्कुल भी
1: जाती है।
0: ज्यादा हो जाती
1: ठीक
0: है।
1: है, तो उस वक्त पे अगर हम जो है परिवार का पूरा सपोर्ट पा जाते हैं, हाँ मानसिक तौर से, खास
0: हाँ
1: तौर पे,
0: खास तौर से
1: हाँ, तो वो दौर बहुत ही अच्छा और खुशनुमा बीतता है।

0: ना आज जो मैं देख रही हूँ महिलाओं के प्रति, जो नई पीढ़ी है उनमें एक ऐसी सोच आ चुकी है कि भाई हमें शादी नहीं
1: नहीं
0: करनी
1: करना,
0: है।
1: डर
0: हाँ
1: अंदर से डर है
0: कि
1: कि नहीं
0: हमें
1: हमें
0: बच्चे
1: नहीं
0: नहीं
1: करना।
0: करना है,
1: हाँ
0: अरे भाई
1: हमेशा,
0: बच्चे होने पे तो मेरा पूरा लाइफ खराब होना
1: हाँ
0: है, हम
1: हाँ
0: तो जो है अपनी लाइफ जी ही नहीं सकते। और तमाम ऐसी उनके अंदर नकारात्मक सोच ने जन्म ले लिया है कि हमारा फिगर खराब हो
1: हाँ
0: जाएगा और अकेले मैं पालूंगी कैसे बच्चों को, तमाम चीजें
1: मैं
0: हैं।
1: कैसी दिखूंगी,
0: कैसे
1: लोग
0: दिखूंगी,
1: हमें हमें क्या कहेंगे,
0: क्या
1: कैसे
0: कहेंगे,
1: कहेंगे,
0: बिल्कुल।
1: ये वाली बात जब दिमाग में आ गई ना, तो फिर आप सोच लो कि आपकी जो प्रोग्रेस वहीं पर रुक गई।
0: और हिम जी, प्रकृति ने जो ये माँ शब्द दिया है और
1: हाँ
0: मातृत्व जो सुख दिया है, वो जब आप माँ बनती हैं और उस सुख को अनुभूति उसकी करती हैं, तब पता चलता है कि हमने क्या पाया है और
1: और
0: हम क्या
1: क्या
0: मिस
1: कोई,
0: करने वाले
1: बिल्कुल
0: थे।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मंदाकिनी। भाई देखो देखो, इससे जब हम ये आकलन कर लेंगे इस चीज का, तो फिर हमें ये लगे क्या हम खुश हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कि हम केवल दूसरे के निर्णय पे ही जी रहे हैं, दूसरों की राय पर ही हम जी रहे हैं। अगर आप ऐसी सोच और अब ऐसा मंथन करेंगे, है ना, तो आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, मानते हैं सब कुछ है, लेकिन अपने अपनी राय, अपनी जो बातें हैं, उसे खुद आपको, स्वयं
0: आपको
1: आपको
0: स्वयं
1: करनी
0: रखनी
1: पड़ेगी।
0: पड़ेंगी
1: हाँ
0: जो है, जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो भी आपकी सोच है, जिस तरह से आप सोचती हैं चीज़ों को करना, तो उसको जब तक आप किसी के समक्ष रखेंगी नहीं, तो या पहले आप जज कर लेती हैं, अरे वो मुझे क्या कहेगा,
1: हाँ
0: क्या इसका मतलब होगा, कहीं कोई गलत ना समझ ले,
1: बिल्कुल,
0: ये सारी नकारात्मकता से अपने आप को दूर रख के अपने अपने अपने पक्ष को निडर
1: रखिए,
0: होके
1: हाँ
0: रखिए।
1: रखिए। और ये मत सोचिए कि जो है, हम देखिए बहुत सारी बातें हैं, सबकी अपेक्षाओं पे आप खरे नहीं उतर सकते
0: ये
1: हैं,
0: तो है कि सबको खुश रखा जाए ऐसा
1: ऐसा हो ही
0: हो ही
1: नहीं
0: नहीं
1: सकता, है
0: सकता
1: ना।
0: है।
1: भाई देखिए, एक तन से 4 बच्चे 5 बच्चे होते हैं, ठीक है ना, हर बच्चे का जैसे स्वभाव अलग होता है, और हम उससे बहुत आशाएं लगा के रखते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हम परेशान होते हैं ना।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे ही फैमिली में बहुत सारे बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े, सब पूरी फैमिली है। बस फैमिली का आनंद लीजिए,
0: बिल्कुल।
1: परिवार का जो है सुख लीजिए, क्योंकि बहुत ही, अब तो आजकल देखिए एकल फैमिली
0: हाँ
1: परिवार हो गया है, अब तो संयुक्त परिवार रह ही नहीं गया
0: और हिम जी,
1: है
0: रिश्ते
1: ना,
0: भी खत्म होते
1: खत्म
0: जा रहे
1: होते
0: हैं,
1: जा रहे
0: अभी तक
1: हैं।
0: तो 2 तक सीमित थे, अब एक संतान की
1: हाँ बिल्कुल,
0: नीति आ रही है लोगों के मध्य की, तो अब इससे तो पूरे रिश्ते ही खत्म हो जा रहे हैं।
1: हाँ
0: तो वो
1: बिल्कुल,
0: जो एक संयुक्त परिवार का माहौल था और उनके बीच जो बच्चों की परवरिश होती थी, कहीं ना कहीं आज वो सब चीज़ें बिल्कुल अलग हो चुकी हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इस तरीके से महिलाओं से और हमारे श्रोताओं से यही हम अपनी चर्चा के जरिए कहना चाहेंगे कि अपने विचार, अपने जो है नज़रिए को किसी के समक्ष रखना बुराई नहीं है।
1: हाँ
0: वो आपसे चाहे बुजुर्ग हो, वो चाहे आपसे आपके छोटे ही क्यों ना
1: हाँ
0: हो,
1: हाँ
0: निडर होके कहिए, अपना पक्ष जरूर
1: हाँ
0: रखिए
1: ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है मंदाकिनी
0: कि
1: का कि
0: चार
1: किसी किसी की
0: लोग
1: परवाह ना कीजिए, है ना, परवाह कीजिए,
0: परवाह
1: लेकिन अपनी
0: कीजिए।
1: बातों को इतनी अच्छे तरीके से प्रस्तुत कीजिए। जैसे जब आप खाना बनाते हैं ना, तो उसमें जब लोग आकर्षित हो खाने के, भाई भूख बढ़ जाए, है ना, तो आप अच्छी तरीके से थाली को खूब अच्छी तरीके से सजाते हैं और अच्छी तरीके से परोसते हैं, तो वैसे ही अपनी बातों के जो, अपनी अपने जो
0: अपने
1: शब्द हैं,
0: शब्दों में सजावट
1: हाँ
0: रख के
1: सजावट रख
0: ऐसा
1: के, और
0: रखिए।
1: ऐसा जो प्रस्तुत कीजिए कि लोग आपकी बातों को समझें और उसको करने के लिए तैयार
0: तैयार
1: हो
0: भी हो
1: जाए,
0: जाए,
1: और वो चाबी आपके हाथ में
0: हाथ
1: थमा
0: में आ
1: दे
0: जाए।
1: है ना। तो ऐसा ही होने, लोग कहते हैं ना कि भाई अगर आपके शब्द अच्छे हैं, आपका कहने का लहजा अच्छा है, तो आप फिर जीत लेंगे जंग, है
0: बिल्कुल
1: ना। तो भाई
0: बिल्कुल।
1: अंत में तो यही कहा जा सकता है कि यदि हम अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में दे देंगे, तो जीवन भर स्वीकृति की तलाश में भटकते रहेंगे। इसीलिए जीवन ऐसा जिए जहां मन की शांति महत्वपूर्ण लगे, ठीक है ना।
0: बिल्कुल।
1: तो भाई मन की शांति होनी चाहिए, मनोरंजन भी होना चाहिए, लाइफ में खूब इंजॉय होना चाहिए। तो इंजॉय करने के लिए एक प्यारा सा गीत फिर सुन लेते हैं,
0: बिल्कुल।
1: तो चलो सुनते हैं।

0: तो भाई अभी हम लोगों ने गीत भी सुन लिया,
1: बिल्कुल।
0: और अब बच्चों की बात ना हो तो ऐसा होगा ही
1: फिर
0: नहीं।
1: हमारे महिलाओं के
0: हाँ
1: कार्यक्रम का क्या ही फायदा।
0: बिल्कुल। हाँ तो भाई चलो सुनते हैं वार्ता की, बच्चों के लिए आहार, है ना। और ये वार्ताकार हैं विमला मिश्रा जी, इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग ने कल रखी थी, आपके विशेष अनुरोध पर हम लोग सुनवा रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: आज की मेरी खास रेसिपी आपके नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए है, जो कि बहुत ही हेल्दी है। घर में बनी हुई रेसिपी बाहर के प्रोडक्ट से बहुत ही अच्छी होती है। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि हम बाहर से प्रोडक्ट लाते हैं और बच्चों को खिला देते हैं, जो कि उनके सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वैसे तो 6 महीने तक हम बच्चों को बाहर का कुछ भी नहीं देते हैं, उसके बाद दाल के पानी से उसकी शुरुआत करते हैं और मूंग के दाल का ही पानी देंगे और नमक बिल्कुल ना ही डाले तो अच्छा है और छौंका भी ना लगे। उसके बाद हम चावल का माड़ दे सकते हैं, ठोस आहार देना भी जरूरी होता है। वैसे तो जब हम शुरुआत करते हैं तो सिर्फ हम एक ही चीज़ देंगे उस समय, क्योंकि बच्चे का पेट उतना मजबूत नहीं होता है और वह उसको अच्छे तरीके से पचा नहीं पाते हैं। फिर धीरे धीरे जब देखते हैं कि बच्चा अच्छे तरीके से उसको पचा लेता है तो फिर उसको हम धीरे धीरे ठोस आहार देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लिक्विड में उतनी पोषण बच्चे को नहीं मिल पाती है कि जितनी उनको ज़रूरत है। तो उसके बाद ऐसी रेसिपी आपको हम बता देंगे जो कि वो बच्चों के लिए पुष्ट आहार बन करके तैयार हो जाएगा। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जो कुछ भी बच्चों को दे तो वो बहुत अच्छी तरीके से पका हो और एक ही बार दे बच्चे को। फिर हम धीरे धीरे उसके भूख और पसंद के अनुसार उसकी मात्रा बढ़ा लेते हैं। तो 6 माह के बच्चों के लिए पुष्ट आहार बताने जा रहे हैं, तो इसकी सामग्री आप नोट कर लें। 2 टेबल स्पून मूंग का दाल ले लें, 2 टेबल स्पून मसूर का दाल और 2 टेबल स्पून उड़द का दाल ले लें, 2 टेबल स्पून अरहर का दाल। अरहर का दाल की जगह पे आप कुल्थी का दाल एक होता है, आप उसको ले सकते हैं। तो 1 कप चावल ले लें, 7 पीस बादाम ले लें, 2 टेबल स्पून दलिया ले लें। विधि भी नोट कर लें। तो सबसे पहले हम चावल को 3-4 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे और धोने के बाद उसको 3 से 4 घंटे के लिए कपड़े पर सूखने के लिए फैला देंगे। उसके बाद सभी दाल को एक साथ मिला करके धो लेंगे। फिर यदि हो सके तो हम दाल को 5 से 6 घंटे के लिए अगर हम भिगा करके रख देंगे, थोड़ा अंकुरित हो जाएंगे तो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए और भी अच्छा हो जाता है कि उसमें जो भी कुछ हानिकारक तत्व होते हैं वो भी निकल जाएंगे, उसमें पॉलिश हो तो वो भी निकल जाते हैं और वो बच्चे के हेल्थ के लिए और भी बढ़िया होता है। फिर उसमें बादाम और 2 टेबल स्पून दलिया को डाल करके अच्छे तरीके से उसका पानी निकाल करके उसे भी सूखने के लिए रख देंगे। जब चावल मेरा सूख जाता है फिर उसको एक पैन लेंगे और उसमें मीडियम आंच पर भून लेंगे ताकि उसका पानी अच्छी तरीके से सूख जाए। उसी प्रकार से चावल को एक थाली में निकाल लेंगे, फिर सभी दाल को भी भून लेंगे, ठंडा होने तक इंतजार करेंगे। जब ठंडा हो जाए तब मिक्सी जार में रख कर बारीक पीस लेंगे, फिर उसे छन्नी से छान लेंगे। दाल और चावल को एक साथ मिक्स कर पाउडर तैयार कर लेंगे, फिर एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख देंगे। ये ध्यान होना चाहिए कि जो भी चीज हम भून रहे हैं तो मॉइस्चर बिल्कुल भी न रह जाए, क्योंकि हमें इसे थोड़ा 1 से 1.5 महीने तक के लिए हमें रखना है, स्टोर करना है, वो बिल्कुल खराब न होने पाए। फिर उसको जब बच्चे को खिलाना हो तो 1 टीस्पून पाउडर लें और 2 कप पानी में उसको अच्छी तरीके से बॉइल कर ले, 10 मिनट तक अच्छे तरीके से पका ले, फिर फ्लेम को बंद कर दे। फिर निकाल करके एक गाढ़ा पेस्ट बन जाएगा, बच्चे को खिलाएं। ये बच्चों के लिए बहुत ही बढ़िया पुष्ट आहार है, आप खिलाएंगे आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी होगा और स्वस्थ रहेगा। तो आज की मेरी दूसरी रेसिपी है आलू और पनीर से बनी हुई रेसिपी। तो ये रेसिपी बहुत ही हेल्दी है, यदि आपका बच्चा कमज़ोर है और उसका वेट नहीं बढ़ रहा है तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसकी भी सामग्री नोट कर लें। 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लेंगे और पनीर 25 ग्राम ले लेंगे, 1 छोटा चम्मच मिश्री पाउडर ले लेंगे, 1 चम्मच घी ले लेंगे, 200 ग्राम लगभग दूध ले लेंगे। तो इसकी भी विधि नोट

0: कर लें। तो सबसे पहले आलू का छिलका उतार लेंगे और उसे कद्दूकस कर लेंगे, उसी में पनीर को भी कद्दूकस कर लेंगे। फिर एक पैन में एक चम्मच घी डाल करके मीडियम आंच पर उसको चढ़ा देंगे। जब घी गर्म हो जाए तब उसमें आलू डाल देंगे और एक मिनट तक भून लेंगे। उसी में पनीर डाल देंगे और अच्छे से मैश होने तक भून लेंगे। फिर उसमें आधा गिलास दूध डालते हुए धीमी आंच पर एक मिनट तक उसको पका देंगे और उसी समय उसमें आधी चम्मच हम मिर्ची पाउडर भी डाल देंगे। तो एक छोटा चम्मच उसमें ड्राई फ्रूट पाउडर डाल देंगे जो कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, उनके हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। एक से डेढ़ मिनट तक उसको पकाएंगे, फिर फ्लेम बंद कर देंगे, ठंडा करके सर्व करेंगे। ये रेसिपी आप 8 महीने से ऊपर के बच्चों के लिए खिला सकते हैं।
1: तो भाई देखिए, बच्चों के लिए आहार विमला मिश्रा जी ने कितनी अच्छी तरीके से बताया है ना। आप इसको फॉलो कीजिए और अपने जो बच्चे हैं उनको अच्छा
2: पोषण दीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और भाई देखो मंदाकिनी, हम जब आते हैं ना तो बहुत सारी जानकारी लेकर आते हैं। अब गर्मी का मौसम है ना। अब गर्मी के मौसम में ये प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम, घमोरियों की प्रॉब्लम आती है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम आती है ना। तो आज कुछ ऐसे ही जो है अपनी सखियों को हम सोच रहे हैं बताएं, लेकिन इसके लिए तुमने जो है, हम तुमको देख रहे हैं कि कुछ तुम बहुत ध्यान से पढ़ रही हो और बहुत चिंतन मनन कर रही हो, क्या बताने वाली हो बता दो।
2: देखिए हिम जी, जो है गर्मियों का मौसम जैसा अभी आपने बताया, और इस समय जो है एक मौसम में हवा में एक रूखापन सा है, खुश्की सी है, तो जो है बालों में अक्सर और त्वचा में भी हमारे डैंड्रफ की समस्या और जो है खुश्की की समस्या हो जाती है। तो आज मैं अपने श्रोताओं को और सखियों को बालों में जो डैंड्रफ है उसको दूर करने की कुछ छोटे छोटे टिप्स दूंगी।
1: बिल्कुल।
2: हालांकि हमारी सखियां बहुत ही अवेयर हैं,
1: उनको पता है
2: लेकिन हम उनको रिकॉल करा देते हैं इसके जरिए। तो देखिए श्रोताओं, अगर बालों में आपकी खुश्की या जिसे हम डैंड्रफ कहते हैं, रूसी भी कहते हैं, अगर बहुत ज्यादा हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं कि नारियल तेल और नींबू इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और करेंगे कैसे, 2 चम्मच नारियल तेल में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं, हल्के हाथों से सिर की मालिश करें।
1: अच्छा।
2: 20 से 30 मिनट बाद हल्के शैम्पू से धो लें और ये आपको प्रोसेस वीक में 2 टाइम्स करना है।
1: अच्छा, दो बार करना है।
2: ठीक है। आप दही का प्रयोग भी कर सकते हैं, इस समय तो हम लोग दही खा भी रहे हैं।
1: डेली डेली।
2: ठीक है, तो फ्रेश आप दही लीजिए और अपने सिर की जड़ों में उसे लगाइए, बस 30 मिनट बाद धो लीजिए। ये क्या करता है कि जो हमारे स्कैल्प है उसको भी ठंडा करता है और उसे कम करने में भी मदद करता है। और एक चीज, मेथी दाना जिसको डायबिटीज में हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, है ना, तो इसको हम अपने बालों के लिए भी यूज कर सकते हैं। करना क्या है कि बस रात भर मेथी दाने को भिगो दीजिए, सुबह उसको पीस कर पेस्ट बना लें और उसको स्कैल्प में 30 मिनट के लिए रख लें और फिर अपना बाल धो लीजिए, है ना। एलोवेरा जेल सबके पास होता है, अपने हमारे छोटे से गार्डन में हमेशा लगा रहता
1: सभी
2: है,
1: क्या लगा
2: सभी
1: क्या
2: लगा रहता है, तो ताजा एलोवेरा जेल आप यूज करिए अपने स्कैल्प में और उसको भी 20 मिनट बाद बस रख के धोना ही है। और इससे होता क्या है कि खुजली और जो सूखापन है वो बहुत ही कम करने में मदद मिलती है।
1: बिल्कुल।
2: और नीम के पत्ते, हिम जी,
1: नीम के पत्ते तो बहुत ही फायदेमंद,
2: बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि कभी कभी हफ्ते में एक बार उसको, जो इसकी पत्तियां होती है, खाली पेट, वो भी बहुत फायदेमंद होती है। तो जो नीम की पत्ती है उनको उबाल कर उसका पानी ठंडा कर लेना है। बाल धोने के बाद इस पानी से सिर को साफ करना है, ठीक है। और जो इसके जो एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल जो गुण है वो इतने अच्छे होते हैं कि आपके बालों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी।
1: वाह वाह, क्या कहने भाई। तो मंदाकिनी ने कितना अच्छा बताया कि डैंड्रफ अगर आपको है तो ये सारी जो चीजें हैं इसको यूज कीजिए और अपनी डैंड्रफ को भगा दीजिए, है ना। तो भाई देखो, इतनी अच्छी जानकारी के बाद एक प्यारा सा गीत और बनता है तो चलो सुन लेते हैं।

0: अब जो है बारी है अपनी प्रतिक्रिया जानने के लिए। तो
1: बिल्कुल श्रोताओं, हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा इंतजार रहता है। जो आप प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजते हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो अपने मैसेज, अपने संदेश हमें भेजना बिल्कुल ना भूलें। और उसके लिए चाहिए आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा ईमेल एड्रेस, तो वो आप नोट कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8004926250, हिंदी में 8004926250। और हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है greelakshmibalsang123@gmail.com। तो अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर भेजिए,
0: हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। और हमारी अब घड़ी कह रही है
1: विदा लेने का। तो अब हम चलते हैं इस वादे के साथ कि फिर हाजिर होंगे प्यारे प्यारे अपने बातचीत और मैसेजेस के साथ। तो चलिए लेते हैं विदा।
0: नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर। 2 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल की प्रतीक्षा करें।

0: अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है।

0: बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी

0: उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में लोकगीतों का कार्यक्रम होगा।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: Giardu. कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, हम एक बार पुनः आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। इस बार का विषय होगा तंबाकू सेवन से होने वाले रोग और उनका उपचार। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी शहर प्रयागराज की प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया तिवारी। आप अपने प्रश्न दिनांक 27 मई 2026 को सायं 3 बजे से 4 बजे तक फोन नंबर 0532-2970-4622 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फोन नंबर एक बार पुनः सुन लें 0532-2970-462 और दूसरा नंबर है 0532-242-3649। सूचना समाप्त हुई। एक और सूचना सुनिए। दिनांक 30 मई 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में महिलाओं के मानसिक रोग निदान और उपचार विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश कुमार पासवान। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फोन नंबर 0532-2970-462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फोन नंबर पुनः सुन लीजिए 0532-2970-462। दूसरा नंबर है 0532-242-3649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। ये सूचना समाप्त हुई।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस, रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए ये देवी गीत, स्वर रामकृपाल यादव और साथियों के हैं।

इस देवी गीत के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं ये कहरवा, रामकृपाल यादव और साथियों के स्वर में।

श्रोताओं, अगले लोकगीत से पहले कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, हम एक बार पुनः आपके लिए लेकर के आ रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। इस बार का विषय होगा तंबाकू सेवन से होने वाले रोग और उनका उपचार। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी शहर प्रयागराज की प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया तिवारी। आप अपने प्रश्न दिनांक 27 मई 2026 को सायं 3 बजे से 4 बजे तक फोन नंबर 0532-2970462 और 0532-2423649 पर पूछ सकते हैं। फोन नंबर एक बार पुनः सुन लें, 0532-2970462। दूसरा नंबर है 0532-2423649। सूचना समाप्त हुई। लीजिए अब सुनिए प्रीति मिश्रा के स्वर में ये कहरवा।

अभी आपने धीरज कुमार और साथियों के स्वर में ये देवी गीत सुना। इसी के साथ आज का लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजने को हैं। अब मीडियम वेव पर हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। मीडियम वेव पर शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम नन्ही दुनिया। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुने नन्ही दुनिया।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद बच्चों।
0: हाँ तो भाई देखिए, आपकी दो दीदी लोग आ गई हैं, है ना, आपके कार्यक्रम के लिए। आप सब कैसे हैं? अच्छे ही होंगे ऐसी आशा करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बात पे जिद भी करते होंगे, है ना। तो भाई जिद नहीं करना है, जानते हो कि जिद करना गलत बात है, है ना। और बच्चों देखो, आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं बहुत सारी जानकारी, जिसमें आप तो गंगा जी के बारे में जानते ही होंगे,
1: बिल्कुल।
0: है ना। तो भाई देखो बच्चों, गंगा जी जब आप लोग जाते हैं नहाने के लिए, तो आपको कैसा लगता है? खूब मजे करते हैं ना? और अब तो भाई सबकी छुट्टियां भी चल रही हैं,
1: हाँ
0: हैं, और आप सब खूब इंजॉय कर रहे होंगे। मैं भी जो है सुबह सोच रही हूँ किसी दिन गंगा जी जाऊँ, वहाँ जो है नहाऊँ और उसके बाद तिलक चंदन लगाऊँ और वहाँ की आरती वरती भी देख के सब तब आऊँ। क्यों मंदाकिनी दीदी?
1: बिल्कुल। और बच्चों, जब आप शाम के टाइम पे गंगा जी जाते हैं तो होता क्या ना कि हेमदी बच्चों के अंदर होता है कि कहीं भी जाते हैं, जैसे लगता है हमको एक पिकनिक स्पॉट है, वहाँ हम जा रहे हैं, चिप्स कुरकुरे के पैकेट्स लेके, फ्रूटी है, ये तमाम स्नैक्स लेके खाते पीते हैं और वहाँ पर फेंक के वो चले आते हैं। हम अपने कार्यक्रम के ज़रिए जब भी नन्हे मुन्हे से मुलाकात करते हैं,

0: ये ज़रूर बताते हैं कि बच्चों कोई भी कूड़ा कचरा कैसा भी कचरा हो उसको इधर उधर हम नहीं फेंका करते, हमेशा हम सब बात करते हैं, है ना। तो जब आप गंगा जी जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि इधर उधर गंदगी है तो आपको कैसा लगता है? हाँ, आपको भी बुरा लगता होगा,
1: बुरा लगता
0: और
1: है।
0: आप भी जब साथ में वो गंदगी आप भी फैलाते हैं तो फिर थोड़ा ना कहीं आप भी इन सारी बुरी आदतों में शामिल हो रहे हैं ना।
1: बिल्कुल,
0: तो इसलिए अपनी इन आदतों को जैसे अच्छे बच्चों की तरह हम हमेशा सिखाते हैं कि आपको अच्छे बच्चे बने रहना है, कभी भी ऐसी गंदी चीजें नहीं करनी है, वहां पे भी आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे हम गंगा नदी जी के बारे में बात इसीलिए करने आए हैं कि आपको उनको स्वच्छ रखना है, उनको साफ सुथरा रखना है। बिल्कुल जाइए उसमें, नहाइए, उसका अपना एक महत्व होता है। हम गंगा जल लेके घर पे भी आते हैं, अपने पूजा घर में रखते हैं, तो देखिए साफ रहेगा तो ही तो पूजा घर में रखेंगे,
1: और क्या,
0: है ना,
1: और
0: तभी
1: क्या?
0: तो उसको यूज कर सकेंगे हेल्दी, उसको हम पीते भी हैं, उसको तो भगवान को चढ़ाते हैं। तो इस तरीके से ये जल जो है जैसे हम नॉर्मल अपना पानी पीते हैं वो साफ सुथरा पीते
1: और देखो
0: हैं।
1: गंगा जी से ही सारी जगह हम लोग
0: बिल्कुल
1: के घर में जितने भी नल लगे हुए हैं, जहाँ पे पाइपलाइन आई है, सब गंगा नदी के ही द्वारा आई है। और
0: बिल्कुल
1: साफ स्वच्छ रखेंगे तो भाई टैप में भी हमारे जल अच्छा आएगा और हम लोग
0: बिल्कुल
1: स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे ना। हाँ
0: तो बच्चों जैसा कि अभी हेम दीदी ने बताया कि गंगा नदी के बारे में हमें उसे कैसे शुद्ध रखना है, अब आप ये भी सोच रहे हो कि हमारी दीदियाँ आई और अचानक उन्होंने गंगा जी के बारे में बात करना शुरू
1: हाँ
0: कर दिया,
1: हाँ
0: ऐसी क्या खास बात है? तो बच्चों
1: हाँ
0: आज है 25 मई और आज है
1: गंगा
0: गंगा दशहरा,
1: दशहरा। हाँ
0: तो इसके विषय में भी हम आपसे थोड़ी बातें करेंगे कि गंगा दशहरा है क्या। ये है हिंदुओं का पवित्र त्यौहार, है ना, और ये जो ज्येष्ठ माह का शुक्ल पक्ष होता है उसकी दशमी तिथि को मनाया जाता है। अब आप कहेंगे ज्येष्ठ माह क्या है, तो
1: हाँ
0: ये
1: ये
0: जो महीना आपका चल रहा
1: गर्मी
0: है,
1: गर्मी का।
0: हाँ, मई का मंथ, यही आपका ज्येष्ठ माह हिंदी के नाम से कहलाता है, और इसकी एक तिथि होती है दशमी तिथि, इसलिए इसे गंगा दशहरा कहते हैं। और मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा जी को धरती पर
1: पर
0: भागीरथ जी ने उतारा था,
1: उतारा था
0: है ना,
1: भाई, उनके पूर्वज तर गए थे
0: हाँ,
1: इसी से ना।
0: इसी से। और राजा भागीरथ जी ने कठोर तपस्या की थी तभी तो माँ गंगा को स्वर्ग से धरती पे ला पाए थे, है ना,
1: और
0: तो
1: सबका उद्धार किया
0: उद्धार
1: था।
0: हुआ है।
1: बिल्कुल
0: तो आज भी देखिए हमारी गंगा नदी है, आपको पता है कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वहां से इतनी निर्मल होती है हेमदी, कितनी एकदम
1: बहुत
0: सफेद
1: एकदम
0: स्वच्छ शुद्ध, और लेकिन हम तक पहुंचते पहुंचते मटमैली हो जाती हैं,
1: हाँ,
0: कूड़े कचरे से
1: क्योंकि
0: भर जाती
1: क्योंकि
0: हैं,
1: हम लोग ध्यान नहीं देते ना
0: ध्यान नहीं
1: बच्चों,
0: देते
1: जैसा
0: हैं।
1: दीदी ने बताया कि सभी कुछ खा के हम लोग वहाँ साइड में फेंक देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूजा पाठ करके जो उसमें सब लोग पूजा पाठ का सारा सामान
0: सामान
1: डाल
0: फेंक
1: देते हैं,
0: देते हैं,
1: उससे भी क्या होता है, पानी में सारी चीज़ें जो है सड़ती हैं
0: बिल्कुल
1: और उससे स्वच्छ जो हमारा जल होता है वो प्रदूषित हो
0: हो
1: जाता है।
0: जाता
1: तो
0: है,
1: ये सब का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके
0: हाँ
1: घर के लोग गंगा जी स्नान करने जाएं तो आप अपने बड़ों से भी कह सकते हैं कि उसमें ना डालें,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आपको भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है
0: हाँ
1: बच्चों।
0: हाँ आप उसको कहीं किनारे रख सकते हैं, और इन सब के लिए टीम होती है, वो सारे जो है कचड़ों का निस्तारण करती है, लेकिन जब आप जल में बहा देते हैं थोड़ा दिक्कत का वो ऐसा बन जाता है कि आप चीज़ें सड़ने गलनी शुरू हो जाती हैं उसी में, हालांकि पानी बहता हुआ रहता है लेकिन एक जगह कहीं कुछ फंस गया ना तो पानी वहाँ फिर ठहर भी जाता है। अक्सर देखिए
1: और
0: हिंदी
1: क्या,
0: जो आगे का पानी होता है जहाँ हमें एक
1: हाँ
0: बैरियर बनाया
1: तो
0: जाता
1: वहां
0: है कि
1: पर देखो
0: यहीं
1: कितना
0: नहाना
1: गंदा
0: है,
1: रहता है,
0: तो कितना गंदा
1: बहुत
0: पानी
1: गंदा
0: हो
1: रहता
0: जाता
1: है।
0: है और स्मेल भी कभी कभी आने लगती है, तो इन सब चीज़ों से हमें अवेयर रहना है। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रॉमिस करें कि हम नदियों को गंदा नहीं
1: नहीं
0: करेंगे,
1: करेंगे, स्वच्छ रखेंगे।
0: बिल्कुल पानी बचाएंगे और माँ गंगा की स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई हेम दीदी,
1: अब तो कुछ और होना
0: कुछ
1: चाहिए।
0: और होना चाहिए,
1: हाँ
0: तो बच्चों को प्यारा सा गीत सुनवा दिया जाए।

0: छुट्टी है। तो
1: हाँ
0: बच्चों छुट्टियां तो शुरू ही हो चुकी हैं और आप सब खूब एंजॉय कर रहे होगे
1: बिल्कुल।
0: ना। लेकिन आपको पता है अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपनी छुट्टियों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कैसे? बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज करके, माइंड एक्टिविटीज करके और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रख के। अब बात आई पढ़ाई की, तो भाई मैं अपनी तरफ से ऐड नहीं कर रही हूँ, आप लोग को तो वैकेशन वर्क मिले होंगे,
1: बिल्कुल।
0: हाँ
1: हाँ
0: होमवर्क मिले होंगे, तो वो सब तो आपको करना ही है ना। क्यों ना उसको टाइम से निपटा के आप कहीं वैकेशन पे चले जाएं, है
1: बिल्कुल।
0: ना?
1: हाँ
0: क्या
1: हाँ
0: कहती हैं
1: बिल्कुल
0: हिंदी?
1: बिल्कुल जाना भी चाहिए। लेकिन जानते हो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने मन की करते हैं, है ना। जब उनका मन आता है तभी वो काम करते हैं।
0: ये बात तो है।
1: जब अगर कोई काम करने के लिए बोलो कि ये अभी कर लो, तो कहते हैं अभी नहीं मूड है, फिर करेंगे, है ना। तो ऐसा तो भाई करना बहुत गलत बात है, और ये एक तरीके का जिद ही है। तो जानते हो जिद अगर आप करोगे तो आपको पिटाई भी लगेगी और सारी बातें भी सुनाई सुनने को मिलेगी, है ना। भाई देखो बच्चों, आप जो जिद जब करते हैं ना, तो आप किसी का प्यार नहीं पाएंगे, है ना। ना मम्मी का, ना पापा का, ना घर में जितने भी लोग हैं, आपको कोई प्यार नहीं करेगा। तो इसलिए जिद करना बुरी बात है। अब बच्चों कई बार हम किसी खिलौने, मोबाइल, चॉकलेट या किसी चीज़ के लिए जिद करने लगते हैं, तो जब हमारी बात तुरंत नहीं मानी जाती तो हम रोने लगते हैं, गुस्सा करते हैं या खाना छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इससे मम्मी पापा को कितना दुख होगा?
0: बिल्कुल हेमदी। और जिद करने से कोई भी समस्या हल नहीं होती है, ठीक है? समझदार बच्चे अपनी बात प्यार और शांति से कहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अगर कोई चीज़ तुरंत नहीं मिलती है तो
1: हाँ
0: हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, है ना? हर पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं और
1: हाँ
0: सही समय

0: पर उनकी ज़रूरतें भी पूरी करते हैं। तो बच्चों, अच्छी आदतें आपको सबका प्यार देती हैं, सबका प्यारा बनाती हैं, और जो बच्चे पेशेंस रखते हैं, पोलाइट होते हैं, बात मानते हैं और बिना जिद किए समझदारी से व्यवहार करते हैं, सभी लोग उनकी तारीफ जरूर करते हैं।
1: बिल्कुल करते हैं। तो बच्चों, अच्छी आदतें हमें सबका प्यारा बनाती है। जो बच्चे विनम्र होते हैं, बात मानते हैं और बिना जिद किए समझदारी से व्यवहार करते हैं, सभी लोग उनकी तारीफ करते हैं, है ना। तो मंदाकिनी दीदी, आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम बेकार की जिद नहीं करेंगे, है ना, मम्मी पापा की बात मानेंगे और अच्छे संस्कारों वाले बच्चे बनेंगे, है ना भाई। ये संकल्प तो ले लिया, लेकिन संकल्प लेकर घर में बैठे मत रहिएगा, इस पे जो है आप अपना जो है सारा काम भी करिएगा, और इसको दिमाग से भूलिएगा नहीं। अगर आप भूल गए तो फिर दीदी कहेगी कि आप सब लोग झूठे हैं, झूठी संकल्प
0: भाई,
1: लेते हैं।
0: हम यहाँ आते हैं, अपने प्यारे प्यारे बच्चों से बातचीत करते हैं, बहुत सारे टिप्स भी देते हैं।
1: हाँ।
0: तो टिप्स के ज़रिए यही तो समझाते हैं कि पेरेंट्स के साथ हमें कैसे बिहेव करना है, टीचर्स के साथ हमें कैसे बिहेव करना, और
1: हाँ।
0: साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना है। कितनी सारी मोरल स्टोरीज़ हम ले आते हैं हिंदी, तो बच्चे हमारे बहुत प्यारे हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं, उनसे सीखते हैं और उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में उनका इम्प्लीमेंट भी करते हैं।
1: बिल्कुल, आसपास के लोगों, आसपास देखो, आप जो है छोटी छोटी बातों से सीख सकते हैं, है ना। अगर आपसे बड़े भाई बहन हैं या छोटे हैं, तो आप उनसे भी आप अपनी बात को कह सकते हैं, समझ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब आप पड़ोस में जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में जाते हैं, वहां भी ऐसे ही कोई बच्चा मिल जाए तो आप उसको समझाइए, है ना, बताइए, जिद नहीं करना है कि गलत बात है ये, अगर आप ये करोगे गंदी बात हो जाएगी, फिर हम लोगों को जो फ्रीडम मिली है वो भी बंद हो जाएगी। और किसी चीज के लिए कहीं भी किसी शॉप में अगर आप गए और वहां पर जिद करने, मैंने तो देखा है ना मंदाकिनी दी, बहुत से बच्चे ऐसे जिद करके जमीन में लौटने लगते हैं।
0: और खासतौर पर जब शॉपिंग मॉल में जाइए और वो टॉयज का सेक्शन जब आता है ना, तो बच्चे वहां ऐसा लेट जमीन पे कि पेरेंट्स भी एम्बैरेस हो जाते हैं।
1: हाँ, तो भाई जिद मत करिए और हमेशा अच्छे बच्चे बने रहिए, है ना। और अब हमारी घड़ी भी कह रही है कि हम लोग भी अपने घर जाएं और आप भी अच्छी अच्छी बातें घर में कीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए
0: जय हिंद।

0: अभी नन्हे मुन्ने अपना कार्यक्रम सुन रहे थे नन्ही दुनिया। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: अरे अरे आयुष, क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रहे हो और एकदम फुल ऑन रोनाल्डो मोड में देख रहे हो। क्या चक्कर है आखिर?
1: अरे ज्योति, कुछ नहीं। जब दिन इतना बड़ा हो तो पैर अपने आप ही थिरकने लगते हैं। गुड इवनिंग प्रयागराज, मैं हूं आपका दोस्त आयुष, आपके फेवरेट प्रोग्राम युवाड़ी में, ओनली ऑन 100.3 FM।
0: और मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति। वैसे आयुष, तुम्हारा ये जोश जायज़ भी है क्योंकि आज है 25 मई, यानी विश्व फुटबॉल दिवस। दोस्तों, ये सिर्फ एक गेम नहीं है,

0: ये वो चीज़ है जो आधी रात को भी लोगों को टीवी स्क्रीन से एकदम चिपकाए रखती है।
1: बिल्कुल ज्योति, मतलब सोचो, एक सिंपल सी गोल गेंद, दो गोल पोस्ट और उसके पीछे भागती हुई पूरी दुनिया, चाहे वो मेसी का मैजिक हो, रोनाल्डो का स्वैग हो, या हमारे देश के सुनील छेत्री की कप्तानी। और इसके अलावा हम किसी भी देश के फुटबॉलर्स को देखें, चाहे वो इंग्लैंड के हैरी केन या मार्कस रैशफोर्ड हों, या स्पेन के पेड्री या गावी, फुटबॉल में जो वाइब है ना, वो कहीं और नहीं है।
0: ये एक ऐसा गेम है जो केवल एक खेल नहीं है, बल्कि दुनिया के 4 अरब से ज़्यादा लोगों का जुनून है, एक भावना है। चाहे ब्राज़ील के सांबा का जादू हो, अर्जेंटीना के मेसी की ड्रिबलिंग हो, या फिर भारत के सुनील छेत्री की कप्तानी वाला अंदाज़, फुटबॉल सरहदों को मिटा देता है। आयुष, क्या तुम्हें पता है कि 25 मई को ही वर्ल्ड फुटबॉल डे क्यों मनाया जाता है?
1: बिल्कुल, मुझे पता है। दरअसल साल 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पास करके हर साल 25 मई को आधिकारिक रूप से विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया। इसकी वजह यह है कि 25 मई 1924 को पेरिस ओलंपिक के दौरान इतिहास में पहली बार एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था जिसमें दुनिया के लगभग सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था।
0: वाह, यानी पूरे 100 साल से भी ज़्यादा का सफ़र तय कर चुका है ये वैश्विक आयोजन।
1: बिल्कुल
0: और इस साल भी संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक बॉल नहीं है, ये एक जादुई चीज़ है जो बच्चों और बड़ों के चेहरे पर मुस्कान ला देती है।
1: सच में ज्योति, जैसे ही पैर गेंद को छूते हैं ना, दुनिया की सारी टेंशन गायब हो जाती है। और दोस्तों, आपको तो पता ही है, फुटबॉल की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसके लिए आपको कोई बहुत महंगे इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। बस एक बॉल, एक खाली ग्राउंड, और इसी के साथ ही आपकी फुटबॉल की दुनिया तैयार है।
0: बिल्कुल, और शायद इसीलिए इसे कहते हैं द पीपल्स गेम। जब हम फुटबॉल की बात करते हैं तो कुछ नाम जबान पर अपने आप ही आ जाते हैं, जैसे पेले हो गए, डिएगो मैराडोना हो गए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो गए, लियोनेल मेसी हो गए।
1: अब चाहे पेले का वो 3 विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड, या मैराडोना का वो हैंड ऑफ गॉड वाला गोल, और या फिर साल 2022 में जब लियोनेल मेसी ने अपने देश अर्जेंटीना के लिए कतर में विश्व कप की ट्रॉफी को उठाया, ये वो पल हैं जिन्होंने इतिहास लिखे हैं। और आज भी मेसी और रोनाल्डो की जो आपसी टक्कर है, उसने तो दुनिया को दो हिस्सों में बांट के रखा हुआ है।
0: बिल्कुल, वैसे मुझे ऐसा लगता है आयुष, तुम्हें फुटबॉल की बहुत नॉलेज है और तुम्हें बहुत इंटरेस्ट भी है इस गेम में, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस टीम को सपोर्ट करते हो या तुम किस टीम को ज़्यादा पसंद करते हो?
1: अब देखो ज्योति, ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल है। रोनाल्डो की वो बेजोड़ फिटनेस और कड़ी मेहनत सबको प्रेरणा देती है, और मेसी के पैरों में जो फुटबॉल को नचाने का एक जादू है ना, वो तो लाजवाब है। और वैसे तो मैं इस गेम का ही सबसे बड़ा फैन हूँ, पर अगर मुझे चूज़ करना हुआ तो मैं शायद टीम मेसी को चूज़ करूँगा।
0: बिल्कुल, और इसी एकता और भाईचारे का जश्न मनाने के लिए फीफा इस पूरे हफ्ते को वर्ल्ड फुटबॉल वीक के रूप में मना रहा है आयुष।
1: दोस्तों, हमने ब्राज़ील, अर्जेंटीना और यूरोप के फुटबॉलर्स की तो बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं उस मिट्टी की जहां हम खड़े हैं, हमारा प्यारा भारत और भारतीय फुटबॉल। जी हाँ दोस्तों, जब हम भारतीय फुटबॉल की बात करते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। बाईचुंग भूटिया से लेकर हमारे कैप्टन फैंटास्टिक सुनील छेत्री तक, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल करने के मामले में दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया।
0: बिल्कुल, सुनील छेत्री ने भारत में फुटबॉल की एक नई लहर पैदा की है। आज हमारे देश के युवा सिर्फ यूरोपियन लीग्स नहीं देख रहे, बल्कि वो इंडियन सुपर लीग यानी ISL में अपनी घरेलू टीम को भी उतना ही सपोर्ट कर रहे हैं। कोलकाता का मोहन बागान और ईस्ट बंगाल का डर्बी मैच हो, या केरल ब्लास्टर्स के फैंस का वो पीला समंदर, भारत में फुटबॉल का जो क्रेज़ है ना, वो किसी से कम नहीं है।
1: और हमारी महिला फुटबॉल टीम को भी हम कैसे भूल सकते हैं, जो लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र भी इस बात पर जोर देता है कि फुटबॉल महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण का एक बेहतरीन जरिया है।
0: बिल्कुल, भारत में फुटबॉल का भविष्य बहुत उज्जवल है। आज के समय में मोबाइल और सोशल मीडिया के बीच युवाओं का जो खेलों से जो लगाव था ना, वो दूर होता दिख रहा है, और ये मुझे लगता है कि बहुत चिंता की बात भी है।
1: बिल्कुल, और ऐसे में जो फुटबॉल जैसे जो भी आउटडोर गेम्स हैं, ये हम युवाओं को फिट रखते हैं, हमें एक्टिव बनाते हैं और हमें डिसिप्लिन भी बनाते हैं। इस गेम से एक तरफ हमारा शरीर मजबूत होता है।

0: वही हमें टीम वर्क सीखने को भी मिलता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल, और सबसे ज़रूरी बात, ये गेम हमें हार और जीत दोनों को एक्सेप्ट करना सिखाता है। कई बार ज़िंदगी में फुटबॉल मैच जैसी होती है ना हमारी ज़िंदगी, कभी गोल मिलता है कभी संघर्ष, लेकिन खेलते रहना ही इसकी असली जो होती है, मुझे लगता है वो जीत होती है,
0: बिल्कुल
1: असली जीत होती है।
0: हाँ, और फुटबॉल भी हमें सिर्फ खेलना ही नहीं सिखाता, ये हमें जीवन जीना भी सिखा ही रहा है। ये हमें सिखाता है टीम वर्क, डिसिप्लिन, पेशेंस, स्ट्रगल और कभी ना हार मानने की जिद।
1: बिल्कुल, अगर ग्राउंड में खिलाड़ी गिरकर दोबारा उठ सकता है, तो ज़िंदगी में इंसान भी हर मुश्किल के बाद आगे बढ़ सकता है, क्योंकि फिट बॉडी और पॉजिटिव थिंकिंग ही एक बेहतर भविष्य की पहचान है। तो अपने मोबाइल और कंप्यूटर स्क्रीन से बाहर निकलिए, क्योंकि जैसा कि फीफा और WHO का कैंपेन कहता है, बी एक्टिव। दिन में कम से कम 60 मिनट शारीरिक रूप से एक्टिव रहना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा ज्योति। और अब जब हमने अपने साथियों को इतनी सारी बातें विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में बता दी हैं, तो क्यों ना उन्हें एक गाना सुनाकर एंटरटेन भी कर दें।
1: बिल्कुल।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.

0: आकाशवाणी एट 90।
1: दोस्तों, वैसे तो गर्मी के दिनों में कहीं भी बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मौसम कितना भी भीषण क्यों ना हो, हम यूवाणी के आपके साथ ही आकाशवाणी के जरिए आपको एंटरटेन करने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। पता है ज्योति, आज तो रास्ते में कई जगह पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे और मैंने एक भजन के भी कुछ बोल सुने। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी।
2: अरे वाह, ऐसा इसलिए आयुष क्योंकि आज का दिन बेहद खास है, बेहद पावन है। इस चिलचिलाती जेठ की धूप में जब ठंडी हवा का एक झोंका आता है तो मन कितना खुश हो जाता है ना। ठीक वैसे ही आज हमारे मन को शीतलता देने के लिए आया है एक महापर्व।
1: बिल्कुल सही कहा ज्योति, आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है, यानी आज है गंगा दशहरा। वही पावन दिन जब पतित पावनी मोक्षदायिनी माँ गंगा स्वर्ग से उतरकर हमारी इस धरती पर आई थी।
2: बिल्कुल, और इसीलिए आज सुबह से ही हरिद्वार के हर की पौड़ी से लेकर काशी के दशाश्वमेध घाट और अपने संगम तट तक हर तरफ श्रद्धालुओं का सैलाब है। हर हर गंगे के जयकारों से पूरा आकाश गूंज रहा है। दोस्तों, जब हम दशहरा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले रावण वध वाली विजयदशमी याद आती है, लेकिन इस गंगा दशहरा के नाम में दशहरा क्यों है, इसके पीछे का क्या राज है, आइए जानते हैं।
1: दरअसल दशहरा शब्द बना है दश और हरा से, इसका मतलब है 10 पापों को हरने वाला। तो ऐसी मान्यता है कि अगर आज के दिन कोई श्रद्धा भाव से गंगा में डुबकी लगाता है तो उसके 10 तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं।
2: यानी कि माँ गंगा सिर्फ हमारे तन को ही नहीं बल्कि हमारी वाणी, हमारे मन और हमारी आत्मा को भी शुद्ध कर देती हैं, और इसीलिए आज के दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व होता है।
1: दोस्तों, माँ गंगा को हम भागीरथी भी कहते हैं और इसके पीछे राजा भगीरथ की वो जिद और तपस्या है जिसने इतिहास बदल दिया। हमारे श्रोताओं को भी वो कहानी जरूर सुननी चाहिए।
2: हाँ आयुष, वो कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे पक्के हों तो स्वर्ग से नदी को भी जमीन पर उतारा जा सकता है। राजा भगीरथ के पूर्वज राजा सगर ने 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने श्राप देकर भस्म कर दिया था। उनकी मुक्ति के लिए केवल एक ही रास्ता था कि वो जब स्वर्ग से गंगा जी को धरती पर लाएंगे तभी उनको मुक्ति मिल पाएगी,
1: और यह काम इतना आसान नहीं था। भगीरथ ने सालों तक एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तो प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने एक चेतावनी दी कि अगर गंगा स्वर्ग से गिरेंगी तो उनका वेग इतना तेज होगा कि पृथ्वी उसे सह नहीं पाएगी और पाताल में धंस जाएगी। तब भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की
2: और शिव जी ने अपनी जटाएं खोल दी, और जैसे ही गंगा स्वर्ग से नीचे गिरी शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांध लिया, फिर बहुत ही शांत रूप में गंगा जी को धरती पर बढ़ने का रास्ता दिया।

0: सोचिए दोस्तों, कितनी अद्भुत रही होगी वो घटना। इसीलिए आज के दिन को गंगा अवतरण भी कहा जाता है। और दोस्तों, अभी तक तो हमने माँ गंगा की महिमा की बात की, उनकी कहानियाँ सुनी, लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह भी है कि जिस गंगा को हम माँ कहते हैं, उसे हम खुद ही मैला कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। गंगा सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, वो करोड़ों लोगों की जीवनदायिनी है, हमारी इकोनॉमी और खेती की रीढ़ है। आज गंगा दशहरा पर सबसे बड़ा पुण्य यही होगा कि हम ये संकल्प लें कि हम नदियों में प्लास्टिक कचरा या पूजा सामग्री की को जो है प्लास्टिक की थैलियों में बांधकर उसमें फेंकेंगे नहीं।
0: बिल्कुल सही ज्योति, माँ गंगा को स्वच्छ रखना किसी एक सरकार या संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। असली गंगा पूजा तभी सफल होगी जब हमारी नदियाँ अविरल और निर्मल बहेंगी।
1: बिल्कुल। तो दोस्तों, त्यौहार केवल परंपरा निभाने के लिए नहीं होते, वो हमें सीख भी देते हैं। गंगा दशहरा हमें सिखाता है प्रकृति का सम्मान करना, धैर्य का पालन करना और अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए तपस्या करना, साथ ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना, क्योंकि आज की जनरेशन टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही हमें अपनी संस्कृति और पर्यावरण से जुड़ना भी उतना ही ज़रूरी है।
0: क्योंकि मॉडर्न बनने का मतलब अपनी जड़ों को भूलना नहीं होता। आज गंगा दशहरा के विशेष अवसर पर आइए हम सभी एक संकल्प लें।
1: नदियों
0: नदियों
1: को
0: को स्वच्छ
1: स्वच्छ
0: रखेंगे,
1: रखेंगे,
0: प्रकृति
1: प्रकृति
0: का
1: का
0: सम्मान
1: सम्मान
0: करेंगे
1: करेंगे
0: और
1: और अपनी
0: अपनी संस्कृति
1: संस्कृति
0: को
1: को
0: आगे
1: आगे
0: बढ़ाएंगे।
1: बढ़ाएंगे।

0: साथियों, हम अपने युवाड़ी प्रोग्राम में आपके लिए अक्सर विशेष प्रस्तुतियां लाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए एक कहानी लाए हैं जिसका शीर्षक है जिद जीत की, और कहानीकार हैं महेंद्र कुमार कनौजिया।
1: मनु हर रोज की तरह घर से निकलते समय आज भी मम्मी से पैसे मांग ही रहा था कि उसके पिता त्रिलोकीनाथ बोल पड़े, आखिर कब तक मांगते रहोगे? अब उम्र हो गई है पैसे कमाने की, क्यों घर पर बोझ बन रहे हो? मनु कुछ बोलता इससे पहले उसकी माँ रेवती उसके पक्ष में बोल पड़ी, आप क्यों इस तरह बोलते हैं? समय आने पर वो भी कुछ कर लेगा। तभी त्रिलोकीनाथ बोल पड़ते हैं, अरे क्यों ना बोलूं, साहबजादे तो पता नहीं क्या करना चाहते हैं, आज तक किसी को कुछ पता हुआ? तभी मनु अपनी मम्मी रेवती से पैसे लेते हुए पिता से नजरें चुराते घर से बाहर की ओर चला जाता है। अब उसके पिता त्रिलोकीनाथ अपनी बीवी रेवती यानी मनु की माँ को समझाते हुए बोलते हैं, देखो तुम ही उसको पैसे देकर बर्बाद कर दी हो, अरे अब कमाने की उम्र हो गई है और शादी की उम्र भी हो गई है। तभी रेवती बात को काटती हुई बोल पड़ी, अब आप कराना क्या चाहते हैं? जवान लड़का है, कहीं कुछ गलत कदम उठा लिया तो कहां मुंह दिखाएंगे हम? त्रिलोकीनाथ अपनी धर्मपत्नी की बातों को सुनते हुए दूसरे कमरे में चले जाते हैं। इधर मनु अपने दोस्तों के पास जैसे ही पहुंचता है तभी उसका दोस्त राघव उसका उदास चेहरा देखते हुए बोल उठता है, ये लो फिर मुंह लटकाए चले आए मनु साहेब। तभी बीच में उसे रोकते हुए रवि बोलता है, तो फिर शुरू हो गया? राघव, अरे भाई क्या करूं, मनु का ये उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता यार। तभी राघव बोलता है, मनु ही हर बार टीम को जिताता है, उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं, एक दिन बड़ा स्टार बनेगा अपना भाई। मनु चुपचाप बातों को सुन रहा था। मनु की इज्जत दोस्तों में काफी थी क्योंकि उसका क्रिकेट प्रेम उसे सबके दिलों में घर बना लिया था, लेकिन मनु की ये पहचान उसके घर वालों से कोसों दूर थी। उसके पिता चाहते थे कि जल्दी ही वो एक सरकारी नौकरी पा जाए तो घर का बोझ उन पर से कम हो जाए, लेकिन मनु नौकरी नहीं करना चाहता था। वो पढ़ाई में औसत दर्जे का छात्र रहा है, उसका सपना एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना था। उसके पर्स में कपिल देव, सचिन तेंदुलकर जैसे महान क्रिकेटरों की तस्वीरें हुआ करती थी, लेकिन वो ये बात कभी अपने घर वालों को बता ही नहीं पाया। हर बार बताने का प्रयास करता और हर बार की तरह बताने में नाकाम रहता। मनु की गर्लफ्रेंड रिया भी अब उससे कम लगाव रखने लगी थी। रिया मनु से मनाली और शिमला घूमने की बात करती तो मनु बात को काट कर दूसरी बात करने लगता। उसे पता था कि उसके पास पैसों की कमी है, वो उसके सपने को नहीं पूरा कर सकता था। धीरे धीरे रिया से उसका रिश्ता धुंधला हो गया। कुछ समय के बाद रिया की शादी भी हो गई। अब मनु काफी दुखी हो गया था और मनु को सरकारी नौकरी मिलते मिलते रह जाती। मनु 30 साल का हो चुका था, घर वालों से भी ताने सुन सुनकर तंग आ चुका था। पास पड़ोस के लोग भी अब ताने मारने लगे थे और कई बार शादी का रिश्ता भी टूट चुका था। जब भी लड़की वाले आते बेरोजगार समझ कर रिश्ता मना कर देते। धीरे धीरे मनु की मां भी अब मनु से कुछ नहीं कहा करती और पिताजी भी अब डांटने की बजाय मौन होने लगे थे। घर की खामोशियां बिना कुछ कहे सब

0: कुछ कह देती थी। इधर मनु के दोस्त भी क्रिकेट को छोड़कर अपने अपने जीवन में व्यस्त हो चुके थे। अब मनु बहुत अकेला और असहाय महसूस करने लगा था। अब कोई भी ऐसा नहीं रहा जो मनु के दिल की बातों को सुनता और समझता। मनु अब अपने जीवन से हार मानने लगा था। वो अब अपने गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए रेलवे पुल पर ज्यादातर समय बिताने लगा था। वो हिम्मती, जुनूनी और कभी ना हार मानने वाला मनु अब अपने आप को बहुत छोटा समझने लगा था। मनु की आंखों के नीचे काली झुर्रियां साफ बता रही थी कि अब उसे बेरोजगारी की चिंता उसे खाए जा रही है। अब उसके बड़े बड़े सपनों पर काले बादल मंडराने लगे थे। मनु अपने पिता की डांट सुनने को बेताब था, लेकिन उसके पिता भी अब खामोशी के चादर ओढ़ चुके थे। मनु उस रेलवे पुल पर नाटक के कलाकारों की तरह अपनी मौत का रिहर्सल करने जाता और फिर वापस चला आता। उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो पुल से कूद जाए। मनु अब मरने का पूरा इरादा बना चुका था। वो अब अपनी मौत का ग्रैंड रिहर्सल नहीं बल्कि फाइनल शो करने के लिए बिल्कुल पुल से कूदने वाला ही था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम नहीं मर सकते। मनु जैसे ही पीछे देखा तो एक बूढ़ा साधु कुछ दूर पर खड़ा था। वो साधु कुछ बोलता उससे पहले मनु बोल पड़ा, देखो पास मत आना, मुझे मुझे आज मरना ही होगा। बाबा, तुम्हारे माथे की लकीरें साफ बता रही हैं कि तुम नहीं मर सकते। मनु, अब मैं जीकर क्या करूंगा, अब जीने लायक मेरे जीवन में कुछ बचा ही नहीं है। बाबा, तुम्हारे जीवन में अभी अपार संभावना है मनु, तुम कुछ बड़ा करोगे। मनु, मनु आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बाबा, अब तुम चाहो तो मर सकते हो। मनु पुल की रेलिंग के पास से बाबा की ओर उनसे पूछते हुए उनके पास आता है। मनु बोलता है, बताइए ना बाबा जी, आपको मेरा नाम कैसे पता, क्या आप मुझे जानते हैं? बाबा, देखो न तो मैं तुम्हें जानता हूं और न ही पहचानता हूं। उनकी ये बातचीत चल ही रही होती है कि सामने से ट्रेन आ चुकी होती है। अब इन दोनों के पास कोई उपाय नहीं बचता, सामने ट्रेन और बगल होने के लिए कोई जगह नहीं सिवाय अब नदी में कूदने की। तभी बाबा बोलते हैं, मैं तुम्हें यहां पर कई दिनों से देख रहा हूं, तुम यहां पर आते हो और वापस चले जाते हो। तभी मनु बोलता है, आप तो कह रहे थे कि मैं मर ही नहीं सकता, इसका क्या मतलब? बाबा, देखो इसका सीधा सा मतलब है, इंसान पैदा ही होता है मरने के लिए। वो बातें मैंने इसलिए कही थी कि कहीं तुम पुल से सच में ना कूद जाओ। बाबा और मनु पुल के बीचों बीच बातें कर ही रहे थे कि सामने से पुल पर ट्रेन आ चुकी होती है। अब वो कहीं भाग भी नहीं सकते, अब या तो ट्रेन से टकराते या नदी में सीधा कूद जाते। मौत अब बिल्कुल करीब थी, ट्रेन आंखों के सामने आ चुकी थी। तभी एकाएक किसी की आवाज से मनु का ध्यान उस घटना से हटता है। अभी तक मनु जिस घटना के बारे में सोच रहा था वो उसका अतीत था। वर्तमान में वो अब एक प्रसिद्ध क्रिकेटर बन चुका था। क्रिकेट के मैदान में उसके नाम की गूंज हो रही थी। वो अपने पिता की तस्वीर को देखते हुए अपने अतीत में खोया हुआ था। तभी आवाज आती है, मनु सर चलिए आपकी पारी आ चुकी है। मनु तस्वीर को चूमते हुए पॉकेट में रखता है और बल्ले को उठाकर मैदान की ओर आगे बढ़ता है। अब चारों ओर एक ही शोर है, मनु मनु मनु मनु मनु मनु। मनु के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। सफलता देर ही सही, लेकिन उसे एक बड़ी सफलता मिल चुकी थी। मनु अब एक प्रसिद्ध क्रिकेटर बन चुका था। क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा ब्रांड बन चुका था मनु। ये सब उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति और कभी हार न मानने की जिद ने उसे वहां तक पहुंचा दिया था।
1: तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे कहानी जिद जीत की, जिसके कहानीकार थे महेंद्र कुमार कनौजिया। आइए अभी एक यू टर्न लेते हैं और सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गाना।

0: साथियों, अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट प्रेरणा पुंज का, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस की। इनकी दूरदर्शी सोच और कठिन संघर्ष ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी।
1: रास बिहारी बोस जी का जन्म 25 मई 1886 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और उस समय के सामाजिक हालात बहुत करीब से अनुभव किए। अपनी शिक्षा के दौरान भी वो क्रांतिकारियों के संपर्क में बने रहे और ये निश्चय कर लिया कि वो दमनकारी अंग्रेजी शासन को पुरजोर विरोध करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल में इन्होंने कई बार क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया और फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए वहाँ से भाग निकले और देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में हेड क्लर्क की जिम्मेदारी निभाने लगे। इस दौरान भी वो पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंस के फ्रीडम फाइटर्स के संपर्क में लगातार बने रहे।
1: साल 1905 में अंग्रेजों ने आज़ादी की लड़ाई को कमज़ोर करने के लिए बंगाल को दो टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन फिर भी उनकी मुश्किल कम नहीं हुई। इसीलिए साल 1911 में उन्होंने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का ऐलान कर दिया। रास बिहारी बोस ने भी ये डिसाइड कर लिया कि वो अंग्रेजी हुकूमत को इस बात का एहसास दिला देंगे कि महज राजधानी बदलने से भारतीयों के मन में जो आज़ादी के लिए प्रेम है वो कम नहीं होगा।
0: इसीलिए जब दिल्ली को राजधानी बनाने की खुशी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस निकाला जाना था, तब रास बिहारी बोस ने बसंत कुमार बिस्वास के साथ मिलकर वायसराय और उनकी पत्नी, जो कि एक हाथी के ऊपर बैठकर दिल्ली भ्रमण कर रहे थे, उनके ऊपर एक बम फेंक दिया। इस हमले में वायसराय को काफ़ी चोट लगी, मगर वो जीवित बच गए। इस हमले ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझा दिया कि भारतीय इतनी आसानी से अपने आज़ादी के हक को अलविदा नहीं कहेंगे।
1: फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान रास बिहारी बोस ने भारत में रहते हुए गदर आंदोलन में भाग लिया। इसे सफल बनाने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन यह आंदोलन नाकाम रहा और इससे जुड़े बहुत सारे क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। बोस ब्रिटिश फौज को चकमा देकर भाग निकले और साल 1915 में जापान पहुंच गए।
0: फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान और ब्रिटेन ये एक ही पक्ष में थे, इसलिए बोस कई

0: वर्षों तक नाम और जगह बदलकर जापान में ही रहे। इन्होंने वहाँ पर ऐसे लोगों से दोस्ती बढ़ाई जो एशियाई देशों पर यूरोपियन हुकूमत से नाराज़ थे, और 1918 में ऐसे ही एक परिवार की तोशिको सोमा से इन्होंने शादी कर ली।
1: बोस ने जापान की सरकार को भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का साथ देने के लिए राजी करने में अहम भूमिका निभाई। मार्च 1942 में टोक्यो में एक कॉन्फ्रेंस में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और इसकी सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन भी किया।
0: वो राज बिहारी बोस ही थे जिन्होंने आज़ाद हिंद हुकूमत का ध्वज डिज़ाइन किया, और सुभाष चंद्र बोस को ये ध्वज और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी की बागडोर सौंप दी।
1: साल 1943 में जापान की सरकार ने इन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया, जो कि जापान की सरकार द्वारा विदेशी मूल के व्यक्ति को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले राज बिहारी बोस जी का निधन 21 जनवरी 1945 को टोक्यो में हो गया।
0: साथियों, ये थे हमारे आज के प्रेरणापुंज, और आइए अब आपको सुनाते हैं एक प्यारा सा गाना।

तो दोस्तों, हम हर रोज़ अपने प्रोग्राम में Q&A सेशन भी लेकर आते हैं, और आज हम अपने जो हमारा कल का सवाल था दोस्तों, वो था कि सोलर कुकर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है

0: सोलर कुकर में सामान्यतः अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है। ये जो दर्पण होता है दोस्तों, ये सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर फोकस कर देता है, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है और खाना जल्दी पकता है।
1: और दोस्तों, हमारा आज का सवाल सुनिए, कौन सी ऐतिहासिक घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का तत्कालिक कारण माना जाता है? साथियों, आप अपना जवाब हमें हमारी ईमेल आईडी जो कि है yuvvaniald@gmail.com या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भेज सकते हैं।
0: और आप चाहें तो आप अपनी प्रतिक्रिया, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा या फिर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो इसी ईमेल आईडी और नंबर पर आप हमें सेंड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मुझे यानी ज्योति
1: और मुझे यानी आयुष को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

अभी युवा साथी अपना कार्यक्रम सुन रहे थे युववाणी। शिक्षा व्यक्ति में आत्मविश्वास भरती है, कठिन से कठिन परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करने की शक्ति प्रदान करती है। इसीलिए खुद शिक्षित बनिए, औरों को भी साक्षर बनाइए। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने वाले हैं। बस थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानीपूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को

0: जाने और उनके पुनर्वास के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करें। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय खेल प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा समूह के अध्यक्ष डॉ. शिल्पी साहू के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने बताया कि उन्होंने आधारभूत शिक्षा को मजबूत करने, शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख बनाने और भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर चर्चा की। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में तुहिन सिन्हा की पुस्तक नक्सल आतंक पर विजय का विमोचन किया। इस अवसर पर श्री शेखावत ने नक्सली हिंसा के विरुद्ध लंबे संघर्ष पर प्रकाश डाला और इसे समाप्त करने में सुरक्षा बलों और सरकार की सराहना की। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमरीका के विदेश मंत्री 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता आज से नॉर्वे के ओस्लो में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार 8:30 से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष और कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। शाम 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम होगा, जिसमें ग्रामीण भाई सुनेंगे रामलोचन सांवरिया से लोकभाषा कविता पाठ। शाम 7:31 पर डॉ. सुप्रिया पाठक की वार्ता सुनवाई जाएगी, हिंदी सिनेमा में स्त्री विमर्श का स्वरूप। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुजाता सिंह के गाए भजन और गीत सुनिए शाम 7:45 पर। रात 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक समारोह के संपादित अंश का दूसरा भाग। रात 8:30 कानून और हम, इस कार्यक्रम में सुनिएगा पंकज कुमार मिश्र से नेहा गुप्ता की बातचीत, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना। गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा सुनिए रात 9:30। रात 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में कमला बोस का ख्याल गायन प्रसारित किया जाएगा। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। खेल दर्पण कार्यक्रम होगा रात 10:00। इसमें आप सुनेंगे अर्जुन पुरस्कार विजेता जिम्नास्ट आशीष कुमार से सुंदरम तिवारी की भेंटवार्ता और हैमर थ्रो खेल चुनौतियां एवं संभावनाएं। इस विषय पर लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित एथलीट चंद्रोदय नारायण सिंह से भूपेंद्र मिश्र की बातचीत, प्रस्तुति अभयकांत तिवारी की होगी। कृषि जगत कार्यक्रम में 6:35 पर धर्मेंद्र कुमार सिंह से की गई बातचीत सुनिएगा, लाख उत्पादन का वैज्ञानिक तरीका। 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर आशुतोष मालवीय की वार्ता होगी, उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उमाडे का ख्याल गायन 7:30। दर्शन सिंह का क्लैरियोनेट वादन आप सुनेंगे 12:15। उस्ताद शाहिद परवेज का सितार वादन 10:30। नमस्कार प्रयागराज, ये कार्यक्रम होगा 8:45 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लक्ष्मीबाई राठौर के गाए भजन और गीत सुनिए 9:50 पर। अनिल कुमार के गाए भजन और गीत 7:45 पर किए प्रसारित होंगे। लोकमाधुरी कार्यक्रम में लहरी लाल जी यादव और साथी और सावित्री श्रीवास्तव के गाए लोकगीत आप सुनेंगे 10:05 पर। जगदीश यादव और साथी रेणुराज सिंह के गाए लोकगीत आप सुनेंगे 2:30। धरती के गीत कार्यक्रम में 5:00 सुनिए कुंवर सिंह और यादव और साथियों के गाए लोकगीत। पनघट कार्यक्रम होगा 1:15 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम 5:15 होगा, इसमें युवा साथी सुनेंगे करियर की बात। पंचायत घर कार्यक्रम में 6:30 ग्रामीण भाई सुनेंगे रामायण पाठ। 7:31 पर संस्कृत कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर निरूपमा त्रिपाठी की वार्ता, महाभारत से शाश्वती प्रासंगिकता। और गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशां का प्रसारण होगा 9:30। तो ये थे कल के कुछ प्रमुख कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। श्री विपिन त्रिपाठी पुत्र प्रमोद त्रिपाठी निवासी जैसावा पोस्ट हाथीगवां प्रतापगढ़ से सूचित करते हैं कि उनके भाई विनय त्रिपाठी दिनांक 14 अप्रैल 2026 से लापता हैं। उनकी आयु है 46 वर्ष, कद 6 फीट, रंग गोरा और चेहरा गोल है। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके मिलने की सूचना मिले कृपया इस मोबाइल नंबर पर सूचित करें। मोबाइल नंबर है 6307120388। मोबाइल नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए 6307120388।

रूपम यादव पत्नी राधेश्याम यादव थरवई देलूपुर जनपद प्रतापगढ़ से सूचित करती हैं कि इनके पुत्र शुभम उर्फ दीपक यादव दिनांक 22 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी आयु है 25 वर्ष, रंग गेहुआ और चेहरा सामान्य है। जिस किसी भी व्यक्ति को इनके मिलने की सूचना मिले कृपया इस पते पर संपर्क करें। पता नोट कर लीजिए, रूपम यादव पत्नी राधेश्याम यादव, ग्राम थरवई देलूपुर जनपद प्रतापगढ़। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, रूपम यादव पत्नी राधेश्याम यादव, ग्राम थरवई देलूपुर जनपद प्रतापगढ़। तो ये थी खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचनाएं। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।

कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, दिनांक 30 मई 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में महिलाओं के मानसिक रोग निदान और उपचार विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश कुमार पासवान। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे के बीच फोन नंबर 0532-2970462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 0532-2970462 और 0532-242-3649। आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं देशगान संवेद स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे देशगान समवेत स्वरों में। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर 6:20 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने पद्म पुरस्कारान् प्रददाति। प्रशासनेन उक्तं यत् सर्वकारः देशे पेट्रोलियम उत्पादानां सुगमतया आपूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रयतमानः अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन नीट परीक्षा पत्र लीक प्रकरणे केन्द्रस्य एनटीए सीबीआई इत्युभाभ्यां प्रतिक्रिया याचिता। अपि च भारत ऋतु विभागेन आगामिषु त्रिषु दिनेषु दिल्ल्यां उष्णतरङ्गस्य स्थित्यै पीतवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्तास्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे पद्म पुरस्कारान् प्रदत्तवती। पद्म पुरस्काराः देशस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारेषु अन्यतमाः सन्ति, यस्मिन् पद्मविभूषणः, पद्मभूषणः, पद्मश्रीः च अन्तर्भवन्ति। अद्य 26,000 वर्षे प्रथम नागरिक निवेश समारोहे राष्ट्रपतिना कलाक्षेत्रे अभूतपूर्व योगदानाय मरणोपरान्तं चलचित्र अभिनेतारं धर्मेन्द्र सिंह देओलं, वायलिन वादकं डॉ एन राजम वर्यं च पद्मविभूषण पुरस्कारौ, 6 पद्मभूषण पुरस्काराः, 58 पद्मश्री पुरस्कारैः सह 66 पुरस्काराः प्रदत्ताः। अवशिष्टाः पद्म पुरस्काराः पश्चात् नागरिक निवेश समारोहस्य द्वितीये चरणे प्रदीयन्ते। अस्मिन् वर्षे सर्वकारेण आहत्य 130 पद्म पुरस्काराणां घोषणा कृता अस्ति। सर्वकारः देशे पेट्रोलियम उत्पादानां सुगमतया आपूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रयतमानः अस्ति। पश्चिमेशियायाः वर्तमानस्थित्याम् अद्य नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीय संवादं सम्बोधयन्ती पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिवा डॉ सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे एलपीजी इत्यस्य शोधनागारस्य उत्पादनं प्रतिदिनं 50,000 टन परिमितं यावत् अस्ति।
1: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 196,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् भारतीय दूतावासः वाणिज्य दूतावासश्च भारतीय प्रवासीनां कल्याणाय निरन्तरं सम्पर्करतौ स्तः। श्री जायसवालः अवदत् यत् मंत्रालयः गल्फ क्षेत्रे बृहत् संख्यायां स्थितस्य समुद्रीय समुदायस्य

0: आस्ट्रेलियादेशस्य विदेशमन्त्री पेनी वोंगः जापानदेशस्य विदेशमन्त्री तोशिमित्सु मोटेगी अमेरिकादेशस्य विदेशसचिवः मार्को रूबियो च अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भविष्यन्ति। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अस्य सम्मेलनस्य अध्यक्षः भविष्यति। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् नेतारः प्राधान्येषु क्षेत्रेषु क्वाड सहयोगस्य प्रगतिविषये विचारान् विनिमयं करिष्यन्ति। वर्तमान उपक्रमाणां प्रगतिम् अपि च परस्पर चिन्ता विषयकान् अन्यान् अन्ताराष्ट्रिय विषयान् समीक्षितुं शक्नुवन्ति। भारत अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जापान देशैः युक्तः क्वाड संघः भारत प्रशांत प्रदेशे शान्त्यै सुरक्षायै स्थिरतायै च प्रमुखः समूहः उद्भूतः अस्ति। भारतं संघटनस्य वर्तमानस्य अध्यक्षस्य रूपेण अस्याः सभायाः आतिथ्यं करोति। भारत ऋतु विभागेन आगामिषु त्रिषु दिनेषु दिल्ल्याम् उष्णतरंगस्य स्थित्यै पीतवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। विभागस्यानुसारं राष्ट्रिय राजधान्यां दिवसस्य तापमानं 44-46 डिग्री सेल्सियस पर्यन्तं भवितुम् अपेक्षा अस्ति। आगामि दिनद्वयोः हरियाणायां चण्डीगढ़े पंजाबे बिहारे छत्तीसगढ़े मध्यप्रदेशे तटीय आन्ध्रप्रदेशे पूर्वी राजस्थाने झारखण्डे ओडिशायां तेलंगानायां पश्चिम उत्तर प्रदेशे च उष्णतरंगस्य स्थितिः यथावदेव भविष्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम सुनेंगे पंचायत घर।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: हाँ तो पन...

0: पंचो राम राम। हाँ भैया,
1: देखा भाई गर्मी बहुत पड़ता बा, लू चले लगी।
0: सही सही भैया,
1: तो ऐसा में यह है भाई कि खेती किसानी अपनी जगह पे मूल पहले जान बचाओ जरूरी बात है।
0: सही बात भैया, ऐसा लगता है जाकेट वोकेट निकाल ले का भैया, गर्मियों से बचे खाते, ठंडी तो बीत गई रही।
1: तो कहा मतलब भी बात है भाई, गर्मी से देखा कोनो भी मौसम है ओकर ताव तरक होता है।
0: हाँ भैया,
1: और ओकर एक मांग होता
0: है,
1: जो ताव तरक और मांग का पहचान ले ना भैया, तो बच बचाई जाता है।
0: सही बात है।
1: यहाँ पर कि अब सवेरे संध्या देखा तो जब दूर रहा तब निकले की जरूरत बाटे, अगर बहुत जरूरी न हो तब
0: बिल्कुल
1: ना है, तो दिन में भाई आदमी भागे जाए अब चाहे, अब दिन में आवे जाए क्या है तब कहते वहीं तो वहीं हिसाब से अपन ब्यौरा व्यवस्था रखें, छाता ले लें, अंगौछा ले लें, गोड़े में पनही जूता पहन लें, और भाई कोशिश ही रहा है कि पानी उनी पी के जाएं।
0: बिल्कुल सही कहन भैया, और हम तो ये कहा कि देखें जब अति आवश्यक हो, अगर किसान भाई देखा पंच भाई हमारे तहा काम ऐसा नहीं है कि बीत दोपहरिये में हमका बाजार जाए का है, हमारे तहा काम ज़्यादातर अगर खेती किसानी काम है खेते वाला, तो भैया सुबेरे संझा 4:30-4 बजे उठ गया सुबेरे, तो पूरा 7 बजे तक बढ़िया निपटा ला है, कभी संझा 5 बजे जुड़ाई गवा आराम से 7 बजे तक भैया खेते काम निपटा ला
1: है। उजाला रहा था। हाँ बात यह है भाई कि जैसे सब्जियन के खेती पंचहरे करे,
0: हाँ
1: तो सब्जी खेती चाहे लतेर वाली सब्जी हो, चाहे भाई चढ़ाव वाली हो, चाहे कोनो भी हो,
0: सही बात,
1: तो ओमा पानी की जरूरत पड़ता है।
0: हाँ
1: अब भाई बिजली बत्ती होते बाटे तो कहते सवेरे संझा पानी लगाओ, पेड़ों को जोड़ करे आराम करे।
0: सही बात है भैया,
1: धाम में अगर करबन भाई तो पेड़ झुलस जाते।
0: ये समय भैया सबसे बड़ा कष्ट यह है, अगर गलती से दोपहरिया भैया पानी लगाया तो पहली बात पौधा जो है पियर पड़े की समस्या तो उबे करी, जो मुरझुराए जाई है दोबारा कल पबो न करी है,
1: झुलस जाए,
0: झुलस जाई है।
1: मतलब ये बात है भाई कि खेती किसानी कभी मौसम के हिसाब से लेके चले जाए। दूसरी बात एक यह है कि भाई देखा चलो ब्याह बारात ना ही बाटे, मूल घरे दुआरे या कतहों पर प्रयोजन में खान पान बा, तनी देखे रहा है भाई बहुत तेल मसाला तली भुनी चीज
0: ई मौसम।

0: बचाव है
1: अरे
0: भैया।
1: हाँ, नुकसान कैसे करता था। यहाँ समझ पुरान पर पार्टी परंपरा रही है कि भाई शिखरन बाटई, शरबत बाटई या पना बाटई, समझता है ना।
0: हाँ
1: काहे का मतलब यह है, जो उनकी तरल पदार्थ है एकर सेवन पंचहरे करत रहे, हम सब करत रहे और सब सब स्वस्थ रहते रहे
0: ये
1: ना।
0: भैया देखा कितना बढ़िया अपन लोग कैसे खेती किसानी बा। इही मौसम में हमारा हरमंजी तैयार बा, खरबूजा तैयार बा, खीरा ककड़ी तैयार बा। मतलब पानी वाली चीज ऐसे भर भर के रखी है खा
1: और भैया
0: कायदे
1: वो है
0: से
1: अमृता है, समझता
0: अमृता
1: है ना।
0: है।
1: तो तेल मसाला कम खाएं, ताज़ा भोजन करें। हम एक बात और कही कि हसन भाई,
0: हाँ भैया
1: कि अगर पांच रोटी के भूख आए तो चार ही खाएं,
0: सही बात है भैया।
1: ज्यादा खाए से। और
0: हाँ
1: बस यमटा अगर खाया तो
0: हाँ
1: बड़ा नुकसान।
0: सही
1: तो
0: बात
1: चाहे
0: है।
1: लड़कियां हों, चाहे गदेला हों, कि चाहे बड़े बुजुर्ग हों, खान पान का ख्याल रखे। कहा एक बात अब पंच से कहा कि देखा हमरे तोरे पीछे भरोसा विश्वास पर गोरू बछेरू बनात है।
0: एकदम भैया
1: तो भाई गर्मी उन्हों को लागत, घाम उन्हों को लागत है,
0: और का
1: उन्हों को अच्छा भोजन चाहिए, ताज़ा चाहिए है। तो कहा कि मतलब ये बात भाई, कि सवेरे संध्या जब घाम ना रहे तब उनका टहरावा घुमावा, कतहु चरावे कहे तो घंटा दो घंटे के बड़े छोड़ दे, मन अनमन हो जाए उनका।
0: सही बात है।
1: दूसर बात यह है कि भाई ताज़ा उनका पानी पियावा, ताज़ा भूसा दे। और अगर चरी बाटे जैसे या कोनो हरा चारा खेत से लावत है तो इन एक सीधे खियाई दे। वो जहरीला हो जात भाई, उसका पहले पानी से तनी भिगोई दे, ठंडा कर लिया। जब उनमें से ये हो कि भाई
0: गर्मी कुल
1: गर्मी में
0: मिला के निकल
1: हाँ
0: जाए।
1: निकल गया है, तब उसका बाल कूट के पशुन कर दे, और वो दाना चूनी के साथ में।
0: बिल्कुल भैया आप सही कहा था। और ऐसे समय तो भैया देखा जैसे हम लोग कोशिश करी थी कि अगर दिन में लू चलत यह है, हवा बहुत तेज चलत यह है, तो हम लोग कोशिश करे थे कि भैया खुले में ना रही, जब सीधी हवा भैया हमारे सभी के न ला गए। यह प्रयोजन अपने
1: बदरी
0: गोरु जन
1: भैया
0: करे
1: बहुत
0: चाहिए।
1: बड़ी बात कही गया करे, पीछे का संदेश कहा बाटे कि
0: हाँ
1: जब खेत खाली होते हैं मौसम में
0: हाँ
1: तो तब याद आवत कि भाई पेड़ लंगड़ा पेड़ रहा तो वहाँ बागी
0: सही
1: रही है, तो वहाँ
0: बात है।
1: बगीचा रहा, आज ना आज बैठे
0: हाँ
1: बचपन से लेके आज तक याद करा,
0: सही
1: बड़ी बड़ी
0: बात
1: बाग कट गई या खराब हो गई।
0: सही
1: तो
0: बात
1: कहा कि
0: है।
1: मतलब बाबा भाई यह समय बाटे जबकि पेड़ पालो लगावे के बड़े मने चिन्हीकरण करत है, रेखांकन करत है, और वहाँ हिसाब से गड्ढा खोदत है, समझता
0: बिल्कुल
1: ना। तो गड्ढा खोद के छोड़ दी जा, जब बारिश शुरू हो तब भाई चिन्ही कर रहा था कौन कहाँ पेड़ लगावे की बाटे। सबसे बढ़िया ही बाटे कि माटी की जांच करा ली। साथ ही साथ भाई तमाम पेड़न में खास तौर पे आम के जो पेड़ है या कटहर का है, एहमा दीमक लागे की बहुत संभावना रहा। तो यहाँ
0: सही
1: सम
0: कहें
1: यहाँ गर्मी में अगर गड्ढा खोद के छोड़ दी जाए तो दीमक उमक खत्म हो जाते हैं।
0: सही बात है।
1: तो कहा कि मतलब ये बात भाई कि सिर्फ यही ना है कि पेड़ ना ही बाटे, छाँव ना ही बाटे, काहे बड़े ना बा, और ना आया है तो भाई भर ओकर पूरा करा। तो पेड़ पालो लगावे के भी शुरुआत यहीं से हो सकत
0: सही
1: है।
0: कहा था भैया। देखें आप बीमारी जैसे भैया बात करें, देखें आमे वगैरह की बीमारी भय तो करे बड़े बताएं कैसे गड्ढा वगैरह खोद दें भैया। इसमें देखें इंसानों को बड़ी बीमारी है समय चलती है।
1: हाँ हाँ
0: और भैया देखा बीमारी जब आवत है ना भैया, तो जो 4 पैसा अपने बजट से बचाए बचाए मने किसान भाई रखे रहा था,
1: सही बात है।
0: एक्के दाइम भैया जात और अस्पताल में सब दही आवत है।
1: अस्पताल में दिया होता भैया फिर परेशान हो, तो पूरा परिवार
0: हाँ
1: परेशान होता।
0: सही
1: तो
0: बात
1: कहे
0: है।
1: का मतलब ये बाटे भाई कि आपन भी ख्याल रखें, पशु प्राणी का भी ख्याल रखें, खेती किसानी का भी ख्याल
0: बिल्कुल।
1: रखें।
0: और भैया अगर ही जैसे आर्थिक समस्या से बचे कहा है, तो देखें एक ठू भैया सरकार बहुत अच्छा आयुष्मान कार्ड योजना लेके आए बा
1: हाँ
0: भैया,
1: हाँ हाँ
0: जेका हम लोग बहुत बढ़िया ओका देखें नाम रखे हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना।
1: हाँ
0: अब भैया देखें कि अगर आप एक ज़्यादातर किसान तो भैया हमारे सबके जैसे जो उन किसान है भैया, या तो मध्यम वर्गीय या कहे कि बहुत छोटा किसान है,
1: हाँ जी
0: उनके लिए अगर देखें भैया बीमार हो जाता है तो अस्पताल का खर्चा उठाए पाओ बड़ा मुश्किल होता है।
1: बहुत बहुत कठिन बात है।
0: और भैया अगर यह आयुष्मान कार्ड बनवाए लेते हैं किसान भाई, तो समझा भैया कि अगर गंभीर बीमारी में सरकार 5 लाख रुपया तक का भैया मदद कह देते
1: अरे
0: हैं।
1: भैया देखा 5 लाख, और अब लगभग हर अस्पताल चाहे बड़ हो चाहे छोट हो चाहे सरकारी हो चाहे तक जेका प्राइवेट कहते हैं,
0: हाँ
1: कुल जगह तो आयुष्मान कार्ड से इलाज हो ही रहा
0: हाँ
1: बाटे।
0: भैया
1: और हम एक पैसा किसान का लागत नहीं भाई,
0: बिल्कुल,
1: वहाँ 5 लाख तक में उनका इलाज हो जाता
0: पूरा कैशलेस है भैया, मतलब
1: हाँ।
0: तो का रुपया खर्चा नहीं करे, कहे सारा इंतजाम तो का सरकार कर
1: तो
0: दी।
1: कहे का मतलब ये बात है, पंचन का यहाँ सब योजना का लाभ लेके चाहिए। और एक बात अब पंचन से कहे कहे कि भाई देखा अगले टूर में का बोब्या का कर ब्या, ओकरे पहले माटी का जांच करा ले, खेत खाली बाटे,
0: सही बात
1: चार
0: है।
1: पांच जगह से ओकर नमूना उठाए के ले जाए के ब्लॉक स्तर पर, कभों कहों तो गाँव में आ जात है सब, तो मूल ओकर इंतजार न करें, ले जाए के ब्लॉक पर दे के माटी का जांच करा ले, तब अगले टूर का तैयारी करें।
0: सही बात
1: और हम कहा
0: भैया।
1: बद्री भैया
0: हाँ
1: देखा आज एक ठीक कार्यक्रम बाटे लोक भाषा कविता पाठ कर,

0: अच्छा
1: तो
0: भैया।
1: राम रूतन सांवरिया भैया गांव का कुछ चल रहा बाटे बताई हैं।
0: अच्छा
1: उन लोग पहले हम कहा देखा धीरज कुमार संघातिन का गावा विकास गीत बाटे
0: अच्छा
1: हो
0: भैया
1: जाए फिर बत कही हुई।
0: बिल्कुल भैया सुनाओ।

0: हाँ भैया
1: हाँ
0: देखो
1: भैया
0: गाँव नहीं रही है, पंचायत थाने सो सुनन।
1: हाँ भैया
0: अब बद्री जोन बात हो तो इन भैया की लोक भाषा कविता पाठ कदिर बाटे,
1: अच्छा भैया
0: राम लोचन सामरिया
1: हाँ
0: है भैया, देखा इनका बड़ा नाम रहा बाटे, बड़ा लोक कलाकार रहा है
1: सही
0: ये,
1: बात है भैया।
0: हैं तो इनसे सुना जाए भैया।
1: हाँ हाँ बिल्कुल भैया सुनाओ।
2: हाँ भैया, आज के हमारी कविता जौन बा प्रभु का प्रभुताई पर बा कि भारत

भाई त सांवरिया दुख दूर करई भजू राम क नाम महा सुखदाई। सांवरिया दुख दूर करई भजू राम क नाम महा सुखदाई। हाँ तो भैया, राम का नाम एक महान औषधि है, तो उहीं पर हमारी आगे का कविता बा। महायौषधि राम रसायन, महायौषधि राम रसायन, जेहि का भजे मिलैया राम। तीनी लोक चौदहौ भुवन मा जहाँ देख तहाँ रामई राम। तीनी लोक चौदहौ भुवन मा जहाँ देखई तहाँ रामई राम। राम भगत हनुमान चेतायनी, राम भगत हनुमान चेतायनी, रामई नाम जगत आधार। यही ते पहिले निपंचायित मा कुल पंचन के राम जुहार। यही ते पहिले पंचायित मा कुल पंचन के राम जुहार। बढ़ई पाप तउ भुइया डोलई, असुर मचावई अत्याचार। बढ़ई पाप तउ भुइया डोलई, असुर मचावई अत्याचार। औ जाई सतावई।

साधु संत का दुख देई नाना प्रकार, जाई सतावई साधु संत का दुख देई नाना प्रकार। देउथानन मां करई गंदगी, देउथानन मां करई गंदगी, जौ बोलई तौ झूठी लबार, मारई काटई लूटई फूकई, मारई काटई लूटई फूकई, करई और तन से व्यभिचार, करई और तन से व्यभिचार, करई पुकार दीन दुखिया जऊ, करई पुकार दीन दुखिया जऊ, धरती लागई गऊ गोहार। जब जब धर्म परई संकट मा, तब तब राम लेई अवतार, जब जब

रसायन जहिका भजे मिलैया राम। तीन लोक चौदह भुवन मा जहाँ देखौ तह रामई राम। तरघुबंसिन कई राजी अयोधिया, रघुबंसिन कई राजी अयोधिया, जग जाहिर जे करे इतिहास। वही कुल जन में राजा दशरथ, तीन

सुमित्रा तीनौ रहिनी बिना संतान जस पुरबुज कै रही कमाई ओइसे विधि क बना विधान जस पुरबुज कै रही कमाई ओइसे विधि क बना विधान चौथे पन राजा के घर मा चौथे पन राजा के घर मा प्रगटे निरंकार भगवान चारि पूत रघुकुल मा जन्मे चारु बड़े वीर बलवान चारि पूत रघुकुल मा जन्मे चारु बड़े वीर बलवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानै जहिका सकल जहान लिखेनी रामायण बाल्मीक कवि तुलसीदास केहनी गुणगान लिखेनी रामायण बाल्मीक कवि तुलसीदास केहनी गुणगान जहाँ अयोध्या उहाँ राम है जहाँ अयोध्या उहाँ राम है उहाँ भगति के तीरथ धाम तीन लोक चौदह भुवन मा जह देख तह रामै राम तीन लोक चौदह भुवन मा जह देख तह रामै राम महाऔषधि राम रसायन जहिका भजे मिलैया राम तीन लोक चौदह भुवन मा जह देख तह रामै राम जनक राज के परनपुर कई सीतापति कहाँ राम जनक राज के परनपुर कई सीतापति कहाँ राम माई बाप

ठुकराई गए निबन बड़िया दरस देखाए नी राम। लंका जाई रावण नहीं मारनी खल मंडली मिटाए नी राम। लंका जाई रावण नहीं मारनी खल मंडली मिटाए नी राम। जूठी बैर खाई से बरी कई जूठी बैर खाई से बरी कई दलित प्रेम दर्शाए नी राम। पशु पंछी का गरे लगाएनी पशु पंछी का गरे लगाएनी पर्यावरण बचाए नी राम। पशु पंछी का गरे लगाएनी पर्यावरण बचाए नी राम। मर्यादा पुरुषोत्तम बनके मर्यादा पुरुषोत्तम बनके एक नारी अपनाए नी राम। मायावी मिर्गा के मारनी राम राज लैयाए नी राम। मायावी मिर्गा के मारनी राम राज लैयाए नी राम। वही का दर्शन देई राम जी वही का दर्शन देई राम जी भक्ति भाव जेहि के निष्काम। तीन लोक चौदह भुवन मा जह देखौ तह रामई राम। तीन लोक चौदह भुवन मा जह देखौ तह रामई राम। राम रसायन महा औषधि जहिका भजे मिलैया राम। तीन लोक चौदह भुवन मा जह देखौ तह

थापेनि धर्म ध्वजा फहराय औ कारज कई बैकुंठ गए नितौ द्वापर क युग पहुँचाय कारज कई बैकुंठ गए नितौ द्वापर

बहिनी बहनोई देह सिजहल माँ बंद कराई, आपन बाप बहिनी बहनोई देह सिजहल माँ बंद कराई। जलिया माँ वसुदेव देव की, जलिया माँ वसुदेव देव की, रामई नाम रहनी गोहराई। उहई राम पुनि बाल रूप माँ, उहै राम पुनि बाल रूप माँ, जहन जन्म लेहनि जे हल माँ जाय। उहै राम पुनि बाल रूप धरी, जन्म

कंदी छोड़ाए नी, कहन की गोकुल दा पहुंचाई। नंद जसोदा के घर खेलनी, नंद जसोदा के घर खेलनी, मार निखल ही बोलाई बोलाई। गुरु संदीपन नाउ धरायनी, काले कृष्ण चंद घनश्याम। गुरु संदीपन नाउ धरायनी, काले कृष्ण चंद घनश्याम। तीन लोक चौदह भुवन माँ, जह देख तह रामई राम। महा औषधि राम रसायन।

0: राम रसायन जहिका भजे मिलैया राम। तीन लोक चौदह भुवन मा जह देख तह रामई राम।
1: हाँ भैया,
2: ये तो राम लोचन सांवरिया का भाई कविता पाठ भी पंचरे सुने न।
1: हाँ भैया,
2: भाई देखा भगवान राम का कितना बढ़िया चरित्र चित्रण करें, कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम वो कहलायन।
1: सही बात,
2: का कुछ उनका कार्य व्यवहार रहा, परिवार के प्रति।

0: गीता पाठ ही पंचरे सुने न।
1: हाँ भैया।
0: और भाई देखा भगवान राम का कितना बढ़िया चरित्र चित्रण करें कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम वो कहलायन।
1: सही बात है।
0: कुछ उनका कार्य व्यवहार रहा परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तो इससे पंचन का सीख ले चाहिए। और हम कहा भाई देखा एक बात पंचन सी कहा कि पंचायत घर कार्यक्रम में का कुछ कार्यक्रम बना था, कैसे जात है, ऐसे सबसे तो पंचरे परिचित है ही हैं। मूल ओकरे साथे साथ उनका का कुछ और सुनाई जाने के बाद का सूचना चाहिए, का कुछ उनका सुझाव बाटे, तो हम कहा भाई उनका सुझाव के माध्यम से व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से वो अपन विचार भेज सकते हैं, उनका कार्यक्रम में सम्मिलित करने के प्रयास की जाए ताकि उनका समुचित जवाब मिल सके।
1: बिल्कुल भैया, कहे कि देखा हम लोग भैया आपन बात तो कह दीन, लेकिन जब तक दोनों तरफ से बात न हो जाए तब तक बात पूरी नहीं हो। अब आपका कैसे कार्यक्रम लगा, आप का सुने चाहता है, आप का बदलाव चाहता
0: है,
1: जरूरत का है। मान लेते आपको मन है भैया धान का फसल तैयार करे का है, अगर पहले बेहन डावे का है, अब आप चाहता है कि कोनो ऐसे विशेषज्ञ के बुलावा जाए कि जो बता सके कि भैया धान का नर्सरी कैसे लागत है, तो हम भैया फिर प्रयास कीन जाए कि आपका एक विशेषज्ञ बुलावा जाए। अगर आप संदेशा भेजा था व्हाट्सएप पे तो बुलावा जाए, बिल्कुल सुनवावा जाए आपका।
0: हाँ तो ऐसे भाई कह रहे कि हम लोग तो हर मन लगा रहे कि भाई देखा किसान है अपन पाती लिखाता है।
1: हाँ।
0: पहले चिट्ठी पाती रही है, वो का दूसरा भाई रूप बाटे।
1: हाँ।
0: तो पंचरे का सब विचार करें और कार्यक्रम से सीधे सीधे जुड़े। तम कहा दे भाई उकरे बड़े कोनो नंबर बाटे ना बोलते।
1: हाँ हाँ भैया देखा नंबर लिख लें 800-4926-2500। नंबर एक बार भैया और नोट कर लें, 800-4926-2500।
0: तो यह तरीके से पंचायत कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं।
1: एकरे अलावा और भैया देखा अगर उनके पास मोबाइल बा तो दुई माध्यम है, एक तो व्हाट्सएप से जुड़ी गए, एक भैया आकाशवाणी प्रयागराज के नाम से फेसबुक पेज बना है।
0: हाँ।
1: और वो फेसबुक पेज पे सारे कार्यक्रम जितना आकाशवाणी पे कार्यक्रम चलत हैं उस सब के बारे में जानकारी बा, और पंचायत घरों के बारे में हुआ जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप चाहा तो हुआ कमेंट करा और कमेंट भी हमका मिल जाएगी कि आप का चीज़ चाहता है और का बदलाव चाहता।
0: हाँ तो वह तरीके से भाई कार्यक्रम का रूपरेखा भी बन सका।
1: हाँ
0: तुम कहते पंचन का भाई का सुनय गुनय और व्यवहार में उतारें।
1: बिल्कुल भैया।
0: एक बात और कि भाई देखा पंचरे अब खरीफ धीरे धीरे तैयारी करी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बेहन डाबे के बारी बात भाई करे बड़े देखा चार पांच चीज हम कहा बद्री पंचन से विचार विमर्श कर लीन जाए। पहली बात ये हो तो कि भाई कितना रकबा में लगाऊ गया,
1: हाँ
0: कौने प्रजात का लगाऊ गया,
1: बिल्कुल
0: प्रजात का बिया बिसार तोहरे पल्ले बाटे कि बाजार से ले बा।
1: हाँ
0: सब बता ना, अब बाजार से ले बा तो गुणवत्ता का रहे,
1: हाँ
0: शोधित बाटे कि ना शोधित बाटे। और फिर ओकरे बाद भैया अच्छा उमा हो एक बार जरूरत यह बात कर रहा था कि पहले ओकरे साथ में कृषि कर्म की जाए, शोधित कर लीन जाए, साथे साथ ओका पहले 24 घंटा पहले 20 घंटा पहले भिगोई के रख दी जाए,
1: बिल्कुल
0: छान के ओकरे बाद ओका बूरा से टाट के बूरा से ढाक के रखा जाए बिया का, तो होत का अंकुरित हो जाए तो जल्दी जमत है।
1: बिल्कुल।
0: और दूसरी बात यह है कि भाई बाद में वहाँ बेहन का वहाँ नर्सरी के खेत से उखाड़े में ओकर जड़ टूटे के संभावना कम रहा
1: कम रहा था।
0: तो अब नर्सरी के जो भाई कम क्षेत्र में नर्सरी डाला जाता है बड़े खेत में लगावा जाता
1: सही है।
0: मूल नर्सरी के खेत का तैयारी ऐसा होनी चाहिए कि बहुत मजबूत हो, ओमा गोबरे का खाद, कंपोस्ट का खाद या
1: बिल्कुल
0: खाद है एक कुल का क्रियाकर्म करेगी है, तो ओका खेत तैयार करें, बिया बिसार का चयन करें, प्रजाति का चयन करें। और मान लें अगर जैसे कई पंचरे ऐसा ना है कुछ हो, भाई मोट महीन कर रहे थे कि इतना हम बाजार में बेचब, इतना घरे बजे रखब या इतना ऐसा कर,
1: सही बात
0: समझता ना, तो ओकर पहले पहचान कर लें, जरूरत अपन देख लें, और अलग अलग भाई तो खेते में अलग अलग कियारी में तो नर्सरी डामें,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: नहीं तो सुमेर मिलवा हो जाए तो दिक्कत हो, ये पता चला एक फसल पाक के बाटे
1: सही
0: और
1: बात
0: सरकारी
1: तैयार है। एक चीज और सुमेर भैया मैं कहा कि देखा धान लगाव में बड़कई तब यह है जब आप किया भैया पानी को सुलभता हो। अभी जरूरी नहीं देखा सरकारों भैया एक बहुत प्रयास करती है कि धान का खेती हुआ करें जहाँ पे आपको पानी सुलभ हो। अगर आप ऐसी खेती करता है जहाँ पे मौसम एकदम विपरीत रहा था तब भैया न सिर्फ पानी का अत्यधिक दोहन हुई बल्कि ओकर पैदावार घट जाई,
0: पैदावार घट जाए भाई और दिक्कत अलग से आवत
1: अलग से आवत।
0: अच्छा ओहू में भाई एक रास्ता ही बाटे कि अगर लगवाहीन किया है
1: हाँ।
0: तो कुछ प्रजाति ऐसे ना है जिनका
1: कम दिन में
0: कम है।
1: हाँ, पानी कम लगा तो कम दिन में
0: कम दिन में
1: हाँ।
0: होता तो कहा मतलब ही बाटे, यह तरीके से पूरा एक जो रणनीति

0: कहा जा रहा था ना, एक आप बनाए ली का है, अगर ना ही जानकारी है तो हम कहते भाई देखा आकाशवाणी के माध्यम से और जो संचार का माध्यम है उनके माध्यम से जानकारी ले सकते हैं पंच हरे। एक बात देखा बद्री और कहा कहा पंचन से कि जब गर्मी आवत है, जब पानी का स्तर जल स्तर कम हो तो भूमि स्तर कम हो था, तब पंच के याद आवत है कि यार जब पानी खूब रहा तो बहा दिया हम, जब पानी खूब रहा तब एम्बुर उम्बुर खराब हो दिया।
1: बिल्कुल।
0: तो कहा मतलब ये बाटे भाई गर्मी के बहाने ताल तलैया जो पहले गांव रहा था उनका साफ सफाई कराए दिए ताकि बारिश हो तो वहाँ पानी इकट्ठा हो सके।
1: सही बात है।
0: बाद में मोटर बैठा के खेत सींच सकत है। अब जब आस पास ताल तलैया में पानी रहा ना तो जल स्तर भी भैया बना रहा था।
1: बिल्कुल सही कहन भैया। और देखे हमका तो अपने बचपन के याद आए कि तब आज के समय में तो मान लें जब मनरेगा योजना आए गए ओकरे बाद तो सरकार एक पूरा रणनीति के तहत खुदाई शुरू कराए दे। पहले का करते रहे कि गांव भर का पूरा मोहल्ला का मोहल्ला टोला का टोला इकट्ठा होए और सुबेरे संजय श्रमदान कह दे,
0: श्रमदान दे,
1: नाला खोद डाओ है, तालाब बनाए डाओ है।
0: तब तो भाई आज वह देखा है सवाची जरूरत बाटे।
1: हाँ
0: तो बद्री ये देखा थाती बाटे, अगर एक थाती के बनाए रखी है तो आने वाली पीढ़ी का इतना तकलीफ ना हो। दूसरी बात एक यह है भाई जो पुरान कुआं इना रहा है उन्हों का अपन तई देखे सवाचे रखें,
1: सही बात है,
0: बड़ा मतलब निकलत होकर। तीसर बात यह है भाई कि गर्मी में अगर आसपास में खरपतवार जमा है वो तो का जहाँ हैंडपम्प लगा है आसपास धूप का या और तमाम खरपतवार जाम जात है और वो में पानी जाए फंसा था तो मसा माछी पैदा होते। दूसर बात यह है पानी जिसके अंदर जात है तो वो का भाई साफ सफाई रखें, सूखा पर रखें। तो यह तरीके से पंचरे कर कार व्यवहार करिए ना तो भाई उनका सेहत भी बना रहे, पानी का उपलब्धता भी।
1: बिल्कुल भैया। और ये सब कुछ देखा है मानसून आवे से पहले पहले अगर आप तैयारी कर लेता है तो जान लिया कि आप मानसून में जोन बारिश आवे वाली यानी जोन पानी बरसे वाला है ओकर प्रबंधन जोन सरकारों चाहा था। और हमारे बूढ़ पुरनिया कह गए कि बारिश को पानी भैया अरे बचाया इकट्ठा कराया तो उस सारा काम ही से भैया सफल हो जाए।
0: हो सकता था हम कहते देखा भाई सरकार तमाम योजना अभी चलते बाटे तो ओकर लाभ लें पंच हरे, बारिश का पानी कैसे बचाओ जा सकता है, जल स्तर का कैसे व्यवस्थित की जा सकता है। और हम कहा भाई कि कुछ और बात कही हो देखा गौनई बाटे ही।
1: अच्छा भैया।
0: हाँ रंजीत कुमार और संघातिन का विकास गीत पंच हरे सुन ले फिर बात कही हो।
1: बिल्कुल भैया सुनो।

0: हाँ
1: भैया
0: भैया।
1: देखा बद्री, ये तो गाँव नहीं रही है मलमास का। तो भाई देखा मलमासम मलमास या पुरुषोत्तम मास चल तो बाटे। हम कहा पंचन के भाई देखा एक जानकारी और दी जाए कि आज गंगा दशहरा बाटे। तो
0: हाँ
1: भाई धरती पर कहा जाता देवी तो नहीं आए,
0: सही
1: जो
0: बात है,
1: साक्षात दिखाई पड़ती हैं,
0: सही बात
1: ऊपर
0: है।
1: सूरज भगवान नीचे गंगा
0: गंगा
1: माई।
0: माई
1: तो भाई गंगा माई के महात्म्य हमारी बात है कि कहा जाता कि पाप धुल जाता सब मूल पाप धोए में, यह भाई पाप ही धोए ना, स्नान करें उनका सम्मान भी करें।
0: बिल्कुल
1: इनायक वहाँ गंदगी डावत है भाई, मारा गोरु बछेरू डावत है, या घरे को कूड़ा करकट डावत है, तो कतहूँ कतहूँ बाधित होती हैं वो।
0: सही बात है।
1: तो भाई गंगा दशहरा का महात्म तब बाटे जब गंगा के साथे महतारी के नाय व्यवहार कर बात
0: का बात है
1: तब बाहर
0: भैया,
1: कल्याण करी है वो।
0: सही बात है।
1: तो यही के याद करे बड़े देखा भैया साल दर साल यहाँ पे माघ मेला भी लागत है। तब तो पंचरे आवाई नहाए उनका पूजन अर्चन करें, साथे साथ एक संकल्प भी लें कि हमका गंगा जी का अविरल रखा का है और उनका स्वच्छ रखा का है।
0: बिल्कुल भैया, और गंगा जी एक संदेश देते हैं भैया कि देखा, नदी होए, पोखरा होए, नाला नाली होए, कहूँ भी जाता है, और हमरे किया देखा भैया, ये बड़े बड़ा सम्मान हर चीज़ के दे दिन कि पत्थरों रखा है तो का भगवान बनाए देन, पेड़ है तो का कहन भगवान है, मां पूजा जाता है, हर चीज़ में भारतीय संस्कृति और भारतीय जोन सनातन परंपरा के साथ दर्शन है, वो
1: हाँ
0: हमका इतना बढ़िया शिक्षा देते भैया कि आप हर चीज़ में जोन चीज़ आपको दृश्य है वो आपके आत्ममंथन करे बड़े मौका देता और आत्मचिंतन करे बड़े मौका
1: तो
0: देता।
1: कहा ये भाई सही भी बात है कि जितना भी यहाँ जीव हों कि पेड़ पक्षी हों कि पहाड़ हों कि नदी तालाब हों, सबका जीवंत माना जाता वहीं तरीके

0: से पूजा जात कार व्यवहार होता है। तो कहा कि मतलब ये बाटे भाई कि गंगा जी का मान्यता और बढ़िया हो सकता था जब उनका अविरल रखा जाए, स्वच्छ
1: बिल्कुल
0: रखा जाए। तो भाई यह कुल अब आज गंगा दशहरा के दिन बाटे, आज ये कहा जात कि माई गंगा दस अवतरित भर रही है,
1: सही
0: शब्द
1: बात
0: था
1: है
0: ना
1: भैया।
0: भगीरथ जी के तपस्या से। तो भाई धरती का कल्याण करके बया रहे, एक देखा बहुत बड़े क्षेत्र में इनसे सिंचाई भी हो, तो पानी भी मिलत था सबका। और भाई अगर प्रकृति में पेड़ पालव न हो, नदी तालाब न हो, पहाड़ न हो, तो संतुलन खराब हो जाता।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो सबका सम्मान करे का है भाई, सबका आगे बढ़ावे का है। ओकरे बजे सबसे जरूरत यह बात के बाटे कि सामाजिक जागरूकता चाहिए और वहाँ जागरूकता के हिसाब से कार्य व्यवहार चाहिए।
1: बिल्कुल
0: तो
1: भैया
0: भाई यही अरदास, पंचन बदल जाए, अच्छा पंचो
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे पंचायत घर, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुने। श्रोताओं, हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। इस बार का विषय होगा तंबाकू सेवन से होने वाले रोग और उनका उपचार। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगी शहर प्रयागराज की प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनिया तिवारी। आप अपने प्रश्न दिनांक 27 मई 2026 को सायं 3 बजे से 4 बजे तक फोन नंबर 0532-297462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 0532-297462 और 0532-242-3649। सूचना समाप्त हुई।

0: एहसास की धूप छाओ में हवाओं के संग गूंजती है दिशाओं में रेडियो की तरंग। जुड़िए 1026 किलोहर्ट्ज और 100.3 एफएम आकाशवाणी प्रयागराज के साथ धड़कन हर दिल की।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। एक सूचना सुनिए श्रोताओं, दिनांक 30 मई 2026 को प्रसारित होने वाले सजीव हेलो पनघट कार्यक्रम में महिलाओं के मानसिक रोग निदान और उपचार विषय पर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे मनोचिकित्सक डॉक्टर राकेश कुमार पासवान। आप अपने प्रश्न दोपहर 1:15 से 2 बजे तक फोन नंबर 0532-2970462 और 0532-242-3649 पर पूछ सकते हैं। फोन नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए, 0532-2970462 और 0532-242-3649।

आप अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 8004926250 पर भी भेज सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जबकि अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 अन्य लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 121 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों आज 66 लोगों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश से आज 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: डॉक्टर श्रीमती एन राजम, कला वायलिन।
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ककराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
2: श्री प्रवीण कुमार, खेल एथलेटिक्स दिव्यांग।
1: शीर्ष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार किया। उनके साथ उनकी पत्नी और उच्च प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहा। आगरा पहुंचने पर उनका स्वागत जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करीब 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया, साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास, निर्माण और पच्चीकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्मारक की खूबसूरती की जमकर प्रशंसा की। श्री रूबियो ने विजिटर बुक पर इस इमारत की खूबसूरती देखने का अवसर दिए जाने पर आभार जताया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 101.89 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए

0: भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की सूची में मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से श्रीचंद शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं बरेली मुरादाबाद शिक्षक सीट पर डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लों को प्रत्याशी बनाया गया है। लखनऊ में स्नातक सीट पर अवनीश कुमार सिंह जबकि शिक्षक सीट पर उमेश द्विवेदी को मैदान में उतारा गया है। आगरा की स्नातक सीट पर डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह पार्टी प्रत्याशी होंगे। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों और पावन नदियों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। फर्रुखाबाद में भी गंगा दशहरा के पावन पर्व पर श्रद्धालु गंगा तट पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। जिला प्रशासन ने गंगा तट को 4 सेक्टर में बांटा है। गंगा नदी में 50 नाव और करीब 50 गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भी आसपास के जिलों और राज्यों से लोग गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में सभी प्रमुख घाटों पर भोर से ही भक्त गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा दशहरे के पावन पर्व पर श्रद्धालु त्रिवेणी संगम सहित रामघाट दारागंज और वीआईपी घाट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस पवित्र पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए कल रात से ही आसपास के जनपदों और राज्यों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। भक्तों ने गंगा यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर प्रार्थना दान और भेंट अर्पित कर समृद्ध और खुशहाली की कामना की। भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान होंगे। इस अवसर पर भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराने के साथ 56 भोग लगाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने 6 मंदिरों की स्थापना हुई थी, जिसकी कल पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
0: प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी है। बीते 24 घंटों में बांदा 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश के सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। वहीं झांसी, प्रयागराज, जालौन, उरई, आगरा और हमीरपुर में पारा 45 डिग्री के पार रहा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अमरोहा में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने हीटवेव से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए हैं।
3: जिले के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ORS घोल को सभी आशा वर्कर के माध्यम से गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है और यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए तत्काल इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।
0: तेज गर्मी के मद्देनजर वाराणसी में जिला प्रशासन ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में अर्बन हीट एक्शन प्लान को सक्रिय कर दिया गया है ताकि बढ़ते तापमान के प्रभाव को कम किया जा सके।
4: 42-43 डिग्री से ज्यादा जो है वो टेम्परेचर चल रहा है, उसके दृष्टिगत जो अर्बन हीट एक्शन प्लान है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। विद्यालयों में भी चोटियां कर दी गई हैं, जो चौक चौराहे हैं जहां पे ट्रैफिक लाइट है, जहां पे ट्रैफिक में लोगों को मोटरसाइकिलों पे वेट करना पड़ता है, वहां पे भी शेड के लिए ऊपर से कवर किया गया है। वो अलग अलग जगहों पे कोल्ड रूम्स बनाए गए हैं। जो CHC PHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पे कोई हीट स्ट्रोक का अगर पेशेंट आता है तो इमीडिएटली उसके लिए रिस्पॉन्ड किया जा सके, इसके लिए वहां ट्रेनिंग्स दी गई हैं।
0: मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश भर में लू को लेकर चेतावनी जारी की है। हालांकि हाथरस, मथुरा, मैनपुरी समेत पश्चिमी संभाग के जनपदों में आज रात बिजली गिरने और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। नौतपा की शुरुआत के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान श्री विश्वेश्वर का आज फलों के रस से विशेष अभिषेक

किया गया। बाबा विश्वनाथ का अभिषेक गुलाब, लीची और आम के रस से संपन्न हुआ। मंदिर प्रशासन के अनुसार नौतपा के सभी 9 दिनों तक प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के फलों के रस से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस विशेष अनुष्ठान का उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान भगवान विश्वनाथ को शीतलता अर्पित करना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए डॉक्टर सुप्रिया पाठक की वार्ता, हिंदी सिनेमा में स्त्री विमर्श का स्वरूप।
2: आज मैं हिंदी सिनेमा में स्त्री विमर्श की उपस्थिति विषय पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। यह विषय केवल साहित्यिक या सिनेमाई विमर्श का विषय नहीं है, बल्कि भारतीय समाज की बदलती चेतना, सामाजिक संरचना और स्त्री अस्तित्व से गहराई से जुड़ा हुआ प्रश्न है। सिनेमा को साहित्य का दर्पण कहा जाता है। हिंदी सिनेमा ने समय समय पर भारतीय समाज के परिवर्तनशील मूल्यों को अभिव्यक्ति दी है, विशेष रूप से स्त्री की उपस्थिति, उसकी भूमिका, उसकी पीड़ा, उसकी आकांक्षाएं और उसके प्रतिरोध को हिंदी सिनेमा ने विविध रूपों में चित्रित किया है। यही चित्रण आगे चलकर स्त्री विमर्श का आधार बनता है। स्त्री विमर्श का मूल उद्देश्य स्त्री को केवल देह या परिवार की मर्यादा तक सीमित न मानकर उसे एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में स्थापित करता है। यदि हम हिंदी सिनेमा के आरंभिक दौर, विशेषकर 1930 से 1960 के दशक तक के सिनेमा को देखें तो पाएंगे कि उस समय स्त्री की छवि भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप निर्मित की गई थी। उस दौर का समाज पितृसत्तात्मक संरचना से गहराई से संचालित था, इसलिए फिल्मों में भी स्त्री को मुख्यतः त्यागमयी पत्नी, आदर्श माँ, पतिव्रता नारी और समर्पित प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत किया गया। उसकी पहचान परिवार की मर्यादा, पुरुष के सम्मान और सामाजिक नैतिकता से जुड़ी हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भारतीय स्त्री की एक आदर्श छवि गढ़ी जा रही थी। हिंदी सिनेमा ने इस आदर्श को व्यापक स्तर पर लोकप्रिय बनाया। इस संदर्भ में मदर इंडिया एक अत्यंत महत्वपूर्ण फिल्म है। निर्देशक महबूब खान ने राधा के चरित्र के माध्यम से भारतीय नारी की आदर्शवादी छवि प्रस्तुत की। राधा केवल एक माँ नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, नैतिकता और धैर्य का प्रतीक बनकर उभरती है। वह आर्थिक शोषण, प्राकृतिक आपदा और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करती है, किंतु अपने नैतिक मूल्यों से विचलित नहीं होती। फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण दृश्य वह है जब राधा अपने ही पित्र बिरजू को गोली मार देती है, क्योंकि वह सामाजिक मर्यादा और स्त्री सम्मान के विरुद्ध खड़ा हो जाता है। यहाँ राधा का मातृत्व भी नैतिकता के अधीन दिखाई देता है। इस प्रकार फिल्म स्त्री को नैतिक शक्ति के रूप में स्थापित करती है, किंतु उसकी भूमिका फिर भी परिवार और सामाजिक मर्यादा तक ही सीमित रहती है। इसी तरह की एक दूसरी फिल्म आई बंदिनी, जिसके निर्देशक थे विमल रॉय। उन्होंने स्त्री के अंतर्मन और भावनात्मक संघर्ष को बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया। फिल्म के नायिका कल्याणी प्रेम, अपराध बोध, त्याग और कर्तव्य के बीच

निरंतर संघर्ष करती हुई दिखी। यह फिल्म उस समय के लिए विशेष महत्व रखती है क्योंकि उसमें स्त्री की मनोवैज्ञानिक जटिलताओं को केंद्र में रखा गया। कल्याणी प्रेम में आहत होकर अपराध करती है और जेल पहुंच जाती है, लेकिन उसके भीतर की संवेदनशीलता और समर्पण समाप्त नहीं होते। फिल्म यह भी दिखाता है कि स्त्री केवल बाहरी सामाजिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसका एक गहरा भावनात्मक संसार भी है। फिर भी अंततः उसका निर्णय पुरुष केंद्रित संबंधों और भावनात्मक निर्भरता के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। इस तरह हम देख रहे हैं कि आरंभिक सिनेमा अपने दौर में स्त्री को त्याग की देवी के रूप में लगातार महिमामंडित करने का प्रयास करता है, उसे परिवार, समाज और एक नैतिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। वह समाज के नैतिक आधारशिला का कार्य करती है, लेकिन अपनी इच्छाओं और आत्म निर्णय के अधिकार से वंचित दिखाई देती है। यही कारण है कि आगे चलकर समानांतर सिनेमा और स्त्री विमर्श ने इस पारंपरिक छवि को चुनौती दी और स्त्री को एक स्वतंत्र सामाजिक इकाई के रूप में देखे जाने की पैरवी की। 1970 और 80 के दशक का हिंदी सिनेमा भारतीय समाज और राजनीति के व्यापक परिवर्तनों से गहराई से प्रभावित होता हुआ दिखता है। ये वो समय है जब देश सामाजिक असमानता, वर्ग संघर्ष, बेरोजगारी, आपातकाल, स्त्री अधिकार आंदोलनों, दलित अधिकार आंदोलनों और लोकतांत्रिक चेतना के नए प्रश्नों से जूझ रहा था। इस दौर में हिंदी सिनेमा में समानांतर सिनेमा, या जिसे हम नई धारा का सिनेमा भी कहते हैं, उस रूप में सिनेमा विकसित हो रहा था। इसने मुख्य धारा के मनोरंजन प्रधान सिनेमा से अलग हटकर यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया और पहली बार समानांतर सिनेमा ने स्त्री को केवल सौंदर्य या प्रेम के प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक शोषण, मानसिक संघर्ष और आत्म अस्तित्व से जूझती हुई संवेदनशील मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया। यह परिवर्तन भारतीय स्त्री विमर्श के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही वो दौर है जब भारत में स्त्रीवादी आंदोलन अपनी जड़ें जमा रहा था और उन आंदोलनों के सैद्धांतिक विमर्श हिंदी सिनेमा के कथानकों को भी प्रभावित कर रहे थे। उस दौर में एक और फिल्म आई, श्याम वेनेगल साहब की अंकुर, जिसकी नायिका थी शबाना आजमी, और शबाना आजमी ने अपने अनुभव से, अपने अभिनय से इस फिल्म में जान डाल दी। यह कहानी एक ग्रामीण समाज में स्त्री और निम्न वर्गीय समुदाय के शोषण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती थी। फिल्म की नायिका लक्ष्मी इसका किरदार थी, जो सामंती व्यवस्था तथा पुरुष सत्ता दोनों के दोहरे शोषण को झेल रही है। जमींदार का पुत्र सूर्या उसकी आर्थिक व्यवस्था का लाभ उठाकर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करता है। यहाँ स्त्री केवल लैंगिक उत्पीड़न नहीं, बल्कि वर्गीय और जातिगत दमन का भी शिकार होती है। फिल्म का अंतिम दृश्य बहुत प्रभावशाली है। जब एक छोटा बच्चा जमींदार के घर पत्थर फेंकता है, तो यह दृश्य केवल एक दृश्य नहीं, बल्कि शोषण के प्रति प्रतिरोध का प्रतीक बन जाता है। अंकुर प्रतिरोध का प्रतीक है। उस दौर की एक फिल्म मिर्च मसाला को भी याद करना यहाँ जरूरी है, जिसकी केंद्रीय भूमिका स्मिता पाटिल ने निभाई थी, और यह फिल्म एक मिल में काम करने वाली महिलाओं पर आधारित थी जो मसाले के कारखाने में काम करती थी। इस फिल्म का निर्देशन किया था केतन मेहता साहब ने, और यह फिल्म स्त्री के संघर्ष को सामूहिक संदर्भ में जोड़ने का कार्य करती है। फिल्म की नायिका सोनाबाई सत्ता प्रतिनिधि सूबेदार की यौन लालसा का विरोध करती है, और वह सिर्फ पितृसत्तात्मक सत्ता, सामंती अहंकार और पुरुष वर्चस्व के खिलाफ खड़ी नहीं होती, बल्कि यह जो प्रतिरोध है वह स्त्रियों के सामूहिक प्रतिरोध में बदल जाता है, और सामूहिक प्रतिरोध के स्वरूप के रूप में स्त्रियां सूबेदार पर मिर्च का पाउडर फेंकती हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में स्त्री प्रतिरोध का अत्यंत प्रतीकात्मक और क्रांतिकारी दृश्य माना जाने वाला यह दृश्य स्त्री विमर्श की अपनी यात्रा में भी एक प्रतिमान बन जाता है। यहाँ स्त्री पहली बार रक्षा की प्रतीक्षा करने वाली नहीं, बल्कि स्वयं संघर्ष करके शक्ति के रूप में उभरती है। यह फिल्म यह संदेश देती है कि स्त्री की मुक्ति व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक चेतना और एकजुटता ही से ही संभव है। समानांतर सिनेमा के बदौलत स्त्री ने अपनी छवि को मौलिक रूप से बदल दिया। अब स्त्री प्रेमिका या पत्नी नहीं थी, या केवल त्याग और सहनशीलता की प्रतिमा भी नहीं रही, बल्कि उसने सामाजिक अन्याय के विरुद्ध प्रश्न उठाने वाली एक चेतना का रूप धारण कर लिया। उसके बाद 21वीं सदी के हिंदी सिनेमा में स्त्री की छवि एक महत्वपूर्ण वैचारिक परिवर्तन के रूप में हमें दिखाई देने शुरू हुई। अब स्त्री केवल त्याग, सहनशीलता और समर्पण की प्रतिमा नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्णयी, स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और अपने अधिकारों के प्रति सजग व्यक्तित्व के रूप में उभरती है। वैश्वीकरण, शिक्षा का विस्तार, स्त्री अधिकार आंदोलनों, मीडिया और बदलती सामाजिक संरचनाओं ने इस नई स्त्री को गढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी सिनेमा में स्त्री अब केवल पुरुष केंद्रित कथा का हिस्सा नहीं रह गई थी, बल्कि

0: वह स्वयं अपनी कहानी के निर्माता और निर्णायक बनते दिखाई दी। उसकी इच्छाएं, उसकी सहमति, उसका आत्मसम्मान और उसकी स्वतंत्र पहचान अब फिल्मों के केंद्र में आने लगी। यह परिवर्तन स्त्री विमर्श की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्विन एक ऐसी फिल्म थी जिसकी नायिका कंगना रनौत थी, और वह फिल्म अपने आप में इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि उसके निर्देशक विकास बहल ने पहली बार इस फिल्म के माध्यम से यह दिखाया कि स्त्री की पहचान केवल विवाह और पुरुष पर निर्भर नहीं है। फिल्म की नायिका रानी एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़की है जिसकी शादी टूट जाती है। परंपरागत भारतीय समाज में विवाह टूटना स्त्री के लिए सामाजिक अपमान और मानसिक आघात माना जाता है, लेकिन रानी इस टूटन को अपनी कमजोरी नहीं बनने देती। वह अकेले हनीमून पर विदेश यात्रा करने निकल लेती है। यह यात्रा केवल भौगोलिक नहीं बल्कि मानसिक और वैचारिक यात्रा भी है। यात्रा के दौरान रानी नए लोगों से मिलती है, नए अनुभव प्राप्त करती है और अपने भीतर छिपे आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करती है। ऐसी ही एक फिल्म जिसकी नायिका श्रीदेवी थी, उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश जैसे फिल्म में काम किया जिसकी निर्देशिका गौरी शिंदे थी, और इस फिल्म में यह दिखाया गया कि घरेलू स्त्री का श्रम और संवेदनाएं किस प्रकार अक्सर परिवार के सदस्यों द्वारा अदृश्य कर दी जाती हैं। फिल्म की नायिका शशि एक साधारण गृहिणी थी जो अंग्रेजी न बोल पाने के कारण अपने ही परिवार में उपहास का पात्र बनती थी, लेकिन शशि ने अपने आत्मबल, अपनी मेहनत और अपने संघर्ष की बदौलत विदेश में जाकर न सिर्फ अंग्रेजी बोलना सीखा बल्कि यह भाषा उसके जीवन और उसके आत्मसम्मान को प्राप्त करने का एक माध्यम बनती है। अपने भीतर की क्षमता को वह पहचानती है और अपने परिवार को यह एहसास कराती है कि एक गृहिणी का अस्तित्व केवल रसोई तक सीमित नहीं होता है। यह फिल्म स्त्री की मूक पीड़ा को अत्यंत संवेदनशील ढंग से हमारे सामने उठाती है, साथ ही वह यह भी पूछती है कि स्त्री के श्रम का कोई महत्व है भी या नहीं। पिछले कुछ सालों में स्त्री विषयक फिल्मों को केंद्रीय विषय बनाने की एक तरह से मुहिम सी चल पड़ी है, और इस क्रम में हमें पिंक फिल्म को भी याद करना होगा। पिंक फिल्म का केंद्रीय वाक्य है असहमति, नो मीन्स नो। अमिताभ बच्चन अपने खास अंदाज में इस बात को जितनी बार दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं उस बात से यह स्थापित होता है कि नो इज ए कंप्लीट सेंटेंस। अगर कोई स्त्री असहमति दर्ज करती है तो उसके असहमति का सम्मान किया जाना चाहिए। ठीक उसी तरह की एक फिल्म तापसी पन्नू को केंद्र में रखकर बनाई गई जिसका केंद्रीय विषय था थप्पड़। बात बस इतनी सी थी लोगों की नज़र में कि उसके पति ने उसे एक थप्पड़ मारा था, और घर का हर सदस्य उससे बस यही कहता है कि उसने बस एक थप्पड़ ही तो मारा था। फिल्म की नायिका अमृता एक सुखी गृहिणी तो दिखाई देती है, लेकिन एक पार्टी में अपने पति के द्वारा सार्वजनिक रूप से मारे गए एक थप्पड़ को वह अपने संपूर्ण जीवन और संबंधों पर एक प्रश्न चिन्ह के रूप में देखती है। यह फिल्म यह प्रश्न उठाती है कि क्या विवाह का अर्थ स्त्री का आत्मसम्मान खो देना है? क्या स्त्री को केवल अपमान सह लेना चाहिए क्योंकि समाज विवाह संस्था को सर्वोपरि मानता है? यह फिल्म स्पष्ट करती है कि हिंसा केवल शारीरिक नहीं होती, मानसिक और भावनात्मक अपमान भी उतना ही गंभीर है। अमृता अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है और अपनी लड़ाई जीतती है। आज के दौर में जो हिंदी सिनेमा है उसकी स्त्री केवल सहन करने वाली नहीं है बल्कि वह प्रश्न पूछती है, अपने निर्णय स्वयं लेती है, अपमान और हिंसा के विरुद्ध आवाज उठाती है और अपनी पहचान को विवाह या पुरुष निर्भरता से अलग करती है। अंततः यह कहा जा सकता है कि हिंदी सिनेमा स्त्री विमर्श की यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण ढंग से आगे लेकर चलता है। स्त्री का बाजारवादी और ग्लैमरस चित्रण अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। कई फिल्मों में तथाकथित सशक्तिकरण के दावों को भी प्रश्नांकित किया जा रहा है और ग्रामीण, दलित और आदिवासी स्त्रियों के जीवन की वास्तविक समस्याओं को हमारे सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आरंभिक आदर्शवादी छवियों से निकलकर आज की स्त्री आत्मनिर्भर, संघर्षशील, प्रश्नाकुल और प्रतिरोधी रूप में हमारे सामने दिखाई देती है। हिंदी सिनेमा ने स्त्री अधिकार, समानता, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के प्रश्नों को जन चेतना का हिस्सा बनाने की एक मुहिम सी छेड़ी है जो कि प्रासंगिक भी है और स्वागत योग्य भी है। फिर भी यह लड़ाई अभी बहुत लंबी है क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर स्त्री विमर्श को समझना और भारत के अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में उसे ठीक उसी रूप में रूपायित कर पाना दरअसल हिंदी सिनेमा के अपने राजनीतिक अर्थशास्त्र के लिए भी एक चुनौतीपरक कार्य है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हिंदी सिनेमा इस दिशा में जरूर सकारात्मक पहलकदमी करते हुए हिंदी सिनेमा में प्रस्तुत की जा रही स्त्री की छवि को ज्यादा व्यवस्थित, ज्यादा आत्मसम्मान परक और स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करेगा, तभी वास्तविक स्त्री विमर्श भारतीय संदर्भों में संभव हो सकेगा। धन्यवाद।
1: अब अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सुप्रिया पाठक।

0: की वार्ता हिंदी सिनेमा में स्त्री विमर्श का स्वरूप। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुजाता सिंह के गाए भजन और गीत। तो लीजिए सबसे पहले इनके स्वर में सुनिए ये भक्ति रचना।

0: अभी आप सुन रहे थे सुजाता सिंह की आवाज़ में रूप कुमार रूप की लिखी ये रचना। इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक समारोह के संपादित अंश। आज हम आपको सुनवा रहे हैं इसका दूसरा भाग।
1: बाबूलाल भवरा जी और उनके साथी कलाकार।

हमारे लोक में ये परंपरा रही है कि हम गायन के माध्यम से अपनी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाते हैं, अपनी बात को पहुंचाते हैं। कहते हैं कि ऐसे गीत भी लिखे गए, ऐसे गीत भी गाए गए जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक विकास की दुनिया को मजबूत कर दिया। और यही है हमारी आकाशवाणी की थाती, जिसे हम 90 साल से मजबूत करते आए हैं। तो हमारे सामने प्रस्तुत हैं श्रीमती प्रिया द्विवेदी जी, ये गीतों को सुनिए और आनंद में डूब जाइए।

0: हमारे बीच में हमारे महापौर आदरणीय उमेश चंद्र गणेश किशोरवानी जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं कि वे आएं और दो शब्द अपने कहें।
1: भारत के बारे में अगर हम कल्पना करते हैं तो भारत क्या है? भारत का लोक जीवन, लोक गीत, लोक संगीत, लोक नाट्य, अगर इसको भारत के जीवन से अगर निकाल दिया जाए तो मैं समझता हूँ भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, भारत की लोक मान्यताओं का कोई सीधे जनमानस से साक्षात्कार कराता था तो उसका नाम था आकाशवाणी, या गौरवशाली संस्था जिसने भारत की इस सांस्कृतिक धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी जोड़ने का काम किया है। आज इस 90 वर्ष पूरे

0: होने के अवसर पर ये केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि हमको अपनी विरासत से जोड़ने का एक माध्यम भी है। भारत के अंदर से अगर यह लोक साहित्य, लोक जीवन, लोक गीत, लोक कलाएं इसको निकाल दिया जाए तो शायद भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। उसी संपूर्ण भारत का एक विस्तृत स्वरूप प्रस्तुत करने का माध्यम आकाशवाणी रहा है। 90 वर्षों की इस लंबी यात्रा में निश्चित रूप से आकाशवाणी के तमाम सम्मानित अधिकारी और कलाकारों ने अपना सर्वोत्तम देने का कार्य किया है, जिसके कारण आज भी समाज के जीवन में आकाशवाणी को लेकर के एक अगाध श्रद्धा है। और जब वो आकाशवाणी में कुछ सुनते हैं तो निश्चित रूप से उनके हृदय तक उतरता है और कहीं ना कहीं वह व्यक्ति अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपनी मान्यताओं के प्रति उसका भाव और अटूट होता है। यह क्रम निरंतर चलता रहे, मैं इसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। यह यात्रा दीर्घायु हो और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों से जोड़ती रहे, यही मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अब वो घड़ी आ गई है जब हम ये तय करें कि हमारी वायुसेना न केवल गोलियों या फिर विमानों की ही लय नहीं करती है, बहुत सारी लय उसके पास है और वही गुलदस्ता सजाकर लेकर आए हैं और ये गीत सजाकर लाए हैं हमारे वायुसेना के बैंड।

0: थैंक यू सो मच।
1: मैं बहुत ही आदर के साथ बुला रहा हूं अभियंत्रिकी प्रमुख जयराम सिंह जी को कि वे आए और सभी के प्रति आभार व्यक्त करें। आदरणीय जयराम सिंह जी।
2: आकाशवाणी परिवार द्वारा आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर परम आदरणीय न्यायमूर्ति महेश चंद त्रिपाठी सर, परम आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा सर, परम आदरणीय माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सर, हमारे महापौर साहब उमेश चंद केसरवानी सर, समुदाय इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आर के सिंह जी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से गरिमा श्रीवास्तव मैडम और अमित मिश्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन सभी कलाकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने यहाँ पर इस फंक्शन को, इस कंसर्ट को सफल बनाने में बहुत ही सहयोग किया। यहाँ पर जो हमारा श्रोता वर्ग है या दर्शक वर्ग है, जो भी कह लीजिए, उसमें हमारे बहुत से रिटायर्ड ऑफिसर्स आए हैं, उन सभी का भी विशेष तौर पर धन्यवाद है कि उन लोगों ने हमारे आग्रह को स्वीकार करके और यहाँ पर अपनी उपस्थिति दी, अपना आशीर्वाद दिया। हॉल में बैठे हुए उन सभी दर्शकों का, बुजुर्गों का, उन सभी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। हम उस परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं जो -55 डिग्री टेम्परेचर में भी नौकरी करता है और +55 डिग्री टेम्परेचर में भी नौकरी करता है। हम जैसलमेर के इलाके में भी नौकरी करते हैं और द्रास में भी हम नौकरी करते हैं। हमारे आकाशवाणी प्रयागराज में भी ऐसे स्टाफ हैं जो -55 डिग्री टेम्परेचर से नौकरी करके आए हैं और +55 डिग्री टेम्परेचर से नौकरी करके आए हैं। हम 100% एरिया को कवर करते हैं। कुछ इलाकों में BSF और आर्मी जाती है और जाड़े के दिन में वहाँ पर कैंप से नीचे आ जाती है। उन जगहों पर भी लद्दाख में स्पेशली हमारे स्टेशन बनाए गए हैं और हमारे इंजीनियर्स, हमारे जवान वहाँ 365 दिन रह करके सेवा दे रहे हैं। FM के माध्यम से, मीडियम वेव के माध्यम से, न्यूज ऑन एयर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम हर देश के नागरिक के पास और विदेशों में पूरी दुनिया में पहुंच रहे हैं। एक और चीज़ अभी हम बताना चाहेंगे, जल्दी ही लॉन्च होने वाली है DTM डायरेक्ट टू मोबाइल। बिना इंटरनेट के आप मोबाइल पर रेडियो और TV देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। हम ज़्यादा समय न लेते हुए हम आप सभी का जो भी

0: आकाशवाणी के 90 साल पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक समारोह के संपादित अंश अभी आपने सुना। आज आपने सुना इसका दूसरा भाग। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कानून और हम इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंकज कुमार मिश्र से नेहा गुप्ता की बातचीत। विषय है वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना।
1: नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, कहते हैं ना कि वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें दुख थोड़े ज़्यादा होते हैं, उम्मीदें बहुत होती हैं और पूरी बहुत लोगों की उम्मीदें नहीं हो पाती। बहुत लोगों के परिवार वाले खूब साथ देते हैं लेकिन कई बार कुछ लोग बेसहारा हो जाते हैं। पता है, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई गई है। और भी एक योजना है जो महिलाओं के लिए सबसे कारगर है। जी हाँ, अगर एक महिला के साथ अनहोनी हो जाती है, मान लीजिए कि उनके पति नहीं रहे किसी कारणवश, तो विधवा पेंशन योजना भी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। आखिर इस योजना का लाभ कैसे लिया जा सकता है, किन किन कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी और हमें कितनी रुपए कितने पैसे मिलेंगे, जी हाँ, ये सब कुछ इस बातचीत में हम जानेंगे। खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इलाहाबाद के जिला प्रोबेशन अधिकारी पंकज कुमार मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: थैंक यू मैम।
1: पंकज जी, आपके पास तो तमाम इस तरह के केसेस आते होंगे, तो कितने केसेस आते हैं, कितने ज़रूरतमंद लोग होते हैं और क्यों ये योजना अच्छी है?
2: महिलाओं के लिए बेसिकली जो हमारा डिपार्टमेंट काम करता है
1: जी
2: मैडम, उसमें पति के मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना
1: जी,
2: जिसमें 1,000 रुपये प्रतिमाह किसी भी महिला को जिसके पति नहीं रहे हैं
1: जी,
2: उनको दिया जाता है। दूसरा जो हमारा वृद्धावस्था पेंशन है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर हो गई है
1: जी,
2: उनको भी 1,000 रुपये प्रतिमाह राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से
1: दिया जाता है। सर, कई बार लोग ये सोचते हैं कि भाई ये पैसे मिलते तो हैं लेकिन उनको ये नहीं पता है कि कहाँ जाएं और इसके लिए क्या कागज ज़रूरत है।
2: हाँ, दोनों के लिए मैं अलग अलग आपको बताता हूँ
1: जी। सबसे पहले कौन सा?
2: सबसे पहले तो हम लोग पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित पेंशन योजना, जिसको गांव में लोग अभी भी बोलचाल की भाषा में विधवा पेंशन के नाम से जानते हैं
1: जी,
2: उसके लिए मैं आप बताता हूं कि किन कागजातों की जरूरत होती है और कैसे आसानी से किसी भी लाभार्थी को उस योजना का लाभ मिल सकता
1: जी,
2: है।
1: जरूर।
2: हमारे आसपास जो भी सहज जनसेवा केंद्र हैं, जो भी, वहाँ आप अपना जाकर और चार कागज के लिए जरूरी होते हैं
1: जी।
2: पहला कागज, आपके पति की मृत्यु हुई है तो उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट होता है,
1: पति का मृत्यु प्रमाण
2: पत्र। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, ये अगर आप ग्रामीण स्तर के हैं तो ब्लॉक से बनता है और अगर आप नगर के हैं तो आप नगर निगम से बनता है। अगर आपके पास पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो आप खंड विकास अधिकारी संपर्क करके आप अपने ग्राम विकास अधिकारी से परिवार रजिस्टर की नकल ले सकते हैं,
1: जो कुटुंब रजिस्टर होता है,
2: जो कुटुंब रजिस्टर इसको बोला जाता है
1: जी।
2: तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट उसी का होता है कि क्योंकि वही सर्टिफाई करता है कि आप निराश्रित महिला हैं
1: जी।
2: तो उसमें पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नंबर एक। दूसरा, आपको आधार कार्ड की अनिवार्यता है, इसमें आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरा, इसमें आय प्रमाण पत्र होता है, इनकम टैक्स, इनकम सर्टिफिकेट होता है।
1: आय प्रमाण पत्र कैसा होता है, कहाँ बनता है?
2: ये तहसील में बनता है, SDM और तहसीलदार के आदेश से ये निर्गत होता है, ये भी ऑनलाइन ही होता है।
1: अच्छा, आप इसमें भी क्या कुछ ऐसा होता है,
2: क्राइटेरिया होता है?
1: BPL बिलो पॉवर्टी लाइन ऐसा कुछ है?
2: विधवा पेंशन में 2 लाख की आय के नीचे की जो भी महिलाएं हैं सबको पेंशन दिया जाएगा। 2 लाख रुपए एनुअल उसमें सर्टिफिकेट में होना चाहिए। ये किसी भी जनसेवा केंद्र से आप ऑनलाइन कर देंगे तो तहसीलदार द्वारा विद इन टाइम पीरियड में 15 दिन में वो निर्गत कर दिया जाता
1: है। अब आपने कहा कि सहज जनसेवा केंद्र है, कई बार लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि इसका पता कैसे करें, कहाँ जाएं? वो कहते हैं कि भी गांव से चल के कहाँ जाएं, कहाँ ढूंढे, किससे पूछें?
2: गांव के आसपास कोई भी कस्बा होगा अगर वहाँ,
1: अच्छा,
2: गांव से आसपास। अब तो सरकार ने एक बहुत अच्छा कर दिया है कि अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, गांव में ही एक पंचायत भवन बन गया है

0: हर
1: जी
0: गांव में बन गया है, और अभी
1: जी
0: इसी साल से वहाँ एक पंचायत सहायक की नियुक्त होती है,
1: जी
0: नियुक्ति की गई है। वो पंचायत सहायक सिर्फ इसीलिए वहाँ कंप्यूटर लेकर बैठे हुए हैं कि हमारे गांव का कोई भी लाभार्थी इस योजना से वंचित न रह जाए। तो आपको कहीं नहीं जाना है, अपने गांव के पंचायत भवन में जाकर पंचायत सहायक से मिलना है।
1: जी
0: हर गांव, जितने यहाँ 1575 गांव हैं, जो
1: जी
0: हर
1: जी
0: गांव में पंचायत सहायक की नियुक्ति हो चुकी है
1: जी
0: और उनको कंप्यूटर और संसाधन भी उपलब्ध करा दिए गए
1: पंकज
0: हैं।
1: जी, ये तो बात गांव की है। अगर कोई महिला शहरी क्षेत्र में है, उसे नहीं पता कि सहज जनसेवा केंद्र कहाँ होगा, तो बताने का कष्ट करें कि कहाँ हो जाए
0: वो
1: भाई।
0: गांव
1: हाँ,
0: शहर में तो हर
1: ऑनलाइन ही वो कर लें,
0: हाँ
1: किसी
0: ऑनलाइन
1: से
0: ही
1: हेल्प ले
0: होगा।
1: लें तो चलेगा।
0: हाँ ऑनलाइन, या तो शहर में है तो कभी भी 9TB सप्रू रोड, हम सिविल लाइन में हमारा जिला प्रोविशन कार्यालय है, जहाँ दो ऑपरेटर हर हमेशा क्या कहते हैं पेंशन बनाने के लिए डिप्यूट होते हैं, वो चार कागज लेके आते हैं, तो वहीं से उनका ऑनलाइन हो जाता है।
1: यानी सप्रू रोड सिविल लाइन्स
0: हाँ
1: इलाहाबाद,
0: सिविल लाइन
1: ये
0: है,
1: याद रखना,
0: ये आप
1: प्रयागराज।
0: याद
1: जी
0: रखें, विधवा
1: जी
0: पेंशन के नाम से जानते हैं लोग
1: उस
0: लोग।
1: वेबसाइट को क्या कुछ
0: वो
1: एड्रेस?
0: इंटीग्रल पोर्टल है पूरा, सभी
1: जी
0: पेंशन, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और जो विकलांग पेंशन है, ये सब एक ही पोर्टल है, और राष्ट्रीय एकीकृत पेंशन प्रणाली योजना वेबसाइट का नाम है।
1: जी
0: तो उस पे आप जाएंगे, या अगल बगल कोई भी कंप्यूटर की दुकान है जो, तो वो लोग सब जानते हैं। वो आराम से, चार कागज़ है, एक पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, एक आधार कार्ड, एक आय प्रमाण पत्र, और एक आपके पास राष्ट्रीयकृत बैंक जो है उनका कोई पासबुक होना चाहिए, और दो फोटो।
1: अकाउंट जो है, कई बार लोग प्राइवेट बैंक में खोल लेते हैं तो वो नहीं चलेगा,
0: नेशनलाइज बैंक हो, कोई भी नेशनलाइज
1: नेशनलाइज
0: बैंक हो,
1: बैंक हो।
0: हाँ
1: जी
0: चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, नेशनलाइज बैंक
1: ठीक,
0: होना चाहिए
1: राष्ट्रीय
0: उसका,
1: पहचान का
0: हाँ
1: हो।
0: राष्ट्रीयकृत बैंक
1: जी
0: होना चाहिए।
1: जी
0: और ये चार कागज़ लेके आप इन जैसे ही ऑनलाइन कर देंगे, तो 45 डेज के अंतर्गत आपका सत्यापन हो जाएगा। अगर इन केस कोई सत्यापन नहीं भी करता है, तो आप कुछ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक वो आपको ऊपर प्रेषित हो जाएगा, अर्थात आपको स्वीकृति हो जाएगी।
1: इसकी भी जो आप बता रहे हैं कि निराश्रित पेंशन जो योजना है, कोई उम्र सीमा होती है कि?
0: 18 वर्ष के ऊपर कोई भी महिला है तो उनको ऊपर कोई लिमिट नहीं है, 18 वर्ष के ऊपर किसी भी उम्र की महिलाओं को ये लाभ
1: जब तक आप
0: मिलता है।
1: जीवित
0: जब
1: हैं,
0: तक आप
1: जीवित
0: जीवित
1: हैं
0: हैं तब
1: और
0: तक आपको,
1: ये आपके साथ है, अगर
0: हाँ
1: पुनर्विवाह हो जाता है
0: हाँ
1: फिर आपको
0: पुनर्विवाह हो जाता है तो आपका पेंशन फिर वो बंद हो
1: बंद हो
0: जाएगा।
1: जाएगा।
0: हाँ,
1: जी
0: या आपके बच्चे मान लेते हैं बालिग हो गए और आप उन पर आश्रित हो गए, वो अच्छा उनका इनकम 2 लाख से ऊपर हो गया और आप उनके साथ रह रही हैं, तो उस दशा में भी आप अपात्र हो जाएंगे, फिर किसी दूसरे गरीब को मिलेगा।
1: ये बातें ध्यान रखनी योग्य हैं पंकज जी। कई बार कुछ महिलाओं का ये कहना है कि जी आधार में या आय प्रमाण पत्र में या फिर उनके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं, वो कहते हैं कि नाम में भूल चूक हो गई है, वो समानता नहीं है कि जो नाम आधार कार्ड में है वो आय प्रमाण पत्र में भी हो, अकाउंट में भी हो। कई बार वो कुमार कुमारी छूट जाता है, तो इससे बड़ी दिक्कत, ये कैसे ठीक हो?
0: इसका संशोधन होता है, चाहे अगर
1: जी
0: आधार में आप संशोधन कराना चाहते हैं तो आप किसी गजटेड अफसर से लेटर हेड पे लिखवा के आप आधार भी चेंज करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारा इनकम उसमें हो, तो आप तहसीलदार के यहाँ अपना आवेदन दे दें, तो निश्चित रूप से वो चेंज हो जाता है।
1: कई बार क्या होता है, एक व्यवहारिक समस्या कि शादी हुई और कुटुंब रजिस्टर में नाम नहीं है, ये मान लें कि अनहोनी वश पति नहीं रहे, अब कुटुंब रजिस्टर में नाम नहीं है, उसके बाद चढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोई ऐसा टोल फ्री नंबर या कोई अधिकारी हो जहां पर महिलाएं अपनी समस्या को रख सकें?
0: टोल फ्री नंबर तो अभी ऐसा कुछ नहीं है इसमें,
1: जी
0: लेकिन सरकार ने अभी जो जो पंचायत सहायक की नियुक्ति किया है गांव में,
1: जी
0: वो इसीलिए किया है कि वो गांव की महिलाओं को कहीं और ना जाना हो। वो आपको संबंधित क्या कहते हैं खंड विकास अधिकारी से समन्वय करते हुए आपका परिवार रजिस्टर में नाम या पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं।
1: इसका मतलब घबराने की जरूरत नहीं है,
0: हाँ
1: और ना
0: घबराने
1: ही
0: की नहीं,
1: अगर आपको कोई कह रहा है कि आपके नाम में त्रुटि है या आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा,
0: ऐसा
1: ऐसा
0: नहीं है,
1: नहीं,
0: ऐसा नहीं
1: बस
0: है।
1: थोड़ा समय लगेगा
0: हाँ
1: लेकिन
0: थोड़ा
1: योजना
0: सा,
1: का लाभ
0: हाँ
1: मिलेगा। ये तो निराश्रित पेंशन योजना की बात हो गई, अब वृद्धावस्था पेंशन योजना की बात करते हैं, क्योंकि बुजुर्ग लोगों की ज़रूरतें भी होती हैं। कई बार घर के लोग सहयोग करते हैं, कई बार नहीं भी कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो कैसे वो इसके पात्र होंगे और किस उम्र सीमा से इस योजना का लाभ लिया जा
0: सरकार
1: सकता है?
0: इनके लिए, हमारी जो वृद्ध माताएं बहनें हैं 60 साल के ऊपर,
1: इसमें पुरुष
0: हाँ
1: वर्ग भी
0: पुरुष वर्ग
1: शामिल
0: भी
1: है?
0: शामिल हैं इसमें,
1: हाँ
0: और 60 वर्ष से ऊपर चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर वो
1: जी
0: निराश्रित है, जैसे

0: कोई उसका सहारा नहीं है, तो उसके लिए सरकार राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना चालू की है। उसके लिए चार, उसमें भी अलग अलग कागज़ होते हैं। उसमें जैसे आपका एक एज के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आधार हो या चाहे आपका परिवार रजिस्टर में भी लिखा होता है वो हो। दूसरा, बैंक अकाउंट होना चाहिए। तीसरा, आय प्रमाण पत्र होता है। इसमें जो है आय प्रमाण पत्र जो है वो नगर में है तो आप लगभग 56,000 के आसपास है, और अगर गांव के हैं तो 48,000 एनुअल के नीचे ही है।
1: जी,
0: ये निराश्रित पेंशन योजना में आय 2 लाख तक है।
1: इसमें कम
0: हाँ,
1: है।
0: इसमें कम है।
1: इसका मतलब जिसकी तनख्वाह 48,000 है प्रति वर्ष,
0: प्रतिवर्ष, हाँ
1: उसको लाभ मिलेगा,
0: हाँ
1: वो
0: हाँ
1: भी ग्रामीण
0: ग्रामीण
1: क्षेत्र में।
0: ग्रामीण क्षेत्र में।
1: और शहरी क्षेत्र में
0: शहरी क्षेत्र में 56,000 का,
1: छप्पन
0: छप्पन
1: हजार
0: हजार
1: रुपए
0: रुपये
1: वार्षिक हो,
0: वार्षिक हो,
1: वही लोग अप्लाई कर
0: वही लोग
1: सकते हैं।
0: इसमें
1: जी,
0: अप्लाई
1: ठीक
0: कर
1: है।
0: सकते हैं। अभी जनपद प्रयागराज में लगभग 1.5 लाख वृद्धावस्था पेंशन और 98,000 विधवा पेंशन दी जाती है।
1: तो ये सारी
0: इसमें
1: चीजें
0: भी
1: अप्लाई
0: 1,000 रुपया,
1: करके,
0: हाँ ये भी ऑनलाइन ही है सारा, इसमें भी 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। और इसमें भी आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन ही करना है, चाहे अपने गांव के पंचायत भवन जाकर पंचायत सहायक के माध्यम से, या अपने आसपास किसी भी सहज जन सेवा केंद्र से। 20 रुपये सहज जन सेवा केंद्र इसकी फीस निर्धारित की गई है, तो 20 रुपये इसको सहज जन सेवा केंद्र वाले अपना लेते हैं और वो उसको सारा फॉर्म फिल कर देते हैं, तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। फिर उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर वो पेंशन ऑनलाइन सत्यापन होकर आपको वो अगली किस्त जो भी जाएगी वो 3 महीने का एक साथ उसमें आपको मिलता है।
1: इसमें जो आय प्रमाण पत्र बनना है, ये भी
0: ये भी
1: तहसीलदार
0: तहसीलदार के यहाँ
1: से
0: से ही बनना है।
1: बनना है।
0: हाँ,
1: आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या किसी खास डॉक्यूमेंट की जरूरत तो नहीं पड़ती?
0: बस आपको आधार कार्ड की जरूरत होगी।
1: जी,
0: आप इससे ये हो कि किस गांव के आप रहने वाले हैं।
1: इसका मतलब है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर तैयार हैं और ऑनलाइन स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, तो पंचायत सहायक या
0: पंचायत
1: सहज
0: से,
1: जन सेवा केंद्र या फिर शहर में नगर निगम है,
0: नगर निगम,
1: वहां पर जा करके अपना आवेदन दे सकते हैं और इस योजना का लाभ
0: लाभ
1: ले
0: ले
1: सकते
0: सकते।
1: हैं। कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बात जो आपको लग रही है कि
0: हाँ,
1: श्रोताओं तक पहुंचानी जरूरी
0: वृद्धावस्था
1: है?
0: या हमारी जो बुजुर्ग माताएं एवं बहनें हैं या दादा लोग हैं, उनके लिए मैं एक बात और इसमें
1: जी,
0: जोड़ना
1: जरूर।
0: चाहूँगा कि सरकार इनके लिए वृद्धाश्रम भी चलाती है, और 60 साल के ऊपर अगर कोई नहीं है या घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप वहाँ वृद्धाश्रम में रह सकते हैं। अपने जनपद में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम है शांतिपुरम फाफामऊ में,
1: जी,
0: और समाज कल्याण विभाग द्वारा भी संचालित एक वृद्धाश्रम है नैनी में। वहाँ आपके रहने, आपकी क्रिएटिविटी, खाने, सारी चीज़ों का बहुत अच्छा ख्याल रखा जाता है और लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। PPP मॉडल पे और भी लोग वृद्धाश्रम खोलने के लिए इसमें खोले हैं और चला भी रहे हैं। तो अगर आपको किसी, मान लेते हैं किसी घर से सपोर्ट नहीं मिलता है या किसी कारणवश वो घर से निकाल दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर, आप जो वृद्धाश्रम हमारे चलते हैं सरकार के, आप उसमें रहकर अपने रहन सहन, खान पान, क्रिएटिविटी को आप अच्छे से उसमें मेंटेन कर सकते हैं।
1: जी, इन सब के साथ हम सभी लोग अपने श्रोताओं से ये अपील करते हैं कि घर के लोगों का ख्याल रखना
0: हाँ बिल्कुल, घर
1: हमारी
0: तो घर ही
1: प्राथमिक
0: होता है।
1: जिम्मेदारी
0: एक जो
1: होती है,
0: इमोशनल
1: बॉन्ड
0: जो
1: है
0: बॉन्डिंग होती है
1: वो
0: वो
1: कायम
0: निश्चित रूप
1: रखे,
0: से
1: बरकरार रखे,
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अगर हम अपनों का ख्याल रखते हैं तो हमारे
0: उससे,
1: अपने भी हमारा
0: हाँ
1: ख्याल
0: उससे
1: रखते हैं।
0: उससे हमारा एक और लाभ ये होता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं उनका एक सोशलाइजेशन भी अच्छा
1: शिक्षा,
0: होता है,
1: जी
0: उनका समाजीकरण भी अच्छा होता है।
1: जी जरूर,
0: जैसे इसीलिए दादाजी के जो सबसे प्यारे होते हैं वो पोते
1: पोते
0: होते हैं,
1: पोतियां होते
0: पोते
1: हैं
0: पोतियां, इसलिए कि उनका भी अकेलापन दूर होता है
1: और
0: और
1: उनका भी
0: उनका भी सोशलाइजेशन अनुभव के आधार पर बहुत अच्छा
1: जी
0: होता है। तो जो एक ज्वाइंट फैमिली का पहले से एक कल्चर था, निश्चित रूप से मेरी सबसे ही गुजारिश है कि हम लोग उस ज्वाइंट फैमिली को मेंटेन रखें और अपने बड़े बुजुर्गों से हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उनको अपने साथ रखें और उनका ख्याल रखें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप स्टूडियो में आए और इन योजनाओं के बारे में आपने जानकारी दी। उम्मीद है कि जो भी श्रोता हैं, अगर उनको ज़रूरत है तो वो ज़रूर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और इस
0: हाँ
1: योजना का लाभ उठाएंगे।
0: बिल्कुल
1: बहुत
0: बिल्कुल,
1: शुक्रिया आपका
0: ओके,
1: स्टूडियो में
0: थैंक
1: आने।
0: यू।
2: कानून और हम, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंकज कुमार मिश्र से नेहा गुप्ता की बातचीत, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन योजना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
3: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा

0: में करना पड़ता है। इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
2: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही।
3: रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
4: Several key agreements were signed.
5: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
2: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
6: अगेंस्ट दी असेसमेंट ऑफ
0: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
6: लाइक मेट्रिक टन्स ऑफ इंपोर्ट्स हैव रीच्ड आवर शोर्स।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गई और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित सुचारू

सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमानगेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉ. एन. राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और

0: डीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani, and I'm Saira Mujtaba with the news.

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमी हूं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज पद्म अवार्ड 226 पेश किए। मारूफ फिल्म अदाकार आजहानी धर्मेंद्र और शोहरा आफाक वायरन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से नवाजा गया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने MSMEs को मुस्तहकम करने और देही सनतों की जदीद कारी में तेज रफ्तारी लाने की गरज से कई स्कीमों का इफ्तिताह किया है। गुलमर्ग केबल कार सिस्टम में तकनीकी खराबी के बाइस वहां फंसे सयाहों को बहिफाजत निकालने के लिए मुश्तरका कार्रवाई जारी है। सभी 300 सयाहों को बहिफाजत निकाल लिया गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के वज़राए खारजा नई दिल्ली में कल क्वाड मीटिंग में हिस्सा लेंगे। महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इंतहाई शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और कुश्ती में भारत के पहलवान विकी और अक्षय धीरे ने वियतनाम में 23 साल से कम उम्र की एशियन चैंपियनशिप में मर्दों के फ्री स्टाइल जुमरे में सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा सिविल इन्वेस्टर तकरीब में साल 2026 के लिए 66 अहम शख्सियात को आज पद्म अवार्ड से नवाजा। इनमें से 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 शख्सियात को पद्मश्री से नवाजा गया। तकरीब के दौरान नायब सदर CP राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़रा अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत और HD कुमारास्वामी इस मौके पर मौजूद थे। मारूफ फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल को फन के शोबे में उनकी खिदमात के लिए बाद अजमर्ग पद्म विभूषण से नवाजा गया। अदाकार की अहलिया और लोकसभा की मेंबर पार्लियामेंट हेमा मालिनी ने ये अवार्ड हासिल किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: भारत की शोहरा आफाक वायलिन की माहिर उस्ताद डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से नवाजा गया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: पद्म भूषण के जुमरे में उत्तराखंड के साबिक वजीर आला और महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को अवामी उमूर के शोबे में उनकी खिदमात के लिए ये अवार्ड दिया गया, जबकि विजय कुमार मल्होत्रा को बाद अजमर्ग अवामी खिदमात के जुमरे में इस अवार्ड से नवाजा गया। शतावधानी डॉक्टर आर गणेश को फनून लतीफा के शोबे में, जबकि एडवर्टाइजिंग से वाबस्ता पीयूष पांडे को बाद अजमर्ग ये अवार्ड दिया गया। सनतकार उदय सुरेश कुमार कोटक को तिजारत और सनत के शोबे में खिदमात के लिए और डॉक्टर कल्लीपट्टी रामास्वामी पलानी स्वामी को अद्वियात के शोबे में खिदमात के लिए अवार्ड दिया गया। पद्मश्री का एजाज हासिल करने वालों में भारत की ख्वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर भुल्लर भी शामिल हैं। 2026 के लिए सदर जमहूरिया ने 131 पद्म अवार्ड मंजूर किए थे, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड शामिल हैं। बाकी पद्म अवार्ड तकरीब के दूसरे मरहले में दिए जाएंगे, जो बाद में मुनक्किद होगी। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीरुल फरीद।
0: मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज अंग्रेजी हर्फ F से शुरू होने वाली 3 चीज़ों के नामों पर मजीद तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत को उजागर किया है। ये 3 चीज़ें हैं ईंधन, कीमियावी खाद और ज़र मुबादला। इन दिनों जारी मगरबी बहरान की सूरत हाल के दौरान उन्होंने ये बात कही है। वजीर खजाना ने वाजह लफ्ज़ों में अलबत्ता ये भी कहा कि भारतीय मीशत ने मज़ाहमती सूरत हाल बरकरार रखी है। भारत के छोटी सनतों की तरक्यात से मुतल बैंक SIDBI के क्याम के 37वें साल के मौके पर मुंबई में एक तकरीब से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमन ने कलीदी नौयत के कई पोर्टल और स्कीमों का इफ्तिताह किया, जिनका मकसद MSMEs के निजाम को मुस्तहकम करना, मुल्क के दूर दराज हिस्से तक क्रेडिट डिलीवरी को वसत देना और देही सनतों की जदीद कारी के काम को तेज रफ्तारी अता करना है। जिन स्कीमों का आज आगाज किया गया उनमें SIDBI मैकफिन मार्ट शामिल है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद MSMEs को तआवुन देना है। मोहतरमा सीतारमन

0: ने कहा कि भारत का पॉलिसी रद्द अमल पूरी देखभाल के साथ इस तरह तैयार किया गया है कि आलमी चैलेंजों के बावजूद मुल्क की तरक्की का तहफ्फुज़ किया जा सके। भारतीय फौज और कुदरती आफात की सूरत में बंदोबस्त करने वाली कौमी फोर्स NDRF और रियासती फोर्स SDRF जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग गंडोला में राहत और बचाव की एक कार्रवाई की सरबराही में शामिल थे। गंडोला केबिर कार के निज़ाम में तकनीकी खराबी के बाद ये कार्रवाई की गई। बेस स्टेशन और फेस वन के दरमियान खिदमात के अचानक मुअत्तल हो जाने के सबब पैदा होने वाली खराबी के बायस आज कई सयाह वहां फंस गए थे। एक बयान में भारतीय फौज ने कहा है कि मकामी हुक्काम की तरफ से मिली इत्तला के बाद राहत और बचाव टीमें जाय मौका पर फौरन पहुँच गईं। भारतीय फौज के मुताबिक तकनीकी खराबी के बायस कुल 65 केबल कारें मुतासिर हुई थीं। इसमें मजीद कहा गया है कि बचाव टीमों ने सभी 300 सयाहों को बहिफाजत महफूज मकाम तक पहुंचा दिया है। इधर तकनीकी टीमें इस खराबी का जायजा ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट इम्तिहान मुनक्किद किए जाने के सिलसिले में बार बार होने वाली गलतियों पर तश्वीश का इजहार किया है और कहा है कि यह अफसोसनाक बात है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक के इससे पहले के तनाज़ों से कोई सबक नहीं लिया। जस्टिस PC नरसिम्हा और आलोक आराधे पर मुश्तमिल एक बेंच ने मरकज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA और CBI से उन दरख्वास्तों पर जवाब तलब किए हैं जिनमें इस टेस्टिंग एजेंसी की जगह मेडिकल दाखिले का इम्तिहान मुनक्किद कराने के लिए किसी ज्यादा वसी तजर्बे वाले और खुद मुख्तार इदारे को मुकर्रर किए जाने का मुतालबा किया है। अदालत ने NTA को हिदायत दी है कि वह जुमेरात तक एक हलफनामा दाखिल करे जिसमें एजेंसी के कामकाज को चुस्त दुरुस्त करने से मुतालिक इसरो के साबिक सरबरा के राधा कृष्णन की सदारत वाली एक कमेटी की जानिब से पिछले साल दाखिल करदा सिफारिशात पर अमल आवरी की तफसीलात पेश की जाए। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को NEET UG 2026 के अगले माह की 21 तारीख को होने वाले दोबारा इम्तिहान को महफूज सिक्योर और कामयाबी के साथ मुनक्किद कराने के सिलसिले में एक खत लिखा है। जनाब प्रधान ने मुल्क भर के तमाम वज़राए आला लेफ्टिनेंट गवर्नरों और एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिखकर इस सिलसिले में उनका तआवुन तलब किया है। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा ने इबोला वायरस से होने वाली बीमारी की रोकथाम के सिलसिले में तैयारियों और निगरानी के इकदामात का आज नई दिल्ली में जायजा लिया। वजारत के सीनियर अहलकारों के साथ मीटिंग के दौरान जनाब नड्डा ने हिदायत दी कि दाखिले के तमाम पॉइंट्स जिनमें हवाई अड्डे बंदरगाहें और ज़मीनी सरहदें शामिल हैं पर जाँच पड़ताल के इंतजाम होने चाहिए। उन्होंने अहलकारों से ये भी कहा कि वह पूरी तरह मुस्तैद और चौकस रहें। आलमी सेहत तंजीम WHO ने इबोला वबा को बैनुल अक़वामी तशवीश की अवामी सेहत से मुतालिक एक इमरजेंसी करार दिया है। मरकजी वजारत सेहत ने वजाहत की है कि अब तक मुल्क में इबोला के किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर में कलदम जमात इस्लामी तंजीम से मुंसलिक दहशतगर्दी की माली मुआवनत के एक मामले में 3 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की। कश्मीर के श्रीनगर और शोपियां ज़िलों में 3 मकामात पर की गई तलाशी की कार्रवाई के दौरान कई काबिल एतराज़ दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात बरामद हुए जिसके बारे में शुबा है कि इनका ताल्लुक रियासत में जमात इस्लामी और इसके मुतअद्दिद ट्रस्ट और तंजीमों की सरगर्मियों से है। एजेंसी के मुताबिक अब तक की तफ्तीश से ये इंकशाफ हुआ है कि ममनुआ तंजीम वादी कश्मीर और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी के लिए फंड इकट्ठा करने और दहशतगर्दी को फरोग देने में सरगम रही है। ये तंजीम तालीम और सेहत जैसी फलाही सरगर्मियों के नाम पर अंदरून और बैरून मुल्क से चंदा इकट्ठा करने के काम में मुलव्वस थी। ये आकाशवाणी है। वजीर खारजा डॉक्टर SJayshankar नई दिल्ली में कल क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग की मेज़बानी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के वजीर खारजा पैनी वॉन्ग, जापान के वजीर खारजा तोशी मिसो मोतेगी और अमेरिका के वजीर खारजा मार्को रोबियो इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वज़रा तमाम तरजीही शोबों में क्वाड तआवुन को फ़रोग देने, इन दिनों जारी क्वाड स्कीमों की पेशरफ का जायज़ा लेने और भारत बहरुल काहिल खित्ते में रूनुमा होने वाली हालिया तब्दीलियों पर इजहार ख्याल समेत बाहमी नौयत के दीगर बैनुल अक़वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। एक आज़ाद और खुले भारत बैरुल काहिल के क्वाड तसव्वुर के पेश नज़र वज़रा पिछले बरस 1 जुलाई को Washington DC में हुई तबादले ख्याल को आगे बढ़ाएंगे। हमारे नुमाइंदे ने इस सिलसिले में ये रिपोर्ट पेश की है।
1: इस बरस वज़राए खारजा की मीटिंग आलमी गैर यकीनी

0: चलेंगे। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। नमस्कार श्रोताओं, मोहब्बत की खुशबू, एहसासों की नरमी और अल्फाज की जादूगरी लेकर हम हाजिर हैं एक ऐसी महफिल जहां दिल धड़कते नहीं गुनगुनाते हैं। तो आज के गज़लों के इस कार्यक्रम कहकशा में आप सभी का स्वागत है। कभी तन्हाइयों की आवाज़ बनकर, कभी अधूरी मोहब्बत का राज बनकर, गज़लें सदियों से इंसान के जज्बात को लफ्ज़ देती आई हैं। तो अपने दिलों के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि सुर साज और शायरी से सजी एक प्यारी सी गज़ल आपके लिए। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा

दोस्तों, गज़लें सिर्फ शायरी नहीं, एहसासों का आईना होती हैं। कभी मोहब्बत की नरमी, कभी जुदाई का दर्द, तो कभी ज़िंदगी के फ़लसफ़े, हर रंग गज़ल में समाया हुआ होता है। दिल में किसी के राह किए जा रहा हूँ मैं, कितना हसीं गुनाह किए जा रहा हूँ मैं।

सच ही कहा गया है, गजलें वो धुन हैं जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचती हैं। दोस्तों, गजलों की परंपरा सदियों सदियों पुरानी है। फारसी से उर्दू और फिर हिंदी तक गजल ने हर दौर में लोगों के दिलों को छुआ है। जब शब्दों में संगीत घुल जाए तब जन्म लेती हैं गजलें। कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है।

गज़लों की यही खासियत है दोस्तों, ये दिल को सुकून भी देती हैं और सोचने पर मजबूर भी करती हैं। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में अगर कहीं ठहराव मिलता है तो वो है संगीत और शायरी। गज़ल अपने भीतर झांकना सिखाती है। संगीत जब रूह से निकलता है तो असर दिलों पर होता है। मिर्ज़ा गालिब, फैज़ अहमद फैज़, जगजीत सिंह, मेहंदी हसन, ग़ुलाम अली, पंकज उदास जैसे महान शायरों और गायकों ने अपनी अमिट छाप छोड़ी है। इनकी आवाज़ और शायरी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों गज़लों का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। सूरत हो जाती है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसी खूबसूरत एहसास के साथ आप सुनिए ये गजल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पंकज उदास की गाई इस गज़ल के साथ ही कहकशां कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज़।

आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म शोर के गाने से। आवाजें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। गीत के बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों को फिल्म शोर में। अगला गीत हमने लिया है फिल्म दबंग 2 से। आवाज़ें हैं राहत फ़तेह अली खां और श्रेया घोषाल की। गीत के बोल लिखे हैं समीर अनजान ने और धुन बनाई है साजिद वाजिद ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म देवदास में श्रेया घोषाल को। गीत के बोल लिखे थे नुसरत बद्र ने, धुन बनाई थी स्माइल दरबार ने। अगला गीत हमने लिया है फिल्म हीर रांझा से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, रचना कैफी आज़मी की और संगीत मदन मोहन का।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए फिल्म हमसाया का गीत आशा भोसले की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई ओपी नैयर ने।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं कमला बोस का राग कलावती में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत की है अनूप कुमार बैनर्जी ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीमती कमला बोस का राग कलावती में ख्याल गायन। आपके साथ तबले पर संगत की अनूप कुमार बैनर्जी ने। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया।

गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के

0: शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and